यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

गोविंद नाम संगीर्तनम गोविंदा गोविंदा तिरुमाल अडियार्गले उंगल अनेवरुक्कुम इमदु उल्लंकनिंद वनक्कम गोविंदन तिरुविळाविनै मुन्निट्टु इंट्रय रंगनाथन आराधने एन्नुम सिरप्पु निगल्चियल नींगल गोविंदने मुन्निट्टु समय उरैयै मत्रुम पाडले केट्कलाम मुदलिल समय उरैयै आत्रुकिन्रवर अय्या इंदिरन वयापुरी अवर्गलुडिय उरैयै के

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर आई नई अमेरिकी रिपोर्ट जेगोगाशा की अमेरिकी सैन्य अभियानों में बढ़ती रणनीतिक भूमिका की पुष्टि करती है। मध्य पूर्व में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सैन्य साजो सामान और लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा जेगोगाशा की ओर भेजा गया है। भारतीय हिंदुजा ग्रुप ने मॉरिशस में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मॉरिशस के साथ अपना सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने कल प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। राष्ट्रपिता सर शिवसागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कई समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। एसएसओ बोटानिकल बाग में उनकी समाधि पर, पोर्टलिस वॉटरफ्रंट में उनकी प्रतिमा पर और उनके जन्म स्थल केवल नगर बेलगिव में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा प्रार्थना और मंत्र जाप का आयोजन किया जाता है। और विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमलों में किया युद्ध अपराध, तेहरान ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे। पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को मौसम में सुधार आने लगेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और आज रात पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दोपहर बाद को समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज सुबह के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:03 पर और शाम 6:05 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
2: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

प्रणाम, सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए, समय या सुबह के 6:04 हो चुके हैं। ये MBC रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है। श्रोताओं, कहा जाता है कि चिंता करने से परेशानी का हल नहीं निकलता, इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सकारात्मक

0: सोच के साथ अगर आप अपने सुबह की आरंभ करेंगे तो आपका जीवन और सोच भी सकारात्मकता से भरी रहेगी। आइए इसी सोच के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से। इसे श्रवण करते हैं हिंदू महासभा की ओर से।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओं नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरिनारायण। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्कार। मैं बाबाजी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आज फ्राइडे 18 सितंबर के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, कल शनिवार टुमोरो सैटरडे 19 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के अंतर्गत श्री राधाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। राधाष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लगभग 15 दिन पश्चात मनाई जाती है। यह वह पवित्र तिथि है जिसे श्री राधा जी के प्रकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भविष्य पुराण तथा गर्ग संहिता के अंतर्गत द्वारपर युग में भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर अवतरित हुए उसी काल में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महाराज वृषभानु के घर उनकी धर्मपत्नी देवी कीर्तिदा के यहाँ श्री राधा जी का दिव्य प्रकट हुआ। तभी से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री राधा जी की जन्मस्थली बरसाना मानी जाती है। श्रोताओं, श्री राधा केवल एक नाम नहीं है, वे प्रेम, समर्पण, भक्ति और निष्काम भावना की चरम अभिव्यक्त है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए युगों से ऋषि मुनि, संत महात्मा और भक्तगण श्री राधा जी के आश्रय को अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहा जाता है श्री राधा ही भगवान कृष्ण की प्रेम का सर्वोच्च स्तोत्र है। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और आनंद की त्रिवेणी हमारे हृदय में प्रवाहित होने लगती है तब हमारा हृदय स्वयं एक पवित्र तीर्थ बन जाता है। सत्य, मंगल और सौंदर्य का जो दिव्य अनुभव प्रेम और भक्ति में होता है वही श्री राधा के महाभाव का स्वरूप माना गया है। कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को ही राधा भाव कहा जाता है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, आनंद ही उनका स्वरूप माना जाता है, आनंद प्रदान करना ही उनकी लीला है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना समस्त प्राणियों के लिए प्रेम, शांति और आनंद का संदेश देती है। और श्रोताओं, यदि श्री कृष्ण आनंद की मूर्तिमान स्वरूप है तो श्री राधा उस आनंद की प्रेममयी शक्ति है। राधा जी का प्रेम निष्काम है, निस्वार्थ है और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ है। वे श्री कृष्ण से अपने लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। राधा जी का एकमात्र भाव है श्री कृष्ण प्रसन्न रहे, श्री कृष्ण आनंदित रहे। यही सच्ची भक्ति का आदर्श है। जब मनुष्य अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ भगवान के चरणों में समर्पित करके कृष्ण प्रेम में लीन होता है, तभी उनके भीतर धीरे धीरे राधा भाव का उदय होता है। कृष्ण प्रेम का शिखर यही राधा भाव है। इसलिए भक्तजन श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्री राधा रानी का आश्रय लेते हैं। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय विषय का उल्लेख भी आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित और सुखदेव महामुनि द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया गया महान ग्रंथ माना जाता है, उसमें राधा नाम का प्रत्यक्ष उल्लेख स्पर्श रूप से नहीं मिलता। हालांकि भक्त परंपरा में यह माना जाता है कि श्रीमद् भागवत जी में श्री राधा जी का संकेत परोक्ष रूप में मिलता है। रास पंचाध्यायी में उसका एक प्रसंग आते हैं, जहां गोपियां श्री कृष्ण के साथ एक विशेष गोपी के एकांत में चले जाने पर कहती है कि निश्चय ही वह गोपी भगवान की विशेष आराधिका रही होगी। श्रोताओं, आराधिका शब्द को भक्त परंपरा में श्री राधा के नाम से जोड़ा जाता है। इसी कारण अनेक आचार्य भक्तजन जो है मानते हैं कि भागवत जी में श्री राधा का नाम भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना आया हो, लेकिन उनका भाव और उनकी महिमा रासलीला में वर्णन किया गया है। बाद में अनेक वैष्णव ग्रंथों में और भक्त परंपराओं में श्री राधा जी का स्पर्श उल्लेख मिलता है। श्रोताओं, श्री राधा और श्री कृष्ण को अलग अलग करके देखना वैष्णव भक्ति की दृष्टि से पूर्ण नहीं माना जाता। जिस प्रकार अग्नि और उसकी ऊष्मा में उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण को भी एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा है, और जहाँ श्री राधा है वहाँ श्री कृष्ण है। दोनों एक ही दिव्य प्रेम तत्व के दो पहलू है। राधोपनिषद में श्री राधा के संबंध में एक अत्यंत सुंदर भाव मिलता है कि श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं इसलिए वे राधा है, और जो सदा श्री कृष्ण की आराधना करती है वे राधिका है। इसी परंपरा में श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण के लाहदिनी शक्ति तथा प्रेम भक्ति के रूप में समझा गया है। स्कंड पुराण में श्री राधा जी को श्री कृष्ण की आत्मा के रूप में वर्णित करने की परंपरा मिलती है। इसी कारण भक्तजन प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को राधा रमन कह करके पुकारते हैं। सो कल राधाष्टमी के दिन श्री राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। पूजा मध्याह्न काल में संपन्न करें। श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। सर्वप्रथम श्री राधा जी एवं कृष्ण भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा करके इसके पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पण करें। फूल, माला, चंदन, धूप, दीप अर्पण करें और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार विशेष भोग लगाएं। श्री राधा जी को मिष्ठान अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। रबरी, मोहनताल, मालपुआ आदि मिष्ठान अर्पण करना चाहिए। इसके साथ बिना लहसुन प्याज के बनाई अरबी की सब्जी को भी भोग में अर्पण करने की परंपरा है। पूजा के पश्चात श्री राधा जी को इनके नाम से पूजन करा करके नाम पूजन करें, आरती करें, संकीर्तन करें, भजन करें, और अंत में सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है। श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण व्रत की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। राधाष्टमी के दिन यानी कल से महालक्ष्मी व्रत का भी शुभारंभ होता है। यह व्रत परंपरानुसार 16 दिनों 16 डेज तक माने जाते हैं, लेकिन तिथियों की स्थिति के अनुसार इसकी अवधि कभी 15 या 16 दिन को भी होते हैं। इस वर्ष यह व्रत कल सैटरडे 19 सितंबर से प्रारंभ हो करके सैटरडे 3 अक्टूबर सैटरडे 3 अक्टूबर को समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की आराधना, घर परिवार की सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। हमें यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि धन और वैभव तभी सार्थक है जब उनका उपयोग धर्म, सेवा, परिवार और समाज के कल्याण के लिए किया जाए। इन 15 दिनों में श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत धारण करके प्रतिदिन महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक वेदी पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। माता लक्ष्मी को 16 गांठों वाला हल्दी से रंगा हुआ पवित्र सूत्र अर्पण करने की परंपरा है। इसके बाद प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक माता की पूजा करें, गेहूं आदि अर्पण करें तथा धूप दीप से पूजन करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और श्रद्धा के अनुसार श्री सूक्त का पाठ करें अथवा श्रवण करें। श्री सूक्त केवल धन प्राप्ति की प्रार्थना नहीं, यह हमें ऐसा समृद्धि की कामना कराती है जिससे जीवन में शांति हो, परिवार में सुख बने रहे, अन्न की कमी ना हो और सद्बुद्धि तथा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। महालक्ष्मी व्रत की अंतिम तिथि अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो इस साल सैटरडे 3 अक्टूबर को होगी, उस दिन श्रद्धापूर्वक महालक्ष्मी व्रत की कथा करवाएं और संभव हो तो यज्ञ हवन आदि करवा करके अपनी पूजा विधि को संपन्न करते हुए इस महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन करें। श्रोताओं, राधाष्टमी और महालक्ष्मी व्रत, ये दोनों पर्व हमें एक सुंदर संदेश देते हैं। श्री राधा हमें निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण सिखाती है, जबकि माता लक्ष्मी हमें धर्म, सम्मत, समृद्धि और उस समृद्धि का सदुपयोग करना सिखाती है। जीवन में केवल धन हो और प्रेम ना हो तो जीवन अधूरा है। केवल प्रेम हो लेकिन धर्म और सदाचार ना हो तो जीवन की दशा कमजोर हो सकती है। इसलिए सनातन धर्म हमें प्रेम, धर्म, भक्ति, सदाचार और समृद्धि, इन सभी का संतुलन सिखाती है। तो चलिए राधाष्टमी पर हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ आदि को दूर करेंगे, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम और भक्ति अर्पण करेंगे, अपने परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखने तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे। हम श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में निष्काम प्रेम उत्पन्न हो, भगवान कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति दृढ़ रहे और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी के घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दूं। आप सबों को मेरी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से राधाष्टमी एवं महालक्ष्मी व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

0: श्रोताओं, कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। इसीलिए सत्कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साथ रहिए, 6:30 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक आप सभी को शुभ शुक्रवार।
1: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427. Or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.

0: बर्ड्स, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: सभी को हमारा नमस्कार। सुबह के ठीक 6:30 हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर आई नई अमेरिकी रिपोर्ट जिगोगोसिया की अमेरिकी सैन्य अभियानों में बढ़ती रणनीतिक भूमिका की पुष्टि करती हैं। मध्य पूर्व में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सैन्य साजो सामान और लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा जिगोगोसिया की ओर भेजा गया है। भारतीय हिंदुजा ग्रुप ने मॉरिशस में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मॉरिशस के साथ अपना सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से कल मुलाकात की। राष्ट्रपिता शशि सागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कई समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। SSO बोटानिकल बाग में उनकी समाधि पर पोर्टलिस वाटरफ्रंट में उनकी प्रतिमा और उनके जन्म स्थल केवल नगर बेलगीव में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। और विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमलों में युद्ध अपराध का ऐलान किया है और तेहरान ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर आई नई अमेरिकी रिपोर्ट जिगोगोसिया की अमेरिकी सैन्य अभियानों में बढ़ती रणनीतिक भूमिका की पुष्टि करती है। मध्य पूर्व में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सैन्य साजो सामान और लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा जिगोगोसिया की ओर भेजा गया है। अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर के अनुसार इससे शागस का मुद्दा और भी संवेदनशील हो सकता है। उनके अनुसार जैसे जैसे ये सैन्य अड्डा ज्यादा रणनीतिक होता जा रहा है, वैसे ही बड़ी ताकतें यहां अपनी मौजूदगी को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जैसे जैसे जिगोगोसिया ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, वैसे ही उन्हें एक मजबूत कानूनी आधार की भी जरूरत होगी। और गाविन ग्रोवर के अनुसार ये कानूनी सुरक्षा मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच मई 2025 में हुए समझौते को लागू करने से सुनिश्चित हो सकती है।
2: अमेरिकी संसद को सौंपी गई एक आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि जिगोगोसिया अब इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना के सामान और आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। गाविन ग्लोवर का कहना है कि बदले हुए हालात से समझौते पर कोई असर नहीं पड़ता। उनके अनुसार इससे जिगोगोसिया को लेकर एक साफ कानूनी ढांचे की जरूरत और बढ़ जाती है। समझौते में जिगोगोसिया सहित पूरे शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता दी गई है। इसके बाद मॉरिशस ब्रिटेन को शुरुआती 99 साल के लिए सैन्य अड्डा चलाने से जुड़े अधिकार देगा। समझौता मॉरिशस को जिगोगोसिया को छोड़कर शागस के दूसरे द्वीपों पर वहां के मूल निवासियों को दोबारा बसाने का कार्यक्रम शुरू करने की भी अनुमति देता है।
3: Que ce nouveau contexte durcit les choses? Oui, évidemment, car plus la base devient stratégique, plus les grandes puissances recèlent emprise, mais plus que cette base devient vitale pour Washington et Londres, et plus qu'ils ont besoin d'une base juridiquement solide. Et c'est seulement à travers la ratification du traité que cela est possible. Le statu quo, en fait, ne protège personne. Concrètement, le traité est signé, mais le processus parlementaire britannique est en suspens, comme vous le savez. La ratification est donc en attente, et nous nous attendons du Royaume-Uni qu'il honore sa signature.
2: ग्लोवर का कहना है कि मौजूदा स्थिति से किसी के हित सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि शागस पर संप्रभुता की लड़ाई में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के फैसले मॉरिशस के पक्ष में आए हैं। गाविन ग्लोवर मानते हैं कि बड़ी शक्तियों के हितों के बीच मॉरिशस कभी कभी मुश्किल स्थिति में आ सकता है, लेकिन उनका कहना है कि देश ने इस मामले में कभी केवल दर्शक बने रहना स्वीकार नहीं किया है। आने वाले दिनों में मॉरिशस ऊंचे स्तर पर बातचीत जारी रखेगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मौजूद अलग अलग रास्तों पर भी काम किया जाएगा। समझौते को लेकर मॉरिशस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच चर्चा अभी भी जारी है। सितंबर की शुरुआत में ब्रिटेन ने कहा था कि समझौते को अंतिम मंजूरी देने से पहले अमेरिका

0: ये सहमति जरूरी है। गाविंग ग्लोवे के अनुसार समझौते के जरिए मॉरिशस की संप्रभुता और हिंद महासागर में सैन्य अड्डे की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।
1: पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ को कल मिसे मुस्तास नाम से सामने आए फोन टेपिंग कांड की जांच के सिलसिले में सीसीआईडी में बुलाया गया था, लेकिन पुलिस जांच से आगे एक सवाल उठता है, क्या इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इन रिकॉर्डिंग्स की प्रामाणिकता और अदालत में उनकी स्वीकार्यता तय करने के लिए किन बातों को देखा जाता है? ऑडियो रिकॉर्डिंग्स से जुड़े कानूनी पहलुओं और चुनौतियों पर लुविना सूफी की रिपोर्ट, आस्था गोविंदमन का विवरण।
0: जानी मानी हस्तियों से जोड़ी गई आवाजें, निजी बातचीत और ऐसे खुलासे जो कई दिनों तक खबरों में रहे। मिसे मुस्तास के नाम से सामने आई रिकॉर्डिंग्स का जिक्र कई अदालती मामलों में हो चुका है। गुडलैंड्स में आजसू की कार्रवाई के बाद स्टीव रकलैन जूलियट की मौत से जुड़ी जांच में मैजिस्ट्रेट नीला रामदेव नोगा ने कहा था कि रिकॉर्डिंग असली थी या नहीं ये साफ नहीं हो पाया। आद्रियन जुवाल मामले में भी बचाव पक्ष रिकॉर्डिंग के स्रोत और उसकी सच्चाई साबित नहीं कर पाया था। ये भी तय नहीं हो सका कि उसमें सुनाई देने वाली आवाजें किन लोगों की थी, किन रिकॉर्डिंग को असली मानने के लिए किन बातों की जांच जरूरी है। कानून विशेषज्ञ अनस सकावत इसे समझाते हैं।
2: Faudrait capable montrer que ça quand et comment fin faire son enregistrement là, bien capable identifier man la voix et autant que possible présente man fichier qui original. OK, faudrait pas qu'il nous présente man copie.
0: AI की मदद से आवाज में बदलाव या नकली आवाज तैयार किए जाने की आशंका भी हो सकती है।
2: Si il y a allégation qui fin servi AI artificial intelligence pour manipuler ban enregistrement là, là dans ce cas là, un tribunal, un magistrat ou un juge pour bien capable au donne qui ça enregistrement là est authentifié par ban expert.
0: लेकिन अगर कोई बातचीत गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई हो तो क्या उसे जांच या अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? 1919 में बालकुलिया मामले में इंटरमीडिएट कोर्ट ने पूर्व मंत्री दिवंगत राजदयाल के खिलाफ कथित रिश्वत के मुकदमे में 4 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सबूत के रूप में स्वीकार किया था। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए राजदयाल की अनुमति नहीं ली गई थी। वकील युवीर बंधु के अनुसार ऐसी रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल कुछ परिस्थितियों में जांच के लिए किया जा सकता है।
3: La police car servi ça enregistrement là pour le besoin de l'enquête. Là, les caves prennent un statement avec une personne. Côté phase l'enquête, la police capable servir un contenu pour orienter son investigation.
0: इसके उलट दिवंगत सर विनोद बाशा से जुड़े मामले में अदालत ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्वीकार नहीं किया था। बातचीत संबंधित लोगों की अनुमति के बिना रिकॉर्ड की गई थी और उसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की पहचान भी सामने नहीं आई थी।
1: भारतीय हिंदुजा ग्रुप ने मॉरिशस में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मॉरिशस के साथ अपना सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने कल दोपहर बाद पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से ट्रेजरी बिल्डिंग में मुलाकात की। भारतीय ग्रुप के अध्यक्ष के साथ ग्रुप के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। एक घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इनमें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, वित्तीय सेवाएं और स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हैं। हिंदुजा ग्रुप पहले से ही मॉरिशस सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। भारत और मॉरिशस सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत ग्रुप ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी को करीब 100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई हैं। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा कहते हैं,
4: वी हैव वेरियस कंपनीज हियर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, वी हैव ग्लोबल शेयर होल्डर्स, सो द पर्पस कमिंग हियर इज टू होल्ड अ बोर्ड मीटिंग एंड द एनुअल जनरल मीटिंग which is happening tomorrow. Our interest will be on renewable energy. Interest will be to supply and provide more electrical buses, not only buses but the trucks starting from 1-2 tonners to huge high tonners including double decker buses. Mauritius needs health sector of high quality. So we said we'll be open so that the doctors from here can get training in Bombay and our doctors can also visit here.
1: हिंदुजा ग्रुप के अधिकारी

0: अफ्रीनेक्स एक्सचेंज के विकास को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। मॉरिशस में 2021 में शुरू हुई इस स्टॉक एक्सचेंज को अफ्रीका और एशिया के बीच वित्तीय सेवाओं के एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की योजना है। अफ्रीनेक्स एक्सचेंज के CEO कहते हैं,
1: अफ्रीनेक्स इज अ पैन अफ्रीकन स्टॉक एक्सचेंज दैट इज सेट अप टू एक्ट एज अ बेस फॉर कैपिटल रेजिंग फॉर अफ्रीका एंड आल्सो टू कनेक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स एंड इश्यूअर्स विद अफ्रीकन इश्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स यूजुअली मॉरिशस एज अ बेस। वी हैव ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड एग्रीमेंट्स विद अ नंबर ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज एंड वी आर कंटिन्यू टू ग्रो एट अ मच मच फास्टर रेट।
0: हिंदुजा ग्रुप का कारोबार $48 बिलियन का है और ये 100 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं। ग्रुप में 2,00,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये ग्रुप खास तौर पर ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, स्वास्थ्य, रिन्यूएबल एनर्जी और मूल ढांचों के क्षेत्रों में काम करता है। राष्ट्रपिता शशि सागर रामगुलाम की आज 126वीं जयंती है। मॉरिशस को आज़ादी दिलाने के साथ साथ उन्होंने नए राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान, सिद्धांतों और आज के मॉरिशस में दिखाई देने वाली उनकी विरासत पर एक नज़र आस्था गोविंद चितामन के साथ।
2: 18 सितंबर 1900 में जन्मे सर शिवसागर रामगुलाम पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन लोगों की सेवा और उनके अधिकारों की रक्षा की भावना उन्हें राजनीति में ले गई। मॉरिशस को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। 1967 के आम चुनाव में उन्होंने आज़ादी का समर्थन करने वाले दलों के गठबंधन इंडिपेंडेंस पार्टी का नेतृत्व किया। गठबंधन की जीत के बाद स्वतंत्रता का रास्ता साफ हुआ। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस आज़ाद हुआ और सर शिवसागर रामगुलाम देश के पहले प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के समय मॉरिशस के सामने कई चुनौतियां थी। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चीनी पर निर्भर थी, रोजगार के अवसर सीमित थे और नए देश के रूप में संस्थाओं को मजबूत बनाना जरूरी था। शशि सागर रामगुलाम के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा और आर्थिक विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाई। 1970 में निर्यात आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया ढांचा तैयार किया गया। इससे अर्थव्यवस्था को चीनी के अलावा दूसरे सेक्टरों तक फैलाने की शुरुआत हुई। 1977 में माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क की गई। इस फैसले से ज्यादा बच्चों, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए आगे की पढ़ाई का रास्ता खुला। सामाजिक न्याय, सबके लिए समान अवसर, शिक्षा और लोगों की सेवा शशि सागर रामगुलाम के सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रमुख सिद्धांत थे। उनका मानना था कि अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग मिलकर ही एक मजबूत मॉरिशस बना सकते हैं। उनकी विरासत केवल देश की आज़ादी तक सीमित नहीं, लोकतंत्र का सम्मान, राष्ट्रीय एकता और विकास में हर नागरिक की भागीदारी, ये मूल्य आज भी मॉरिशस की पहचान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद सर शिवसागर रामगुलाम देश के गवर्नर जनरल बने। 15 दिसंबर 1985 को उनका देहांत हुआ। आज का मॉरिशस कई दशकों के दौरान अलग अलग सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों के योगदान से बना है। फिर भी देश की शुरुआती राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक नींव रखने वालों में सर शिवसागर रामगुलाम का नाम प्रमुख है। उनकी 126वीं जयंती ऐसे समय मनाई जा रही है जब उनके पुत्र डॉक्टर नवीन रामगुलाम देश के प्रधानमंत्री हैं। राजनीति से अलग शशि सागर रामगुलाम का ऐतिहासिक योगदान मॉरिशस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है। यही उनकी विरासत है और इसी कारण चाचा रामगुलाम को याद किया जाता है।
0: केवल नगर से स्टेट हाउस तक शशि सागर रामगुलाम का सफर आज भी नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनकी 126वीं जयंती के मौके पर जोन 2 के करीब 300 छात्रों ने उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष और एक आज़ाद, एकजुट और भाईचारे वाले मॉरिशस के उनके सपने को फिर से जिंदा किया। कल कॉन्डोमास्क स्टेट कॉलेज में नौजवानों की देशभक्ति और रचनात्मकता को खास तौर पर सामने लाया गया। आशिता रघु।
3: स्वतंत्रता से पहले जिंदगी आसान नहीं थी, गन्ने के खेतों और गांवों में कई मौर्शन परिवार हर दिन मुश्किलों का सामना करते थे। इसी माहौल में केवल नगर में जन्म हुआ उस शख्स का जो मॉरिशस के इतिहास पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ने वाले थे, सर शिवसागर रामगुलाम। केवल नगर से लंदन तक और फिर राजनीति के मैदान में उनका सफर आज जोन टू के विद्यार्थियों की जुबानी सामने आ रहा है।
4: J'étais inspirée pour sa détermination de passer à l'école, comme si maintenant les enfants de nos jours, ils n'aiment pas trop passer à l'école, mais lui, il était déterminé à passer à l'école malgré ses difficultés.
5: Ma grand-mère voulait vraiment apprendre, mais vu que l'éducation n'était pas gratuite, donc elle n'avait pas vraiment l'opportunité d'apprendre comme nous aujourd'hui. Et c'est grâce à SSA qu'on puisse apprendre librement, sans avoir à nous soucier si nos parents ont les moyens. Il s'est battu vraiment pour nous, il a espéré. Et même quand des fois certains voyaient des obstacles, lui, il voyait déjà l'horizon.
3: इतिहास के साथ टेक्नोलॉजी का भी मेल देखने को मिला। MGSS मोका के विद्यार्थी जीवांश ने एक इंटरैक्टिव परियोजना तैयार किया है, जिसमें QR कोड स्कैन करके शशि सागर रामगुलाम की जिंदगी और उनके काम के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है।
6: Merge technology and history together. C'est pour ça on a décidé de ajouter des QR codes. La personne peut scanner. Ils vont nous dire que Sir Sagar Ramgulam completed his studies at ULC, University College London.
3: केवल नगर से लंदन और फिर उनका राजनीतिक सफर 12 मार्च 1968 को मॉर्शन झंडा फहराने तक एक ऐसा सफर जो आज भी देश प्रेम की सीख देता है।
7: C'est un genre d'activité qu'il faut continuer à faire parce que c'est ça qui amène nous aussi vers la culture parce que ça il faut une partie de la culture aussi. Right? La culture il forme la base de la société pour nous faire progresser devant. Alors oui, certainement il faut rappeler nous bonne période aussi, nous bonne l'époque aussi parce que quand moi Moutiné et c'est ça petit premier ministre me rappelle ça très très bien.
3: Chitrakarita, khoj karya, elocution, श्रद्धांजलि संदेश और रंगमंच, विद्यार्थियों ने इन्हीं के माध्यम से इतिहास के अहम पन्नों को फिर से जीवंत कर दिया।
8: Nous aussi finirons pendant cette session un memorial talk qui est préparé par les élèves pour les élèves que ce travail sur la déconstruction de l'histoire et revoir Chacha, le père de la nation, à travers ce bon achievement.
3: उनके जन्म के 126वां साल बाद भी उनकी कहानी सुनाई जा रही है और सबसे अहम अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जिस सफर को हम जानते हैं उससे आज हम हासिल की गई आज़ादी और तरक्की की अहमियत को भी समझते हैं।
0: राष्ट्रपिता शशि सागर रामगुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कई समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। SSR बोटानिकल गार्डन पॉम्पलेमोसिस में उनकी समाधि पर, पोर्टलिस वाटरफ्रंट में उनकी प्रतिमा और उनके जन्म स्थल केवल नगर बेलगेव में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत शुरू कर रहे हैं। गोविंदन पूजा के दौरान भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा, मंत्र जाप और प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा और पर्व के महत्व के बारे में स्टीवन नारायणा पिल्ले ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं। वे महात्मा गांधी संस्थान में तमिल भाषा के लेक्चरर हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी निर्मा नयराना रेडी ने।
9: गोविंदन तिरुविड़ा,
10: गोविंदन की बात करें तो यह एक धार्मिक पर्व है जिसे हम पुरुक्तासी के महीने में मनाते हैं। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। कुछ कोविलों में भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। मॉरिशस में एक ऐसा अनोखा कोविल भी है जहां भगवान राम की पूजा होती है। इसीलिए गोविंदन के दौरान इन देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। पुरस्तासी के महीना पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति को समर्पित माना जाता है। इस साल पुरस्तासी का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान हर शनिवार और रविवार को विशेष पूजा और प्रार्थना होती है। भक्त दिया जलाते हैं और भजन गाते हुए भगवान की आराधना करते हैं।
0: और विदेशी खबरों में अमेरिका ने ईरान में कई बड़े हमले किए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इनमें से एक था फरवरी में जो एक ईरानी स्कूल

पर किया गया था। इस मामले में राष्ट्रसंघ की एक खोज मिशन ने कल कहा कि उस हमले के दौरान अमेरिका ने युद्ध अपराध किया था। पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को मौसम में सुधार आने लगेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश

वह से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज दोपहर बाद से मौसम की स्थिति में सुधार आने लगेगा और आज सुबह के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 6:03 पर सूरज निकला है और शाम 6:05 पर सूरज ढल जाएगा। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर आई नई अमेरिकी रिपोर्ट जेगोगाशा की अमेरिकी सैन्य अभियानों में बढ़ती रणनीतिक भूमिका की पुष्टि करती है। मध्य पूर्व में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सैन्य साजो सामान और लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा जेगोगाशा की ओर भेजा गया। भारतीय हिंदुजा ग्रुप ने मॉरिशस में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मॉरिशस के साथ अपना सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। राष्ट्रपिता शिव सागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कई समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। SSO बोटानिकल बाग में उनकी समाधि पर पोर्टलिस वाटरफ्रंट में उनकी प्रतिमा और उनके जन्मस्थल केवल नगर बलगीव में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा मंत्र जाप और प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। और विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमलों में किया युद्ध अपराध। तेहरान ने किया मानवाधिकारों का उल्लंघन। राष्ट्रसंघ रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कार्डिया का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। सत्तावन साल के 57-year-old के श्री देवानंद झगरू, जो विकास से ज्यादा जाने जाते थे और जो बोबासन पुलिस स्टेशन में सर्जेंट थे और वे पहले नंबर 9 मोसलमों लिकांग बोबासन रहते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 लाशापेल अदा तेलियनसंस रॉयल रोड बोबासन से उठाकर श्रीबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 4 PM। नंबर 147 मुसलमान VRS 1 मोडेजर रोड प्लेन मायों में 75 की 75-year-old की श्रीमती प्रभावती मुताई, जो प्रभा से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 उनके घर नंबर 147 मुसलमान VRS 1 मोडेजर रोड प्लेन मायों से उठाकर प्लेन मायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। रामजीत लेन बालिसों रोजबेल में 68 साल की 68-year-old की मिसेस बीबी सुलमा बोला की पैदाइश नाम शामुताली और जो सुलमा से ज्यादा जानी जाती थी और वे पहले मुसलमान प्यात फोरेस साइड क्यूपिप रहती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10 उनके बेटे अजमल मियां बुलाकी के घर रामजीत लेन बालिसों रोजबेल से उठाकर यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। कौलाबू तेरूज में 87 साल की 87-year-old की मिसेस बीबी हाफिज बाथिया पैदाइश नाम कुस्माली और जो हाफिज से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 12 उनके घर कौलाबू तेरूज से उठाकर नूरे मोहम्मद नूरानी बस्ती मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए बुआ मौशों का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट नून। मामजिल्लो कोयराची में 61 साल के 61-year-old के श्री रेतानन रामाधीन, जो विजय से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10 उनके घर मामजिल्लो कोयराची से उठाकर तेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM।
नंबर 7 सिटी सी एच ए पॉम्पलमस

0: इसमें 66 साल के 66 ईयर ओल्ड के श्री एलाप्पा लचाना, जो आत्मा से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर नंबर 7 सितेसी अजय पॉम्पलेमोस से उठाकर थ्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट नून। होते नंबर 1 बेतु कात्रोबोन में 57 साल के 57 ईयर ओल्ड के श्री प्रवींद्रनाथ रघुनंदन, जो रविन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके भाई महेश रघुनंदन के घर गोते नंबर 1 बेतु कात्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 9:30 AM। रॉयल रोड बोबासें में 84 साल के 84 ईयर ओल्ड के श्री हेम नारायण सुबुरा, जो हेम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो एवेन्यू टेलफेयर बेलरोज कात्रोबोन रहते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे ला शपेल एलियंसेंस रॉयल रोड बोबासें से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट नून। आलेशा कलेसकालिये में 67 साल की 67 ईयर ओल्ड की श्रीमती कुष्मावती घुरा, पैदाइश नाम रामदुयाल और जो कुमारी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके पति सुखदेव घुरा के घर आलेशा कलेसकालिये से उठाकर रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 9:30 AM। मुसलमान फेयरव्यू मोताबा में 83 साल की 83 ईयर ओल्ड की श्रीमती करमालूम देवी अरुमुगम, जो सीता से ज़्यादा जानी जाती थी और जो पहले हेड टीचर थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी बेटी बीना कुंजल के घर मुसलमान फेयरव्यू मोताबा से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। ब्रेंच रोड रिशमा फ्लाक में 56 साल के 56 ईयर ओल्ड के श्री नंदेव चिनातू, जो पोलो से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी पत्नी मिकाएला चिनातू के घर ब्रेंच रोड रिशमा फ्लाक से उठाकर लावोंचो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM। 69 साल की 69 ईयर ओल्ड की श्रीमती माया देवी घरबन, जो माया से ज़्यादा जानी जाती थी और जो लामारी ओकुले रहती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे लाशा पेला दौ तेली एंड सन्स रॉयल रोड बोबासन से उठाकर बिकारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में विद्या समिति विद्यार्थियों तथा निरीक्षकों को सूचित करता है कि छठी कक्षा की परीक्षा शनिवार 19 सितंबर 2026 को प्रातः 9:30 बजे से 11:15 बजे तक निम्न परीक्षा केंद्रों में होगी। डीएवी कॉलेज 1 महर्षि दयानंद स्ट्रीट पोर्ट लुइस, सुंदर मानरा खान कॉलेज लॉन्ग माउंटेन, कालबास गवर्नमेंट स्कूल स्कूल लेन कालबास, डी सिवराज गवर्नमेंट स्कूल नेविये मिल रॉयल रोड ट्रियोले, पॉइंटोपीमा गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड पॉइंटोपीमा ट्रियोले, प्लेंदे पपाए गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड प्लेंदे पपाए, डी हरी गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड गुडलैंड्स, भीवा महादेव गवर्नमेंट स्कूल रिवजुगांपा, रामस्वरूप रामगति आर्यन वैदिक एडेड स्कूल रॉयल रोड लावोंच, सुखदेव बिसिनदयाल गवर्नमेंट स्कूल रॉयल रोड लालमाटी, राजकुमार गजादर गवर्नमेंट स्कूल सेंट्रल फ्लाक, मोहनलाल मोहित गवर्नमेंट स्कूल सेंपिया, पंडित काशीनाथ किश्तो आर्यन वैदिक हिंदू एडेड स्कूल सेंपोल वाकवा, जिपे गवर्नमेंट स्कूल आर्य समाज स्ट्रीट मेबर्ग और सुयाक आर्य समाज मंदिर। निरीक्षकों से नम्र निवेदन है कि परीक्षा के आधे घंटे पूर्व

0: अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचने की कृपा करें। श्री सनातन धार्मिक ब्राह्मण महासभा द्वारा भारतीय विद्या भवन के सहयोग से शनिवार 19 सितंबर और रविवार 20 सितंबर 2026 को क्यूपिप कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज और हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन में सरल संस्कृत की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। बालबोध, प्रारंभ और प्रवेश की परीक्षाएं रविवार को 9 से 2:30 बजे होगी क्यूपिप कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज और हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन में। परिचय और कोविड की परीक्षा शनिवार 19 और रविवार 20 सितंबर को 9 से 2:30 बजे के बीच क्यूपिप कॉलेज में।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैनचेस्टर सिटी अब सांबा नाच नाचने लगा है। नाम है फ्लॉयड सांबा, केवल 17 साल का है। अपने पहले मैच में 2 गोल, ड्रीम डेब्यू इस नौजवान के लिए। 5-0 से मैनचेस्टर सिटी ने नोविच को पछाड़ा। बाकी गोल चर्क की आलान और मक आईडू के नाम। इस जीत से मैनचेस्टर सिटी कराबाओ लीग कप के चौथे राउंड में पहुंच गया, जहां पर उसका सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराने वाली टीम ब्राइटन से होगा। पड़ोसी का बदला या एक और मैनचेस्टर टीम का शिकार, ये आगे देखा जाएगा। यूईएफए यूरोपा लीग में क्रिस्टल पैलेस और बोर्नमुथ दोनों जीत पाए। क्रिस्टल पैलेस ने 4-0 से लेच पोजडन को हराया, जबकि बोर्नमुथ ने एवे जाकर रियल सोसिएदाद को हराया 2-1 से। अपने 127 साल के इतिहास में पहली बार बोर्नमुथ यूरोपीय मंच पर, यूरोपीय स्तर पर फुटबॉल खेल पाया ड्रीम स्टार्ट द चेरीज के लिए। यूरोपा लीग के अन्य मैचों के नतीजे, लेव्स की सोफिया 0, रेड बुल साल्सबर्ग 1, ओएफआई क्रेते 2, होफनहाइम 0, बेसिक्तास ने सुधारा मार्सेई को 4-1 से, सेल्टिक की भी हार हो मैदान में, फेरेनवारोस ने उसे 3-1 से हराया। क्रिस्टल पैलेस 4, लेच पोजडन 0, पिनो, रिचार्ड्स, लार्सन और एंकेचिया का 1-1 गोल। यूवेंटुस की शानदार जीत 5-0 से NEC निज मेगन टीम के खिलाफ। लिलस्ट्रोम 1, टोरिन्जे 2, विक्टोरिया प्लाजन 0, यूनियन सेंट जिलोइस 3। इंग्लैंड के लीग 1 में विंबलडन और एमके डॉन्स के बीच मैच ड्रॉ 0-0। स्पेन के ला लीगा में रियल बेटिस 1, रेताफे 0, मालागा 1, विलारियल 3। आज प्रीमियर लीग में ब्रैडफोर्ड वर्सेस चेल्सी करीबी मामला होगा। लीग टेबल में चेल्सी के पास हैं 7 अंक, छठे स्थान पे 6 पोजीशन, जबकि ब्रैडफोर्ड उसके एकदम करीब हैं, 6 अंक 6 पॉइंट 7 पोजीशन। ब्रैडफोर्ड के लिए जीत 1 जीत 3 ड्रॉ, चेल्सी के लिए 2 जीतें 1 ड्रॉ 1 हार, सो मामला करीब होगा इस मैच में। आज जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख यूनियन बर्लिन, इटली के सेरी आ में मोन्जा सासुओलो, फ्रांस के लीग 1 में मोनाको लांस, स्पेन के ला लीगा में एस्पान्योल का मुकाबला एल्चे से है। प्रीमियर लीग में कल अर्ली किक ऑफ, टोटनहम हॉटस्पर वर्सेस एस्टन विला 3:30 बजे, फिर 6 बजे ब्राइटन आर्सेनल, एवर्टन इप्सविच, लाइव मैच एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर होगा न्यूकासल यूनाइटेड हल सिटी, और लेट मैच 8:30 बजे नॉटिंघम फॉरेस्ट कोवेंट्री सिटी। संडे को 5 बजे बोर्नमुथ लिवरपूल, लीड्स यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी सन्डरलैंड, और 7:30 बजे फुलहाम का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से है। क्रिकेट, टीम इंडिया ने कल अफगानिस्तान की धुलाई की। तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारतीय टीम ने 127 127 रनों से जीत हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा 108 रन बना पाया, संजू सैमसन हाफ सेंचुरी पूरा कर पाया 50 रन। जवाब में अफगानिस्तान की टीम केवल 94 रन 94 रन पर ऑल आउट हो गई। नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई 3-3 विकेट ले पाए। जापान में लग रहे एशियन गेम्स में आज भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम का सामना जापान से होगा। युगांडा में चल रहे एयर बैडमिंटन चैंपियनशिप की टीम टूर्नामेंट में हमारी टीम सेमीफाइनल में हार गई, बेने ने मॉरिशस को हराया।

और रीजनल फुटबॉल क्षेत्रीय स्तर पर रोशनोई स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए इस रविवार को, इस संडे को ब्लैक कारोल एफसी ग्रांबे की टीम, उसका मुकाबला बांबू वेरिये की टीम सबाको से है, ये रोशनोई के फुटबॉल मैदान में खेला जाएगा। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, मैनचेस्टर सिटी आराम से काबाओ कप के अगले राउंड में पहुंचा 5-0 से नोविच सिटी को हराकर, और यूरोपा लीग में इंग्लैंड की दोनों टीम क्रिस्टल पैलेस और बोर्नमुथ क्वालिफाई हुए। प्रीमियर लीग जारी है, आज कल और परसों मैच, इन सब पर आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: नमस्कार श्रोतागण, घर ही मिलाते चलिए। इस समय 7:60 हो चुके हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। शुक्रवार 18 सितंबर 2024 सुबह सुबह सकारात्मक सोच के साथ ही अपने दिन की शुरुआत कीजिए। कहा जाता है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाता है। इसलिए अपने कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चिंतन से, श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में। आइए उन्हें सुनते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: बातचीत का अच्छा ढंग यह है कि प्रस्तुत प्रसंग के साथ कुछ तर्क भी मिला रहे, दृष्टांतों और कथाओं के साथ युक्ति भी रहे, प्रश्नों के साथ सम्मति भी प्रकाशित की जाए और हंसी दिल्लगी के साथ कुछ काम की बात भी रहे।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम और मैं हूं आपकी होस्ट पूजा। आज 18 सितंबर है, एक और सुबह, एक और दिन और जिंदगी की किताब का एक और नया पन्ना। लेकिन जरा सोचे, हम रोज सुबह उठते हैं, लेकिन क्या हम रोज अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देते हैं? कभी कभी हम अपने फ्यूचर को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं, कल क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं, पैसा कब बढ़ेंगे, रिश्ता कैसा होगा, मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, फ्यूचर कोई रेडीमेड गिफ्ट नहीं है। फ्यूचर वो है जो हम आज के छोटे छोटे डिसीजन से बनाते हैं। कल का क्या है, आज में जिए, अपने आज को बेहतर बनाइए और इसका आनंद उठाइए, क्योंकि आप मुसाफिर हैं, आवारा नहीं, मुसाफिर बनिए।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: कितने प्यार से बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सुबह सुबह कई जो है खाना पका रहे हैं, तो कभी कोई जो है काम के लिए निकले हुए हैं, तो आप सभी को कहेंगे बों कुगार, यूं ही हंसते रहिए और गुनगुनाते रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही गीत हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कभी कभी हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने अंदर बहुत कुछ छुपा है, पर ये गीत सुनकर ही हम अपने दिल को ही बहला देते हैं, है ना। तो आइए पुराने दौर के गीत आप सब

वी के नाम सुबह का नजराना कार्यक्रम में मैं हूँ पूजा, आप सभी का साथी। और अभी के लिए गीता जी हैं पोंफेयर से और गायत्री जी हैं न्यूवेल फॉन्स से और साथ निभा रही हैं सूरज सदाजा जी और साथ में हैं मदालबिया से अनीता जी और पूरे कृष्णा गोपी सिंह परिवार और साथ में है इंदिरा लौटन जी, उनके पूरे परिवार के नाम गीत की मांग की है। तो चलिए आप सभी के लिए और साथ दे रही है मुंजे ख्वायाओ से और जो भी लोग अभी बड़े प्यार से साथ निभा रहे हैं आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत फिल्म है आज।

श्रोताओं, सुबह सुबह हम सभी जल्दबाजी में होते हैं काम के लिए निकलना और ब्रेकफास्ट तैयार करना, और कभी कभी इसी जल्दबाजी में अपनों के साथ कुछ समय भी बीत जाता है। कहा जाता है आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की आवश्यकता नहीं,

आज जो कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। कल अगर आपने एक घंटा वेस्ट किया था, आज वो एक घंटा अपने सपनों को दीजिए। कल अगर आपने किसी की नेगेटिविटी अपने दिल में रखी थी, आज उसे जाने दीजिए। कल अगर आप खुद पर शक कर रहे थे, आज खुद से कहिए, मैं अभी वहां नहीं हूं जहां मुझे पहुंचना है, लेकिन मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। इसी सकारात्मक सोच के साथ अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर चीज को सकारात्मकता से ही देखिए। भले ही वो बुरा हो, पर उसे एक पॉजिटिव सोच के साथ ही देखने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपका सारा काम बन जाएगा। बहुत प्यार से लीलो जी साथ निभा रही हैं, साथ में हैं आशा जी कोटेज से और अपने पूरे परिवार के साथ ममा कुमारी जानू परिवार की के लिए, और हमारे इस प्लेलिस्ट को भी एंजॉय कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। साथ में है माला सुमारू जी, सुबह सुबह से ही हमारे साथ जुड़ जाती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शैला जी हैं गन वेस्टेस से और शांता सुकाकी जी हैं। तो चलिए आप सभी के नाम एक और सुंदर सा गीत, फिल्म है वारंट। रुक जाना ओ जाना, हमसे दो बातें कर लीजिए गीतों के जरिए ही। रुठना मनाना तो होता ही रहता है, आवश्यकता ये है कि रिश्ते ना टूटे। स्वस्ति जी हैं काठोबोन से, आपका भी हम स्वागत करते हैं। रुक जाना।

सुबह का नजराना कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और श्रोतागण कहते हैं कि टाइम बदल जाए तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। लोग कहते हैं कि टाइम बदल जाए तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। मैं कहती हूँ आप बदलना शुरू कीजिए, फिर वक्त को भी आपके साथ बदलना पड़ेगा। आपके पास आज जो है उसे शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ से शुरू कीजिए, छोटे से ही सही आप शुरू कीजिए। परफेक्ट सिचुएशन का वेट मत कीजिए, परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का वेट मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट वक्त अक्सर आता ही नहीं। हम अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं। बहुत प्यार से साथ निभा रही हैं लीलो जी और अपने सहेलियों के साथ भी काम कर रही हैं खेत में। गीता, सीता और भी सहेलियां हैं जो अभी खेत पर काम कर रहे हैं। आप सभी को कहेंगे वो कुआज यूं ही काम करते रहें और भगवान आप पर आपकी कृपा बनी रहेगी और यूं ही आपका काम बनती रहेगी, बस यही आशा है। और जो भी लोग अभी काम के लिए निकल रहे हैं तो आप सभी को एक बार फिर से बुंकुआ जा।

0: भाई प्रेमियों का क्या है, यहाँ पर श्रोताएं बहुत ज्यादा हैं जो साथ निभा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कमला जी हैं काथोबोन से, और कमला जी हैं काथकुकु से, साथ निभा रही हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है। और शकुन जी हैं गुजबिल से, घर के काम करते करते हमारे इस शो को एंजॉय कर रही हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। घर के काम तो कभी कभी ख़त्म ही नहीं होता, फिर भी ये गीत जब साथ हैं तो घर के काम भी निपट जाते हैं, है ना। तो सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ये है आपका अपना।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
0: तो चलिए, मैं तो बस यही कहूंगी, गुनगुनाते गुनगुनाते रास्ते पर चलते रहें, घर के काम भी निपट जाएंगे।

तो चलिए नजर डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे किरण जानकी जी द्वारा। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। और 10 बजे फिर से समाचार होंगे। समाचारों के उस पार 10:03 पर भक्ति धारा कार्यक्रम में। और 11 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार रेशम में फरोजा कार्यक्रम सायदा के तरफ से 11:03 पर। और 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुनेंगे। और 1:01 आप तमिल कार्यक्रम सुन पाएंगे आरसी द्वारा। और गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रंगारंग रत्ना जी द्वारा 1:45 पर। और 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे। 2:30 बजे आपके पसंद कार्यक्रम लेकर आएगी रोशनी। और सुपहर के

0: 3 बजे आप समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा और आप सुन पाएंगे उर्दू कार्यक्रम सपैर के 3:45 से लेकर 4:40 तक का उर्दू कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। अनवर की तरफ से 5 बजे गीत गज़ल कार्यक्रम परवेज़ा की तरफ से और शाम के छः बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार 6:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सभी के नाम और 6:30 आप चाइनीज़ कार्यक्रम सुन पाएंगे। चाइनीज़ कार्यक्रम के बाद आप तमिल कार्यक्रम सुन पाएंगे 7:00। साढ़े 7:00 आप तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सुनेंगे कृतिका द्वारा और गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू द्वारा आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे 7:50 8:10 भक्ति कार्यक्रम लेकर आएगी रोशनी और 8:40 पर महफिल शब परवेज़ा के तरफ से भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लेकर आएगी 9:00 सुरेखा जी और 11:00 आप कुछ पुराने दौर के गीत गिनिशा प्रस्तुत करेगी 11:00 और 12:00 से लेकर 6:00 तक का चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।
1: रेडियो मॉरिशस झलकियां।

वही कहते हैं इंडियन सिनेमा की वो दौर जहाँ पर कुछ रोमांटिक गीत ही बनते थे, और वो दौर था 90s। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस दौर को भी पसंद करते हैं और उनके गीत भी पसंद करते हैं। कहते हैं बहुत प्यार छुपा हुआ था उस दौर में, इसीलिए तो ऐसे रोमांटिक गीत बनते थे उस समय। साथ निभा रही हैं लक्ष्मी जी बॉम्बू से और क्लेफू वाकवा से साथ निभा रही हैं लक्ष्मण सुगोबिन परिवार। प्रभा जी हैं साथ निभा रही हैं बिलगोज से, आपका भी हम स्वागत करते हैं। नीता खिदनी जी हैं, चित्रा जी हैं मौदालबिया से, और साथ में हैं कमला दीनू जी प्यारी आरोही, श्यामा रघुनंदन जी, और साथ में हैं बिना रामफुल जी, नवीन लक्ष्मण जी भी हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है।

तो श्रोताओं, कहा जाता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं, एक सफर है, और सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं रास्ते की यादों में भी होती है। इसीलिए जो आज है उसका मजा लीजिए। और साथ निभा रही हैं अभी प्रकाश पोएम सिंह सरनाम, जो कौंडमास के हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं उनकी बीवी जो है शकुंतला, और बेटे हैं ऋषि, कनाडा कौशल से हैं, कनाडा से हैं, और कौशल बहू कुष्मा, और पोते हैं रियांश, कृष्ण, विदीश, और बहन मीता, अनीता, और नीस है दीपा, आरती, प्रीति, मनीषा, और उनके पूरे परिवार की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। और जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, पूरे एमबीसी टीम की ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ हम सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। साथ रहिए, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम।

सबके के नमस्ते फजर के 8 बजल बा। भोजपुरी में समाचार सुना जा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर आलनावा अमेरिकी रिपोर्ट, जेगो गाजा के अमेरिकी सैन्य अभियान में बढ़ते रणनीतिक भूमिका की पुष्टि कर लिबा। मध्य पूर्व में धीर सैन्य ठिकाना पर हमला के बाद सैन्य सामान और लॉजिस्टिक्स के एगो हिस्सा जेगो गाजा की ओर भेजल गलबा। अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर के अनुसार एकर से शागस के मुद्दा और भी संवेदनशील हो सकी। उनका अनुसार जैसे जैसे इस सैन्य अड्डा जस्ते रणनीतिक हो ले जाता, उसने ही बड़ा ताकत यहाँ अपन मौजूदगी के सुरक्षित करे के कोशिश करत हवन सा। पर दूसर ओर जैसे जैसे जेगो गाजा जस्ते जरूरी हो ले जाता, उसने ही उलोक के एगो मजबूत कानूनी आधार के भी जरूरत हो। भारत के कंपनी हिंदुजा ग्रुप मॉरिशस में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करे के और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मॉरिशस के संगे अपन सहयोग जारी रखे के इच्छा जताई लेबा।

0: हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा कल सांझ के पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात करलन। राष्ट्रपिता शिव सागर राम गुलाम के आज 126वां जयंती है। मॉरिशस के आज़ादी दे के संगे संगे ऊ नवा राष्ट्र के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक नींव रखे में भी महत्वपूर्ण योगदान दिले हवन। उनका श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर आज ढेर समारोह के आयोजन करल जाता। एसएसओ बोटानिकल बाग में उनकर समाधि पर पोर्ट लुइस में वाटरफ्रंट में उनकर प्रतिमा और उनकर जन्म स्थल केवल नगर बेलगीव में उनकर प्रतिमा पर फूल चढ़ावल जाए। आज से गोविंदन पूजा खातिर तमिल समुदाय के लोग 40 दिन के व्रत शुरू करत हवन सा। गोविंदन पूजा के दौरान भक्त लोग भगवान के प्रति अपन श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करेलन सा। ये अवसर पर कोविल में हर शनिवार के विशेष पूजा के आयोजन करल जाला। आज दूसर देश के खबर में अमेरिका ईरान में ढेर भरा हमला कर ले बा जेकर में ढेर जना के जान चल गल बा। एकर में से एगो हमला रहल फरवरी में जो नेगो ईरानी स्कूल पर करल गल रहल। ई हमला में राष्ट्रसंघ के एगो खोज मिशन कालबुल्लक की उस सब हमला के दौरान अमेरिका युद्ध अपराध कर ले बा। एक संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबको के नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मरने की खबर सुना जा। 69 बरिस के स्वसौत नेवों की श्रीमती माया देवी गर्भन जिन माया से जस्ती जानल जा थरलन आरला मागी ओकुले रह थरलन गुसरगल हवन। अर्थी आज दिन के 11 बजे लाशापेल औदौ तेली एनसन्स रॉयल रोड बोबासन से उठा के बिकारा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। ब्रांच रोड रिश्मा फ्लाक में 56 बरिस के सेकंड सीजन के श्री नंदेव चिनातो जिन पोलियो से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन। अर्थी आज फजर के 10 बजे उनकर पत्नी मिकाइला चिनातो के घर ब्रांच रोड रिश्मा फ्लाक से उठा के लावोचो की श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। मुसलमान फेयरव्यू मोताबा में 83 बरिस के 83 के श्रीमती कर्मावलम देवी अरुमुगम जिन सीता से जस्ती जानल जाथरलन आर पहले हेड टीचर रलन गुजरगल हवन। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकर बेटी बीना कुंजल के घर मुसलमान फेयरव्यू मौत डालबिया से उठा के प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। आलिशा क्लिस्काली में 67 बरिस के स्वसंसेतों के श्रीमती कुष्मावती घुरा पैदाइश नाम रामदयाल अर्जुन कुमारी से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन। अर्थी आज फजर के 9:30 उनकर पति सुखदेव घुरा के घर आलिशा क्लिस्काली से उठा के गजबेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। 84 बरिस के 84 के श्री हेम नारायण सोबुरा जोन हेम से जस्ती जानल जाथरलन आर एवेन्यू तेलफेयर बेलगोज 84 रहथरलन गुजरगल हवन। अर्थी आज दिन के 12 बजे लाशापेल रादौत एलियनसन्स रॉयल रोड बोबासन से उठा के गांधी पालमा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट नून। रोते नंबर 1 बेतु काथोबोन में 57 बरिस के सकन सेतों के श्री प्रवीन्द्रनाथ रघुनंदन जुन रविन से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन। अर्थी आज फजर के 9:30 उनकर भाई महेश रघुनंदन के घर रोते नंबर 1 बेतु काथोबोन से उठा के गांधी पालमा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। नंबर 7 सीते से आशा पॉम्प्लेमोस में 66 बरिस के 87 के श्री एलापा लचाना जिन आत्मा से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकर घर नंबर 7 सीते से आशा पॉम्प्लेमोस से उठा के थ्रियोले के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट नून। मामजेल्लो कोयराची में 61 बरिस के 63 के श्री रेतानन रमादीन जिन विजय से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन। अर्थी आज फजर के 10 बजे उनकर घर मामसेल्लो कोयराची से उठा के तेमिनिस थ्रियोले के श्मशान भूमि ले जाल जाए। Cremation today at 10 a.m. Quand la bouteille rouge

0: 87 बरिस के कथोवा सेतों के मिसेस बीबी हाफिज बाथिया पैदाश नाम कुस्माली अर्जुन हाफिज से जस्ते जानल जाथरलन इंतकाल कर कल हवन जनासा आज दिन के 12 बजे उनकर घर कौलाबू ते अगोश से उठा के नूरे मोहम्मद नूरानी बस्ती मस्जिद ले जाल जाय आर दफनाई खातिर बामा औशों के कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे आफ्टरनून। रामजीत लेन बालिसों होजबेल में 68 बरिस के ससौचवीतों के मिसेस बीबी सुलमा बुलाकी पैदाश नाम शामुताली अर्जुन सुलमा से जस्ते जानल जाथरलन आर पहले मुसलमो प्यात फुगसाइड क्योपी प्रहथरलन इंतकाल कर गल हवन जनासा आज फजर के 10 बजे उनकर बेटा अजमल मियाँ बुलाकी के घर रामजीत लेन बालिसों होजबेल से उठा के यूनियन पार्क के कब्रस्तान ले चल जाई। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नंबर 147 मौसलमो VRS 1 मोडे से रोड प्लेन मायों में 75 बरिस के ससन कैसों के श्रीमती प्रभावती मुताई जिन प्रभा से जस्ती जानल चाथरलन गुजर कल हवन अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकर घर नंबर 147 मुसलमान VRS 1 मोडे से रोड प्लेन मायों से उठा के प्लेन मायों के श्मशान भूमि ले चल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड बोबासे में 57 बरिस के श्री देवानंद जगरू जो विकास से जस्ती जानल जाथरलन आर पहले बोबासा के पुलिस स्टेशन में से जैतरलन आर नंबर 9 मौसलमा लेकांग बोबासा रहथरलन गुसरकल हवन अर्थी आज सांझ के 4 बजे लाशापेल औदौत एलियनसंस रॉयल रोड बोबासा से उठा के श्रीबेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। डी 4 एबेन में 83 बरिस के कथोमै थ्वासों के श्रीमती विहडम्बर कुपेन पैदाश नाम तेउ वेंगाडम अर्जुन विनोदा वहाडम्बर से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हमन अर्थी काल फजिर के 10:15 बजे उनकर घर डी 4 एबेन से उठा के गांधी पालमा काथोबोन के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुमरो आत 10:15 AM। जितना जना शोक में बाउ लोग के संगे हमने के हमदर्दी बा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हैं पूजा गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। और आज का जो नाश्ता है वो नवीन जी द्वारा तैयार किया गया है। और अभी हाल में पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। कौन सा आभूषण है जिससे उतार देने से नारी और भी पूजनीय हो जाती है? वह कौन सा आभूषण है जिससे उतार देने से नारी और भी पूजनीय हो जाती है? 4028085 पर या फिर 5251700005 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं।

इतना भी क्या मुश्किल है, बताइए वह कौन सा आभूषण है जिसे उतार देने से नारी और भी पूजनीय हो जाती है। वह कौन सा आभूषण है जिसे उतार देने से नारी और भी पूजनीय हो जाती है। 4028085 पर 402 85 85 पर आप सभी का इंतजार है।

तो चलिए लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, शायद लाइन में कुछ खराबी है।

0: तो चलिए लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो हेलो, लाइन कट गई फिर से। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: मैं इंदिरा हूँ मेबैक से।
0: अच्छा इंदिरा जी, आपका स्वागत है। और इंदिरा जी के पास क्या जवाब है?
1: मैं जी सारे आभूषण है, साड़ी, उनकी पायल, उनकी मिंची, उनकी मंगलसूत, उनकी सेंडू।
0: नहीं ये गलत जवाब है, पर कोई बात नहीं, आपने
1: यही तो
0: नहीं, वो क्या कौन सा उतारती है जो उसको और भी पूजनीय बना देती है, मान लीजिए जो
1: है।
0: हाँ मान लीजिए उसका त्याग करती है, क्या है वह आभूषण जो त्याग कर देती है वो और भी पूजनीय बन जाती है?
1: वचन, कॉम्प्रोमाइज।
0: वचन किससे किया जाता है? वचन
1: जो आपसे फेरे दिया है।
0: नहीं ये भी गलत जवाब, कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन। बाय बाय।
1: ओके बाय बाय
0: बाय,
1: शुभ दिन आपको भी,
0: आपको भी। नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: जी मैं त्रियोली का राजकुमार।
0: त्रियोली का राजकुमार, आपका स्वागत है राजकुमार जी। चलिए बताइए आपके पास क्या जवाब?
2: ये जवाब जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मेरी मेरी बीवी का सामान कैंची की तरह चेक किया, जो उसे निकाल दिया, जो मैं
0: क्या बात है भाई, वाह कैंची की तरह चलती है, उस जुबान ही है जो त्याग करने से और भी वो और भी पूजनीय बन जाती है। ब्रावो
2: ब्रावो ब्रावो, धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद। यूं ही हंसते और खिलते रहे, बस यही आशा है। आपको कहेंगे शुभ दिन
2: आपको भी। बाय बाय
0: बाय। क्या बात है, यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता के साथ साथ मजाक भी हो जाती है। तो एक और सवाल आप सभी के नाम, वो कौन सी थाली है जो भरते भी खाली लगती है?
3: अपनी अपनी सबने कहे।
0: वो कौन सी थाली है जो भरते भी खाली लगती है? 4028085 पर, 4028085 पर आपका इंतजार है। वह कौन सी थाली है जो भरते भी खाली लगती है?

0: हेलो।
1: ये लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो,
0: हाँ जी पूजा जी,
1: नमस्ते जी, कैसी
0: नमस्ते
1: हैं आप?
0: जी, ठीक हूँ, आप कैसे हैं?

0: मैं भी ठीक। आपका शुभ नाम?
1: मैं ज्योति जी।
0: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं कोटेज से बोल रही हूँ।
0: कोटेज से आपका स्वागत है। और ज्योति जी आपके पास क्या जवाब है?
1: दिमाग।
0: दिमाग?
1: हाँ।
0: नहीं, ये भी गलत जवाब ज्योति जी। कोई बात नहीं, और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुभ दिन। मैं फिर से प्रश्न दोहराती हूँ, वह कौन सी थाली है जो भरते भी खाली लगती है? वह कौन सी थाली है जो भरते भी खाली लगती है? हेलो।
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: मैं कैथरीन से प्रमिला बोल रही हूँ।
0: आपका स्वागत है प्रमिला जी। कैसी हैं आप बड़े दिनों के बाद?
2: लाइन नहीं मिलती है ना।
0: कोई बात नहीं, अभी लाइन मिल गई आपको। अच्छा, ये बताइए आपके पास क्या जवाब है प्रमिला जी?
2: आसमान।
0: आसमान
2: जी?
0: नहीं।
2: आसमान में तारे भरे रहते हैं ना, फिर खाली दिखता है ना।
0: नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं प्रमिला जी, आपको कहेंगे शुभ दिन।
2: धन्यवाद।
0: और आपको कहेंगे शुभ दिन साथ साथ में गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: लाइन पर एक और श्रोता, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: बताइए आपके पास क्या जवाब?
1: पूजा का थाली।
0: पूजा का थाली
1: नहीं,
0: नहीं।
1: आशीर्वाद
0: नहीं। एक और
1: आशीर्वाद, पूजा का थाली।
0: पूजा के थाली में क्या रखते हैं हम? अपने अंदर की क्या रखते हैं?
1: पूजा करने के लिए
0: अपने अंदर, अपने अंदर की क्या, जब हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं?
1: हमारा मन भगवान से मिल जाता है।
0: नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं बसंती जी, आपको जी, कहेंगे शुभ दिन। चलिए एक और श्रोता को मैं लेती हूँ, फिर आप सभी को मैं ही जवाब दे देती हूँ। हेलो
2: हेलो हेलो,
0: नमस्ते जी।
2: नमस्ते नमस्ते बहन,
0: आप कैसे हैं? आपका शुभ नाम?
2: रामेश सिपोल, मुझे साथ से।
0: अच्छा रामेश जी, आपका स्वागत है। और आपके पास क्या जवाब है?
2: तिजोरी।
0: फिर से?
2: तिजोरी।
0: तिजोरी नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन आपको।
2: शुभ दिन पूजा जी।
0: अच्छा जी, चलिए एक और श्रोता को मैं अवसर देती हूँ, देखती हूँ अगर दिमागी कसरत हो जाए, मिल जाए जवाब मुझे। हेलो
3: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
3: बस बाद में बताती हूँ।
0: चलिए बाद में बताइए, बताइए
3: पहले। जवाब है मन्नत।
0: मन्नत?
3: हाँ।
0: अच्छा, वो मन्नत के साथ एक और चीज है,
3: इच्छा।
0: हाँ इच्छा, जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती हम क्या होता है उसके साथ?
3: तो मायूस हो जाती है।
0: हाँ चलिए मैं आपको ताली दे देती हूँ, क्योंकि आप करीब ही है, तो मैं कहूँगी असंतोष की थाली वो है सही, जो मैं वर्ड ढूंढ रही थी, जो शब्द ढूंढ रही थी, तो चलिए आपको ही दे देती हूँ मैं। भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो बताइए।
3: मानती हूँ।
0: मानती जी, अच्छा जी, आपको बधाई हो और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शुभ दिन आपको भी। तो चलिए अब

एक आखिरी प्रश्न आप सभी के नाम। आजकल लोग

जहर को कहाँ छुपा कर रखते हैं? आजकल लोग जहर को कहाँ छुपा कर रखते हैं? बड़ा ही आसान है। 4028085 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। चलिए बताइए, आजकल लोग जहर कहाँ छुपा कर रखते हैं?

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप? बढ़िया
1: मैं अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं?
0: जी, आप भाग दे रही है तो मैं चकाचक हो गई। बताइए, आपके पास क्या जवाब?
1: तो मेरे ख्याल से मन में
0: मन में। और आपने सही जवाब दिया है, साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से ही आप मैसेज भेज रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बधाई हो।
1: धन्यवाद पूजा जी। आप सभी श्रोताओं को शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, और इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक।
2: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: तो श्रोताओं, जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और नवीन जी को भी तहे दिल से धन्यवाद इस नाश्ते को तैयार करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, और 9 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम रत्ना जी प्रस्तुत करेगी। तब तक पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। अभी हमने ओजोन लेयर पर बतियाब जा, वर्ल्ड ओजोन डे मनावल जाला हर बरिस 16 सितंबर के। ओजोन लेयर ह का चीज कहे चाहे हमनी के एकर विश्व दिवस मनावे के, कहे चाहे हमनी के एकर सुरक्षा करे के, एकर कौन असर बा हमनी के जीवन पर, ये बात पर हमने ध्यान देव जा। दरअसल हमनी के जीवन, हमनी के दुनिया, धरोहर और संस्कृति के जीवित रखे खातिर घामा के जितना ज़रूरत बा उतना ही ज़रूरत बा ओजोन लेयर के, जोन घाम के उ सब जहरीला किरण के धरती पर आवे से रोकेला, जेकर से हमनी के हर प्रकार के खतरा बा। ओजोन लेयर एगो ऐसन हल्का गैस है जेकर से घाम के खतरनाक रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेला, और ये ब्रह्मांड में जीवन सुरक्षित रहेला। ओजोन लेयर इतना ले जरूरी है कि 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस 16 सितंबर के दिन इंटरनेशनल ओजोन लेयर दिन घोषित कर लेबा। इस दिन 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करा गल रहा ओजोन लेयर के हानिकारक वस्तु से सुरक्षित रखे के। ऐसन बहुत केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हालोंस, जेकर इस्तेमाल से ओजोन के परत के नुकसान पहुँचेला, ये प्रोटोकॉल के पालन ढेर देश करेलन सा, और CFC होला प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगावेलन सा, और एकर से संबंधित बा विना प्रोटोकॉल भी ओजोन लेयर के सुरक्षा खातिर स्थापित करा गल रहा। 1970 में जब वैज्ञानिक लोग दिखलन जा कि ओजोन लेयर में छेद होता एरोसोल से, जोन की एयर कंडीशनर, फ्रिज वगैरह वगैरह के इस्तेमाल से होत रहल, और एकर असर इतना खराब बाकी एकर से सकी स्किन कैंसर, कर्क बीमारी, कैटराक्ट भी सकी होवे, और पेड़ पौधा और इकोसिस्टम के खतरा होए, तब उ लोग इस सब प्रोटोकॉल के शामिल कर लन जा, स्थापित कर लन जा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हीलिंग द ओजोन लेयर एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए ओजोन परत के पुनर्स्थापना और जलवायु परिवर्तन से संघर्ष, ये सब बात के शामिल कर गल। तो जिसे देखा था वह ये सब प्रोटोकॉल के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय दिन हमने के ये एहसास दिलावेला कि ओजोन खाली पृथ्वी पर जिंदगी खातिर ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमने के भावी पीढ़ी खातिर चाहे ओजोन के बचा के रखेगी। हमने अपन जीवन जी ले वे सा, लेकिन हमनी के चाहे आवे होला पीढ़ी खातिर ई

0: सब जोन आकाश बा, ई सब जोन प्राकृतिक संसाधन बा, उ लोग के सुरक्षित रखेगे आवे होला पीढ़ी खातिर। ओजोन भी दिग्बता धरोहर के रूप में ही हमनी के मिलल बा, और ई अमानत के रूप में हमनी के चाही आवे होला लैका लोग के सुरक्षित छोड़ के जाए के, ताकि उ लोग सकेंजा एगो स्वस्थ दुनिया में स्वस्थ रूप से सांस लेवे, और यहाँ पर कोनो जहरीला किरण के नहीं चाहिए परे के, जैसे कि कोनो बीमारी सकी पैदा हुई। तो हमने सब कोई के ये जिम्मेदारी बनेला कि ओजोन लेयर पर जस्ती से जस्ती जानकारी पावब जा, और कैसे एकर सुरक्षा होई, काहे ये महत्वपूर्ण है, इस सब बात हमने के चाहिए जाने के औरों के जनावे के। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से मेबर के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर रू डेलिस, रू न्यू, रू फ्लामों, रू शाम्पाइन, रू सेंट गोलेट, रू सेंट मारी, रू बांबू, रू सोफ्रेन, रू लापास, गणपत लेन, गोपाला लेन और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, यह है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं गीता जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते गीता जी।
2: नमस्कार रटना जी, सभी को हमारा नमस्कार। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर आई नई अमेरिकी रिपोर्ट जेगो गौशा की अमेरिकी सैन्य अभियानों में बढ़ती रणनीतिक भूमिका की पुष्टि करती है। मध्य पूर्व में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सैन्य सामान और लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा जेगो गौशा की ओर भेजा गया है। अटॉर्नी जनरल गविन ग्लोवर के अनुसार इससे शागस का मुद्दा और भी संवेदनशील हो सकता है। उनके अनुसार जैसे जैसे ये सैन्य अड्डा अधिक रणनीतिक होता जा रहा है, वैसे ही बड़ी ताकतें यहाँ अपनी मौजूदगी को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जैसे जैसे जेगो गौशा ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, वैसे ही उन्हें एक मजबूत कानूनी आधार की भी ज़रूरत होगी। भारतीय हिंदुजा ग्रुप ने मॉरिशस में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मॉरिशस के साथ अपना सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने कल दोपहर बाद पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। राष्ट्रपिता सेसे सागराम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। मॉरिशस को आज़ादी दिलाने के साथ साथ उन्होंने

0: नए राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कई समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। SSO बोटानिकल बाग में उनकी समाधि पर, पोर्ट लुइस वाटरफ्रंट में उनकी प्रतिमा पर और उनके जन्म स्थल केवल नगर बेलगेव में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत शुरू कर रहे हैं। गोविंदन पूजा के दौरान भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। और विदेश में अमेरिका ने ईरान में कई बड़े हमले किए हैं जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इनमें से एक हमला था फरवरी में जो एक ईरानी स्कूल पर किया गया था। इस मामले में राष्ट्रसंघ की एक खोज मिशन ने कल कहा कि उस हमले के दौरान अमेरिका ने युद्ध अपराध किया था। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 18 सितंबर शुक्रवार का दिन अभी से लेकर 10 बजे तक हम रहेंगे आपका साथ देने के लिए। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम पर हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस वक्त तकनीक पर हमारे साथ है कादिया, साथ है दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और रितेश महाबिया हमारे प्रोड्यूसर। आपको ये भी याद दिलाते चले कि दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच पुनः आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर। आज के इस कार्यक्रम में हम

0: हमारे साथ जुड़ेंगे बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी, और बिल्कुल आज हम एक बार फिर बात करेंगे बंटवारे पर जो डिवोर्स के बाद जारी रखा जाता है। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते रघुनंदन जी, और आज के कार्यक्रम में आज हम तोहर साथ रहब तो जरूर, जैसे पिछला सप्ताह बात कर ले रहलन तो एगो छोटा सन रिकैप करे के चाहिला जितना कोई श्रोता लोगन हमने के सुनत हवन जनियन स कि कौन टॉपिक पर आज हम बतियात हैं।
1: हाँ, समय दिखले रही पताज कब होएला जब एगो एगो आदमी जीवोश होला पति पत्नी शादी कर ले बा तब ओकर जोन जोन चीज किन ले होन सन तो उ सदिया में तो कैसे पतज हुआ होएला मैं आज होतना उ में नहीं जाब सर बेगो एगो रिकाप कर थे सर कि जब एगो आदमी शादी करेला कोई भी है तो उ ओके मिलेला शादी में मजे मेम की पति किन ले हुई कोनो चीज या पति है, है पत्नी किन ले हुई तो उ लोग के मिलेला आधा आधा एगो हमने देखे सर को बिया कब मिलेला सिनेमा देखले रही सर। और भी जब एगो है पति हो या पत्नी हुई ओकर माँ बाप बगल से मिलल बा एगो जमीन एगो दुनाशियों या एगो शिक्षों में माँ बाप मर गल बा तो जमीन छोड़ के चल गल बा उ कब शादी करेला तो उज बियावा में न पत्नी जाला ओकर बगल से न पति के मिलेला। अच्छा। ओकर जीबियावा उकरे रहे जरा पसकी एगो दान लिया रह और दुनाशों में तो है उकरे रहला और दिखले रही सर जब एगो आदमी शादी कर ले बा मैं उस सदिया में ऊक मजा एगो लासीगंस ले ले बा तो वो लासीगंसवा के पैसवा को मजा कुछ कब माछिए हो जाला लासीगंसवा तो वो ओकरे हुएला नहीं नेसेसर ओकर पति के दे के या ओकर पत्नी के है दे के एगो लासीगंस के विषय में और एक बानो है दिखले रही सर है बा आज हम देखब सर सेपारेशन जीबिया। अच्छा। पति पत्नी शादी कर ले वनसन जहाँ कुमार जो सेपारे हो वनसन पसकि जैब हुआ हमेशा शादी करे मौया सिविल तो पूछे ला हुआ कि ऑफिस हुआ कौन काल ती शादी करब तो वो सखी बोले कि कुमार जैसे हम सेपारेशन जीबिया हम के मन बा आज देखब मॉरिशस में हम जैसे हो वाला बोले रही हम तो हमेशा कौन से ये कर ले हैं सभी के कब शादी कर लो कोई भी है तो एगो प्रॉब्लम हो जला एक बार आदमी बोले ना शादी कर ले खाली में लिखो नहीं हमके तो जीबिया हो तो शादी करे के एक प्रॉब्लम हमने देखेला सब कब होएला जीवोश तो जीवोश में देखब जे शादी में कोनो चीज ले ले हो इंसान एगो दे तभी देखब सर तो चाहेला दोनों पति पत्नी आके पेय करे के अपन धन रही कामे बेच के चाहेला उकम जे चुकाई के वो देतुआ मैं यही बोले इंसान प्रीतो शादी कर से प्रकाशो जी बिया मैं सेपारेशन जीबिया के मतलब ये है जो आदमी शादी कर ले बा रिजिम सेपारेशन जीबिया वो का होएला जो जीबिया ओकर रहल शादी के अगाड़ी वो हमेशा ओकरे रहेला। शादी के बाद भी जो जीबिया मिलेला पैसा या कुछ भी हो ओकरे रहेला लुतो हो कामियो हो या कुछ भी ऊपरती के मिलेला कुछ नहीं सेपारेशन नाम है सेपारेशन जीबिया अपन अपन जीबिया कुमार जे उलोक के कुमार जे रहेला तो यहाँ देख लो जे शादी करेला सेपारेशन जीबिया जे ओकर जीबिया हो तो ओके कुछ मन हो अब ओकर जीबिया से कैसे ओकर एडमिनिस्ट्रेशन करे के ओके कुमार जे देखे के या से बोलो मन होई ओके आगो है जमीन एग्रीकोल है ओके मन बा प्लांटे करे के या कुछ करे के या कोई के दे के भाई में या कुछ के या अपन बहन के दे या भाई के दे दे वो कोई के नहीं पति के कुमार जे नहीं चाहेला ओकर ऑथोराइजेशन हाँ ओकर में डूबे के तो एडमिनिस्ट्रेशन जीबिया सब चीज कुमार जे सकी जुई करी सकी बेचे सकी उस जमीन वहाँ बिना पूछे कंसेंट में ओकर पति के
0: यानी ओकरा ओकरा सब परमिशन बा अपन मुकमाजे नहीं नहीं पूछे के चाहिला जे वो आगे बढ़े के कुन केकरा दे के कौन चीज करे के हो जमीन संगे।
1: हाँ, और दूसरा चीज एगो बोली के देत हो के कभी तक बान आदमी कम एगो घर के नीला या कुछ करे लनसन तो देत करे लनसन नहीं अब एगो देत ले है तो उ जे सिपाहियों जिबियां कर ले होई तो उ अपन देत अपने ही भरे के चाहेला उ में पति या न पत्नियों नहीं ढुकेला सेकंड जैसे हमने बोला सर ना वो पौधा मयाज रही आप मयाज तो यहाँ देखेला सर सिपाही है तो उ लोग एगो चीज है पोता है
0: तो है जब पर रघुनंदन जी तोरा आ रहे थे करत है पूछब कि मान ल जा एक व्यक्ति के मतलब जो घर बा वो उही व्यक्ति के नाम पर बा तो है में भी मतलब शादी से अगाड़ी किन ले हवन तो है में जैसे सिपाहियों जिबिया के तू बोलत हवा तो शादी के बाद उमे कोनो पत्नी के हक नहीं रहेला
1: खूब जोली अपने बोल देला सब चीज हुआ अंग्रेजी में कब शादी कर ले बा सेपारेशन जीबिया सिबोसो घर बा या एगो जमीन बा या एगो बड़का बिजनेस ओकर बा उ हमेशा ओकरे रही पतिया भी नहीं नहीं सके ढुके में एगो चीज इंपोर्टेंट है शादी कर ले वनसन पति पत्नी में सेपारेशन जीबिया अब सेपारेशन जीबिया में सिपोजे कब शादी कर ले वनसन संगीत जियत वनसन लोकातिर में रहन सन

0: बोलन जी कहाँ रे कितना दिन लखब सर लोकातिर में चलन तू और हम एगो कुमा जी पति पत्नी में मतलब बोले खोजत हैं कि चल एगो घर की निशा एगो जमीन किन के एगो घर बनाई के ताकि हम नहीं सकब सर कहाँ लुए लुआई पे ये करब सर तो उ जमीन वहाँ यहाँ से बगासियों जी बिया दिलबा एगो बोली के पति दिलेबा आधा पैसा उमे आए मदमो भी दिलेबा उके आधा उके कि दोनों में डाल के बस एगो यागो देख ले ले लेवन सन बस जाके उ जमीन वहाँ खरीद लेवन सन एगो घर बनाई लेवन सन तो हियाँ देखब नहीं बस séparation du bien parce que il y a où du bien ou écrit nommé ego du bien indivise मतलब पति के होई आधा पत्नी के होई है कुमार आधा मेम की शादी कर ले उन सन séparation du bien parce que où écrit nommé indivision हमने बोला रिजिम इंडिविजन में ओके कुमार जो कर फंक्शन है मैं सिर्फ जाने के चाहला के कितना कंट्रीब्यूट कर लेबा
1: हां
0: जे एगो दिले हुई 50 रुपया और हाउ दिले हुई 50 तो आधा आधा कब एगो प्रॉब्लम हो जाए जीवो सो जाए तो आधा आधा हो या देखब सब बेचे हो या एगो आ ओके मन बा किने की तो का करी तो ऊ सकी कुमा जे ओकर पैसा हो के पति के दे के बस अपन घरवा का नाम में डाल दई ई इम्पोर्टेंट हाँ मैं हमेशा जैसे बोले रही आयसा हमेशा कब शादी करब सेपरेशन जी बिया दोनों दिलेबा पैसा तो चाहे ला जोन जोन रेसी बा जोन जोन चीज खीन ले हो या फर्नीचर हो घर हो या इलेक्ट्रोमेनाजे हो या कुछ के चीज तो उकर रेसी रखियो आ कैसे को बोली के अभी सेपरेशन जी बिया में एगो भाई है सुपोजों पत्नी है वो 90% ou contribuer kar le ba ou gharwa me pati ta souci ri nahi séparation ale adha ta to ke mile ke chala ta nahi e go det le hoy se besoin la banque ta la banque de nego papier ki 90% kou ma je paiswa i del le ba madame wa ta o ke kab mile paiswa divise koi ta dek ba o ke 90% ki vale roi mile 10% we ke michewa ke mile te séparation di bien ha badi important mais meilleur sadi kare ke séparation di
1: ta hai ja par e go sawal man me aawa ता रघुनंदन जी कि सेपरेशन जिबिया के जोन कोंत्रा रहेला उ के बनावेला और कहां कब बनावे के चाहिला है सदा शादी के दिन शादी के अगाड़ी कैसे कैसे चलेला
0: जोली के शो है पहला चीज कब एक आदमी जाला पति पत्नी शादी करे त जे सुबोज आज कुमा जोलो के गलवन सन लेता सिविल में त लेता सिविल में हुआ जाय त हुआ एगो क्लॉक रहेला कुमा जोगो ऑफिशियल से दिया जो ऑफिशियल हुआ रही त पहला चीज एगो छोटा सा पापिये देवेला उ पापियवा में लिख देवेला कोन कोन काल के मुरिसस में शादी होला किसी आदमी साबे séparation du bien communauté du bien il y a contrat mais ça dit éviter le comme ça contrat que vous savez mais tu il y a pouche la con qualité tu ou admis un ban ka bole la हम नहीं है हम हमने यहाँ तीर से कोनों में पूवी हम शादी कर तो वो आदमी कब नई मौसम कर करेला ओकर है में है कोंत्रा दे मोयाज में तो वो कोरे बिया शादी करेला
1: अच्छा
0: देखो कोरे बिया के अभी जाइबा घरे तो देखिए तो शादी चुन कर ले हुआ कौन सी में शादी कर ले हुआ कौन कालीते में कब मौसम ने नहीं बा एगो कोलन है द्वात में देखबा नई मौसम ने होलबा कुछ कुमा जे नहीं द्वात नहीं घुस में हो तो घुस में देखबा कर कोंत्रा में कुछ मौसम ने नहीं होलबा कौन कालीते शादी कर ले हुआ तो उच शादी कर ले हुआ कोई भी तब तुहर कोंत्रा मयाज नई मौसम ने करेला मैं हुआ गई ल उलेता सिविल के ऑफिसे हुआ के बोलबा अरे हम के मन पास शादी करे के सेपरेशन जी बिया हाँ तो उ लिखे ला हुआ तू शादी कर तो चूज कर ले हुआ स्वाजिगरी कर ले हुआ कि सेपरेशन जी बिया शादी कर रहा कब सेपरेशन जी बिया कर ले हुआ तो मौसम ने करेला
1: अच्छा
0: वो है लाख लाख मयाज हुआ में तो जान जाए कोई जहाँ कौन कालते शादी कर ले हो तो उसने कौन जिन काले को प्रॉब्लम हुई तो वही से गुवेने हुई कौन रिजिम में शादी कर ले हो तो वही लगी मैं लिखे ला उमें अभी कुछ अब हाँ अली कुछ बात नहीं ना
1: नहीं
0: अली तो यहाँ वो कब सेपरेशन जी बिया कब शादी कर ला कोंत्रा मेंशने उल बा और ओकर नॉर्मल तो कर फॉर्मालिटी तो आने लग जो अब दूसरा चीज हमने देखब सर एक बहन आदमी अभी के लिए मॉरिशस में ही कालीते शादी करता न कोई बिया करता न सेपरेशन जी बिया करता अब शादी करता कोंत्रा में ये गो नया चीज नहीं है मैं आसे गो लेपोक से बा हमने के है में हमने के कुछ सिविल मोशिया में ये एग्जिस्ट है रेजिम कन्वेंशनल या हमने जैसे बोली ला सा कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रा में ये आदमी बोला जी कॉन्ट्रा में तो शादी कर ले हो तो बोले हाँ तो कुमार दा अब कॉन्ट्रा का ये एगो रेजिम ऐसा है एगो फीचर एपू जो पति पत्नी मन बाओ के शादी करके अब जाने ला हुआ जालन सन एगो कोंत्रा डिसाइड करे लंसन करे के उ कोंत्रा वा एगो नोटेर हिया होएला सब चीज लिख दे उ कोंत्रा में से बोजों तो हर एगो जमीन बा कार्बन में तो कार्बन के जमीन वा तो हर दे से बोजों तू बोलबा हुआ ओ के

0: दूसर बा पति के से बोझ बा शहर में तो हुआ के शहर हई फर्नीचर ओकर हई लुतु तोहर ह सब उ कोत कौवा में जोन जोन बा शादी करी के गाड़ी है सब
1: तोरा कर देवेला
0: हाँ उमे हाँ लिख देव इ कोनो तक बाद में बिधा लेला जोली जोली सोफा 300,000 के किन ले ले बबले नहीं तो के एक दिन प्रॉब्लम हुई तो तोर खातिर छोड़ब नहीं अब हम के चाहे ला कुमा जो ओके मिले के तो हिये कोत कौवा में सब डिटाई एटाब्लिय करेला के कौन चीज के कर बा अब ओकर खोपिए थे जब उ बन चला का करेला ई चाहेला जैसे बोली जाए के चाहे गो नोतेर हिया अभी शादी नहीं होल बा नोतेर हिया के गाड़ी जाए के नोतेरवा पापियवा प्रिपारे करी सबके बोली के कहाँ मिलता और कौन सी झुआ मिलता तो ई उमोमो से लिभाषियों में उ पपियवा जो नोतेरवा बन ले बा उ ले जाए अब जाए हुआ कब शादी करे तो बोली ना उफिसवा कौन काल से शादी करते हुए हई का एगो छोटा बन पाफिया तो ऊ बोली कि हमके मन बा कन्वेंशनल में मतलब कोतरा में शादी करे के तो कोतरा में कभी शादी करे ओके बोली तो के देखे ला ऊ कोतवा जोन बा पूवी इलिसित नहीं बा पूवी एगो चीज कुमा जे नहीं कोट लालुआ बा नहीं बा आर कोनो चीज एगो मूवी चीज कुमा जे ऊ में कोतवा में नहीं चाहे जब ऊ बा तो ओके बोली कि लेता सिविलवा के ओके बोली हम शादी करत हई कोतराचल में कोतरा में तब ओके सही सिविलवा के है ऑफिस हुआ पूछे ला के कर ले नोतेर हिया के कर हिया तू डिपोजिट कर ले हो वे ओ कौत हुआ ओकर नाम चाहे ला ओके तो उन ओकर नाम लिख दे कि ई कौत हुआ है करल रहल एतेल नोतेर हिया एतेल नोतेर हिया ओ डिपोजिट कर ले बा तो देख ल हिया अब ओके सब चीज हो गल अब काल एगो प्रॉब्लम होल एगो जीवोश के विषय में सैंप न लड़ाई करी पति न लड़ाई करी पत्नी बस की कोतरवा में तो सब कोई बोल दे ले बा के का जीवोस होई के का मिली के कौन चीज है कैसे बोली तो वो लोग एकर लो तो वह उकर है एकर जमीन एकर है सब हुआ लिख गल बा उकर कोजिशों सब कुमा जल लिख दे ले बा अब कब केस करी लाकू है में लाकू सिपाही में है जाए फैमिली डिविजन में तो हुआ वो कोतरवा ले जाके ओकर आब हुआ कि पहला सूरज दे ओकर प्लेटवा में तो डाली एगो कॉपी ई कॉपी या कौन कालिते बस अब तक जीवोस मांगता तो जीवोसवा कब हुआ मांगी तो हुआ जीजुआ ओमोलोग करेला ओमोलोग मजे अप्रूव करेला कि ई जोन चीज कर ले वंसन सब करेगा तब जीविजों ओकर है होई पताज ओके पति पत्नी में अनमन जोन ऊ कोतरवा में लिखलबा तो यहाँ देखला उपमा जा दोनों सब चीज एगो एगो एगो अच्छा चीज है बस ये काहे न लड़ाई करी ना पति पत्नी तक कितना बरिस के कितना संगत
1: है में लावताज कौन चीज है देजावताज कौन चीज
0: हाँ लावताज ही है जब जोली चीज है जे जे कुमा जे अपन अपन चीज रख दे बा पहला को लावताज हाँ अली हमेशा को एगो है हमने के पुस्तक संगत जी का जाते हैं हमेशा गलत करेला एगो पति एक लीव में बोला था हमने बोला था केस जो नावेला वो में लिखेला बस ये पति ने कभी इसका शादी करेला तो दिखेला कि बहु धन दौलत बा दूसर के बा तो बोली अरे का करे लादोग में ढुक जाई कभी कुकमा जे इलिसिट चीज के लगे है करी पत्नी कुकमा जे नहीं बताई बा बहुत कम बा पत्नी जो लादोग में पति लोग ज्यादा कुकमा जे लादोग में बा पिए सब के हेने होने तनि ओकर जो कागते ले जालन सन सोसाइटी में हमेशा तक है आदमी बोलेला कि ठीक नहीं बा तो पति ज्यादा हाली गलत करेला सखी एगो जाके पुनारी के एगो देख ले में एगो चीज में या ओके मन बा हई करे के हौ करे के तो सिख पत्निया वो तो प्रिकॉशन लेवेला वो जाने ला अपन का करेला तो वो पत्नी देखबा जोन कब दे ले बा जे हिया डाल दे ले बा और कोतरवा में ओकर लावताज तो पतिया के कुछ नहीं सके मिले पतिया नहीं सके बोले नहीं हम कहो में सिपा काली सेजी आई एगो बोली के तो सेजिया तो नहीं आई जो मडमुआ के नमुआ में कोतरवा में डाल दे ले बा ना बस ओकर प्रॉपर्टी हुई तो एगो सेफ गार्ड नियर होवेला कि वो जमीन में वो चीज हुआ ओकर रही देख रहे ओकर लावताज यही से बोले आजकल के लामोड हो गल बा और नई गाँव छी बा हमने हमने के लिए पुख तो हम तो सदु शादी कर रहे रही तो ऊ एगो ले पुख रहल दूसर मानियर माँ बाप तक मजे मजे कहाँ माँ देखबा घर में से जाए के जोन बाप बोले हुई का मारे पीटे हमार माँ नहीं मारे कोई है मेरे को बोली कि मारे पीटे तो ऊ में बेचारे लोग रहे माँ बाप के कहाँ अब ते गोद में कैसे को कुछ बोला गाड़ी दिल्ला बोला है ने वो तो बोली हाई तो हम घर छोड़ के हम जाते हैं तब हियाँ देख ब तो वो मिशेवा ते एरिया कर लग तो जिबिया वहाँ को मजा कोई कोनो के नहीं बाबिलाई के वो कर जिबिया ले ले एक जिया तो वो भी सोची अरे बाप कल हम नहीं जबे को मजा को चीज करे को गलत चीज न तो हमरे चीज जो हमरे मन नाम में बा जो हमके मिली चल जाए वो भी

0: राजा तो ही खाती नहीं।
1: तो चला एको गीत के ब्रेक ले बब जा और हमारे श्रोता लोगन के जना देवत है आज पुण्यतिथि बा सर शिव सागर राम गुलाम जी के और श्रद्धांजलि अर्पित करत है हमारे गीत के द्वारा। तो बस साथ देते रहिए जा अभी थोड़ा घड़ी में कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ।

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम जारी रखते हैं और आज हमारे साथ बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी हैं, जो हमारे साथ बात कर रहे हैं कि शादी के बाद, मतलब मान लीजिए पति पत्नी अलग होने का सोचते हैं तो बंटवारा कैसे होता है उनकी जायदाद का, उनकी ज़मीन जायदाद सारी चीज़ों का। वैसे अगर देखा जाए कि शादी के समय अगर किसी ने कोई बहुत ही बड़ा कर्जा ले

0: लिया है। तो शादी के सेपरेट होने यानी डिवोर्स के बाद ये जो कर्जा लिया है वो कौन चुकाता है, कौन हकदार होता है इसका, आइए जानते हैं रघुनंदन जी से। रघुनंदन जी, जब मान लो शादी के बाद एगो शादी के अगाड़ी शादी के पौरमोयाज में जब कोई पति पत्नी एगो बड़का दित ले ले, ले बा कुछ मान लो एगो लोन ले ले बा कुछ बनावे खातिन कुछ किने खातिन त और जीवोस हो गल 6 महीना में तो है जो देत है के भरेला।
1: अरे बाप, ये वो जुली के शो। अच्छा, ही में बात कर लिया सर। हाँ। हमने देखे अब ससा विजय देत एगो कॉन्ट्रैक्टे हुएला पौंडों मौयाज में। हाँ। जब शादी कर ले बा एगो पति पत्नी वो के देत जे कर ले वंसन तो दोनों के कॉन्जॉइंट में भरे के चाहेला वो देत हुआ। अरे देत कब ले ला सर? देत हमने दे ले ला सर जब हमने के मन बा एगो जमीन खरीदे के या हमने के मन बा एगो घर बनाई के एगो लोजमा फैमिलियाल एगो घर बनाई के एक बार भाई बहन लोग हई देजा बा हई जमीन सुतल बा हुआ जैसे बोले लन सन तब के मन बा एगो घर के तो घर बनाई के एगो कंस्ट्रक्शन करे के एगो रेनोवेशन करे के तो चाहे ना पैसा ना तो पैसा करे के ऐसा चीज। अरे काल हम हमी तो देख लियो जोली सन टेलीविजन के मन बा खरीदे के हई में है एगो शॉप में तो हम के मन बा उ खरीदे के जोली सन सोफा लौका था बोली नहीं अरे सोफा हुआ इलेक्ट्रोमेनाजे के सब आदमी के पैसा तो नहीं बापूज में कि कहन तो वो देख बा ओके कब एगो सी बुझो अपारे इलेक्ट्रोमेनाजे या कुछ करे के होता या गो लोटो तो देखो देखो नया लोटो निकल रहे हुआ वो लोटोवा कब निकल रहे हुआ तो उतना पैसा के अभी देखो लोटो मुंस की 2 मिलियन में नहीं निकल बा तो 2 मिलियन के कर पुष में बाकी हुआ बा तो चाहे ला एगो देत करे के देत कर ले हुआ शादी के। जब शादी कर ले हुआ सब पति पत्नी कब जियत हुआ तो के पे करेला उ देत हुआ मेम की कब अरे कोई बिया शादी कर ले हुआ लुटवा तो तुहर नाम में बा तो इसकी कोई बिया जे शादी कर ले तो पतिया है कुमा जे बोली नहीं ई तुर में तुर नाम में बा नहीं दोनों कंजेंटमेंट साइक मा रिस्पांसिबल बा भरे के सभी जे जमीन होई घर होई इलेक्ट्रोमेनाजे होई मे बोई या कुछ किन बा रिनोवेशन कर ल जब एगो देत कर ल देत तो कला बैंक से हो तो जाके मांग बा एगो है पैसा ताकि उ देवेला तो दोनों रिस्पांसिबल बा कंजेंटमेंट संगे वो लोग भाई पति पत्नी वो लोग के चाहेला पेय करे के तही से देख एगो कभी लाभों के में जाइब तो पूछेला सी बुझो पतिया गलबा बोल कुमा जो है एगो घर बना कुमा है बनाई के उ जमीनवा में तो बोले आई घर वा के कर शादी कर ले लो बोले हाँ तो बोले कौन का बोले खोई बिया शादी कर ले हई या शादी कर ले ले हई तो बोली हाँ तुहर पत्नी हो गया है के चाहेला अकेले तुहर नाम में हम नहीं देव ओकरो चाहेला आपस के कुमा जाए पोता बा उ शादी कर ले हुआ काल एगो बोली के उ देतुआ नहीं सकल पे ये करे तो जोन चीज कोई मदम हुआ के सिबोजो है ऐ नाम में तो वो में देख बस सेजिया आवेला में एगो शादी में एगो देत कपति पत्नी कॉन्ट्रैक्चुअलमा कुमा जाए कॉन्जॉइंटमा जे कुमा जाए है कर ले हुआ सन तो दोनों के चाहेला आधा आधा भरे के उ देतुआ में समझला ना इगाल चाहे आप कहीं देखे अभी यहाँ मिसलमा हुए ला कभी मेम की कर ले हो अनसन एगो है अरे एगो बोली पत्नियाँ के तो पैसा बा यहाँ मिशेवा ओकर नाम में डाल दे ले गो देतुत कर दे ले बा वो के पिए करे के चाहे दितुआ नहीं सकता पिए करे के कभी तो खूमो एक बार पत्नी भी बड़ी लिमन हो अनसन वैसन ओकर दिल खुल के बोली अरे अरे पति का फिकिर कर ले हमारे यहाँ तो बा हमारे पुष में या बला बंक में तो बा पिकिर नहीं करिए हम तो पिए करो हम उ देतुआ भर दे कितना झोली है मे बा बड़ी कम बा मे बा कोई ने बोली एगो लाहौस में गिर गल तो ऊ जाके बोली हम पिए करब तो हिया जो देतुआ कुमा जे कर ले वनसन जो लिपोटेक दल ले वनसन ऊ घरुआ में आर कौन जो बा बंके में बस एक बार कोई के ला बंक में बा ला बंक दे ले बा पैसा हिया नहीं सकता भरे तो कभी पति या पत्नी बोले ला ठीक है नहीं करिए रह दे हमर है हम में हम चोर कुमा जे देतुआ भर दे तो यहाँ देख बा देत भरे के जब एगो पची मतलब पत्नी या पति आके साकी वोलोंते से बोले हम पे ये कर दे ला थोड़े तो की तरह का नहीं करिए बस तू कहाँ अनबे तू ही तो गरीब हो सी पका हुए प्रॉब्लम बा हुकुमा जे जाके तोर माँ बाप से मांग के तू के चाहे ला पैसा दे के वहाँ अपली करेगी देतुआ नहीं फिक्र नहीं कर हमार बा उतना दिन से रुके नहीं बोले रही ला मैं रख ले रही
0: रघुनंदन जी है सपना बतावा था सब कोई के ऐसे होला नहीं पर जैसे बोला था बहुत कम कम महिला लोग हवन जे बहुत बड़का बड़ा दिल रखेलन सा और जाके पे ये कर देवेलन सा
1: हमने भी बा बा हाँ, अच्छा। बस इधर ना हमने के एक एक्सपीरियंस बात देख लें इस हाँ। कैसे मजे हुले हुए ला सोसाइटी में हाँ। बा एक बार हाँ ढेर नहीं

0: बा में बा कि कोम का एक बान बोले अनसन वो जो अपन पत्नी के खुशी हुई देखो तो अगर पत्नी के प्रॉब्लम में बा इतना एगो डेट कॉन्ट्रैक्चुअल कर ले बा तो बोले नहीं फिक्र नहीं कर हम एगो मैनेज करके एगो डेमोस करके या हम ही एगो लोन लेके तुके भर दे तो दे फिक्र नहीं जो तू सुटली मन से आराम से हाँ हो बा जैसे बोल रहा कम बा में बा मेहिया जब डाको हो गल बा एक पति या पत्नियां पे करे के उ देत हुआ तो प्रॉब्लम ना जो देत कॉन्ट्रैक्ट कर ले लनसन एगो नहीं सकलक को मजे पे करे दूसरा से की बोले करेक बा हम ही तो पे दे लिपोथेक हो या कोंट हो या बैंक में या कोनो कालीते जहाँ दुआ हो गल बा सके उ कर्जा हुआ भर दे तो ये देखे ला एगो चीज बड़ी इंपोर्टेंट है। अब जैसे घर बोले रही ना घर रही या कुमा जे है जमीन रही सदिया में उकुमा जी चाहेला देतुआ करे के सदिया में जे देत ले ले हुई शादी में और शादी में कर ले हुई कोई भी है तो कोई भी है में कब शादी कर ले तो दोनों के तो भरे के चला ना तो हिया मैं एगो बोली के पत्नियां शादी करे क्या गाड़ी उकुमा जी उ देतुआ ले ले रहल तो पतिया कहाँ ढुकी हूँ बोले तू तो शादी करके गाड़ी मामा हम तो हम नहीं जानी ला तू देत ले ले रहल सिपा का कर ले ई में हम नहीं भरब हाँ जे रिस्पॉन्सिबल नहीं रही पे करे के कंजॉइंट में बस की वो देख ले ले रखल शादी के गाड़ी दूसरा शादी करे के गाड़ी हिया शादी कर ले बस सेपरेशन जी भी है तो सेपरेशन में ओकर जी भी तो ओकर है एकर जी भी तो एकर है तो वो तो माफ करिए नहीं बोले हम पगला हैं कि तो दाकी को हम भरब तो मतलब तब नहीं भरी सेल में कब शादी कर ले बा को मीन होते दी भी है तब शादी में पौधम या जैसे बस तो ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ओके आसुमे करे के चाहेला तब ओके चाहेला पेये करे के एगो पैसा कुमा जे सब सब मतलब कि हर दिन जो कॉन्ट्रैक्ट कर ले वंसन पति पत्नी शादी में तो देखबा कोरेक बा मैं शादी करे के अगाड़ी पे सुनेल म जे होई तो उ जन आदमीया ले ले बा शादी करे के अगाड़ी वही ओकर दे चाहेला ओकर चाहे ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसुमे करे के उही भरी और दूसरा
1: कोई नहीं। रघुनंदन जी मानला भी जीवोस हो गल बा और ये जीवोस अभी चला था नहीं मिलल बा जीवोसवा और जीवोस के पौधो में हाई एगो मानला एगो पौतने है कुछो चीज यानी कुछो जमीन से पा कुछो कोई कोनो जायदाद पेमिशों के बिना बेच दिले बा तो कौन चीज करे के चाहिला मानला ओकर पौतनिया के नहीं नहीं जनाल बा कि उ बेचा था या बेचा गल बा कुछो चीज मानला एगो गाड़ी रही सिपाही को जमीन रही कुछो बेच दिले बा अपन पत्नी या पति के कोसौतमा के बिना।
0: अरे पहला चीज दिखे के चला हमने यहाँ सिपोजो एगो जमीन रहल बोलना पहला लुतुओ भी देखो हाँ, सब हाँ। एगो जमीन रहल तो उ जमीनवा में मजे सिपोजो है ओकर जैसे बोली स शादी के हाँ। अगाड़ी ओकर हथोकरे रही हाँ। मैं सिपोजो यहाँ सदिया में बोलत हुआ हाँ। ओके मन बा एगो जमीन बेचे के नहीं सकी पहला चीज कोनो चीज करी नहीं काहे के करेला कोंतरा किने के बेचे के नोतेर न तो नोतेर यहाँ ओके जाए के चाहे नोतेर तो बोली पहला चीज अच्छा तो हर कहाँ कोतरा कहाँ बा तो कि बोली ना हई कहाँ मर कोतर बा तो कोतरवा में देखी ना पौधम याज किन ले रखल या शादी के गाड़ी किन ले रखल तो हिया देखलक पौधम याज बोली नहीं ये तो जमीनवा देखा था तोहर आर तोहर पति के नाम में बा बिना तोहर पति के सिया छे बिना ओकर कोसौतमा के नहीं सकल जाई बेचे इस जमीनवा और तो कोतरवे नहीं हुई नहीं है सकी बेचे देखल ये एगो चीज है पूर्ता अब गाड़ी में
1: हाँ
0: कब गाड़ी के साथ एगो चीज आई हाँ तो हिया देख बा गड़िया में कि कुमा जी शादी कर ले ले बा कोई भी है मिस उ गाड़ी के नाम एंतिया में रजिस्टर्ड के कर नाम में बा उ आदमिया जो उ बता प्रोप्रिएटर है तो उ तो बोली कुमा जी हमर नाम में है उ तो काले गो आदमी जाके दूसर से है ले ले एगो कुमा जी है करे मैं नहीं चाहेला ओकर पेमिशों उ गड़िया बेचे के एगो दूसरा आदमी से पतिया के हई में मैं कब देखब लीगल म
1: हाँ
0: लीगल म देखब तो पतियों के चाला तो कर दुआ कुमा जी हई में हई करे के बस की शादी में किन ले वंसन उ हई लुतुआ
1: हाँ।
0: तब दोनों के बनेला मैं रजिस्टर लैसे जमीन यार नहीं है जहां तेरु यहाँ यहाँ तो ओकर नाम में बा हाँ सकी
1: जेकर नाम हाँ जेकर नाम में बा
0: प्रोप्रिएटर है तो यहाँ देखबा पतिया तो कुछ नहीं सकी बोले हाँ मैम की कुमा जी मैं सिलमा नॉर्मल मा का करे कब बेचे लनसन ऐसन काम एक शादी कर ले वनसन उ एगो किन ले वनसन ने बोलो तो आधा आधा पैसा बांटे लनसन अपन में बोले बोलो तो आप बेच लेना अले कोरे हम ये तो किन ले रहे हम ही तो के दे रहे पैसा तो नाम में रहल तो ईमानी ते मैं सोच के उ बेच जाए हिया लीगल में कब देखब उलुतुआ

0: ukar nam entia meta ba ukar si boso madamua ki ta madamua ta bid dilak ha ukar chant paiswa de ki ab ukar nahi deita I ego dusar ha
1: sake ko kis kari ego kis chal chala ve ha bilkul aur aaj jab hum baat karte hain legal advice par aur aaj divorce mein hone wale batware par baat kar rahe hain ji agar aapke man mein bhi koi bhi aisa sawal hai jo kisi bhi legal issue ko lagkar hai to zarur aap hamare sath jud sakte hain on 402-8085 par ji ha 402-8085 पर इस वक्त हमारे साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका बनी हुई हैं तो ज़रूर आप संपर्क करें और कोई भी ऐसा सवाल है जो कानून को लगकर है तो ज़रूर आज के इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। आज हमारे साथ बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो जायदाद के बंटवारे पर खासकर डिवोर्स के बाद किस तरह से होता है इस पर बात आगे बढ़ाएंगे एक गीत के ब्रेक के बाद।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं और बिल्कुल इस वक्त हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कोई सवाल है जो आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पहले श्रोता से बात करते हैं। हेलो हेलो, जी हाँ, उनका कॉल कट गया है। जी हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं 4028085 नंबर है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, आप हमारे साथ कॉल के माध्यम से अपने सवाल को रख सकते हैं। और चलिए, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह से डाइवोर्स के बाद किस तरह से बंटवारा होता है, तो यहाँ पर हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर पति पत्नी कोनो बिजनेस करता एगो लौते फ्रीज हवन सर, तो कैसे एगो मान ला एगो दुकान खुलले हवन, एगो लाबुचिक खुलले हवन, काम करत हवन दोनों पति पत्नी, एवेसी करले हवन पैसवा, तो हाई में कैसे बंटवारा होला?
1: हम दिक्कत नहीं पूछते और काल के लिमन से कर ले हुआ जो जो चीज पोता है वही पूछते हुआ। ये कुछ चीज है आज मोदेन खैला भी है। पहले तो देखबा कुमा जे माँ बाप कुमा जे एगो बिजनेस में नहीं रखल या दूसर के आदमी से काम करे। मैं अभी के जो जेनेस बा जैसे हमने बोली ला सब नया नया शादी कर ले सन पति पत्नी बैठ के कुछ अरे कहाँ जी भी दूसर के है काम करे, काहे ना अपने एगो बिजनेस करब सर, काहे ना अपने एगो आँथे भैंस करब सर। अभी के देखब एक बान है आदमी बा एगो बुटीक खोले हुए सन पति पत्नी संगे हुए सन या एगो मगाजे खोले हुए सन दोनों संगे या कोनो दूसर एगो बिजनेस एगो स्नैक की खूब जरूरी चीज है। शादी के जाए के जाना खाई के दिमाग के वो जाने ला कि उतना पैसा मिले ला उमे तो बोले सन कोरेक शुरू करब सर ऐसा एगो बिजनेस ई एगो आँथे भैंस। जब एगो पति पत्नी शादी में कब एगो एंटरप्राइज कर ले वनसन बना बनैले वनसन या किन ले वनसन या गोइंग कंसर्न हो चलता उ मजा है बिजनेस हुआ शादी में कब उ बिजनेस हुआ के मजा है बैलेंसन दोनों कुमाजी है बा दोनों रिस्पॉन्सिबल बा उ है के अली शुरू कैसे रेस्टोरेंट से नको में तो उहे के उ लोग के चलल के लिए मजा गोइंग करे के तो उ लोग के चाहे ला जे किन ले वनसन शादी के आगे तो उ चीजवा रही जो आदमिया के रखल बस एक बान के रही शादी कलग तो ओकर पति मजा आगे तो हुरुले करे उ है बिजनेस वागस तो हुआ कब शादी करलग तो में अभी कुछ में देवा था मैं शादी के गाड़ी जे ई एगो बिजनेस कर ले हुई पतिया तो उ बिजनेस हुआ ओकरे रही वही रिस्पॉन्सिबल पैसो ने ला जो जो दे ले ले होई या कुछ कर ले होई बस ये ओकर नमूए में रही शादी करे के आगे एक नाम है बियां प्रोप ओकर जमीन ओकर है। मैं आवे ला एक बान आदमी एगो एंटरप्राइज खोले ला तब कुमा जे कब शादी कर ले लेबा कब शादी कर ले लेबा कुमा जे दोनों तो देखबा दोनों रिस्पॉन्सिबल बा ओकर चलाई के ओकर देत जी होई तो पेय करे के दोनों संगे। मैं एगो चीज है आज के जमाना में देखब माँ बाप का करेला कब काम करेला तो बोले अरे हमारे एगो लड़का बा जैसे ई एगो बिजनेस हुआ बोले बेटी शादी कर ले अभी तो नहीं कर ले हुए आओ हम हमारे एगो बिजनेस बा तो हमने के जोन बाई गो गुस्त हुआ चल हम तुके दे दे अब हम तोर नाम दे दे एक बान हुए ला माँ बाप देवे ला उकर लड़का के शादी करे के आगे तो वो बिजनेस हुआ के जोन बागिस्त हुआ ओके शादी करे के आगे ओकर बाप या माँ दे दे ले बा एगो डोनेशन के टाइम में तो देख बा वो बिजनेस हुआ ओकरे रहेला पस ओकर माँ के डोनेशन।
0: रघुनंदन जी हाई जा पर इशारा हुआ था एक श्रोता हवन सुनी ला जा उनका। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते। हाँ जी
2: हाँ भाई ओके नमस्ते
1: तन, नमस्ते हाँ, तन जोर से बोल के मजे
0: हाँ हाँ
2: हाँ हमार हमार बुरा देसी दे गोलवान तो ओ गोलो तो किन ले रहा लोटो हाँ तो लोटो किन ले रहा तो जिन दमिया से लोटवा बैठला तो ऑनरिस्ट्रे नहीं हो रहा एगो एन मुआ में बोला करी तो हमार बोलूँ एगो एन मुआ में देसी दे होगल एन मुआ देसी गल अब हाउ पोपिये तेवा जोन ले ले बा अब बोला तो अपन ना ओकर नाम में करे के तो हम और बेटा के दुगो हमारे बुढ़ा के दुगो बेटा बा तो वो लोग मोरिस ने हम सा दे ओ हम सा तो चाहे ला लोग के सिनाचे जरिचे।
0: हाँ रघुनंदन जी
1: रत्ना जी हम कुमाजे नहीं कुमाजे प्रेस के नहीं सुन ली जो एगो हम के एगो रिकाप बोला था का है माता जी बोला
0: बोलन कि उनका जन पति हवन गुजर गल हवन और गाड़ी रहल त उ खोजे खोजता कुमाजे बेचे त दुगो बेटा

0: बात जैसे कुछ भी बेचे के जब एगो एगो वॉक करा था वन सा
1: तब समझ गए लिया
0: हाँ तब बेटा बाहर बा तब पूछा था वन कि उनकरा सिनाचा चाहिला है सब में
1: हाँ पहला चीज देखे कि ना वो जमीनों है ये लुटुआ जो रहल तब पति के रहल जब पति गुजर जला इसने जमीन हो या कुछ भी हो तब पोताज में आवेला तब देख बा ही यहाँ ओके मिली ओके ओकर पत्नी के ओकर हक बा वो है लुटुआ में ओकर जेगिचे के भी ओकर जेगिचे ही ओकर लड़का है तो सैप दोनों लड़का जो हो आर ओकर पत्नी चाहेला सीए करे के कि कोम को हुआ एंतिया के ओकर सब फॉर्मालिटी करे के ता कि वो आदमिया के जोन प्रोपिएटर बनी अब एगो बोली के बोलत हुआ कि कुमा जे एगो दूसर देश में बा हाँ सैप है वो कि नहीं चाहेला हुआ से दिगंजे करे के आई के हिया एगो आदमी के एगो भाई के या एगो बहन हो या कोई के ओके स्वाजगे करे एगो प्रोक्सी ओकर के कुमा जो के दे उदवा हुआ कि जाने ले बहन या के हो या एते हम के कुम तो के देवा ते परमिशन हौ लुटवा बेचे के करे के
0: जमीन
1: के बात नहीं बोलते नियर लेके अपन नाम डाल दे सब चीते कौन कौन चीज है सब देताई दे कि वो देवता वो आदमिया जो नमुआ भी जाने के चाहे कि देख हम देवत नहीं तो कि ई परमिशन है एगो खड़ा रही एगो पुक्सी कि हम पास की हम हमर बगल से हम नहीं सक बाई से
0: कोनो प्रोसीजर करे के है जैसे अगर एगो पुक्सी के
1: नहीं नहीं ई में ही नहीं पुक्सी कब होवेला को मतलब जमीन उनके विषय में तब नोटेर मांगेला हुआ के चाहेला और रिश्ते सब करे के वो नहीं देख या चाके जा हुआ एगो आबो के देखे के हिया तक खाली बेचे के वो सिर्फ जफे लोय में तो ये वो अकात में लिख दे सब परमिशन डाल दे ओकर नाम दे दे लुटवा के सब ओकर कंडीशन करने में हाँ, बोली तू खड़ा रहिए हमर बगल से तो ये कर पोक्सी आ रही तो हुआ जाए तो करे बा
0: अच्छा
1: एगो सैंप होके बोले चाहे एगो अकात में लिख के एगो खाली एगो चिट्ठी नियर लिख के दे के ओके बोले के कि बेचे के कुमा जाए घर हुआ
0: तो चला है जा पर एगो और श्रोता हवन सुनी ला जा उनकरा
1: एक मिनट
2: हेलो
0: हाँ
2: हेलो
0: हेलो
2: हाँ नमस्ते
1: नमस्ते जी
2: वी हेलो हेलो
1: हाँ बोला
2: Oui, ma kanko se.
1: Huh?
2: Oui, ma pejou, ma chifi kotin maoye la.
1: Oui.
2: Se bebe nan un dessert, avec l'hiver 3, mais bizarre portant sa terrain la, mais pan recifer.
0: Mm-hmm.
2: Puis, belé la, bizarre d'un banal argent, pour se gagner sa terrain la. Bizarre portant sa. 5 ans, je pan fè, sa combien banane? Là, je suis marié, je suis en train de faire un peu de prendre l'eau pour portage. Ça veut dire pour payer ce banser. Mais est-ce que je suis capable de faire ça? Oui, pour le faire, il est capable de faire prendre l'eau. Qui garantit que dans la terre, il y a une poule?
1: नहीं पहला चीज है हमने के जो हम समझ ली है तीन गो आदमी बा अब तीन गो आदमी बे वो बस का करते उस जमीन हुआ उ लोग के तीनों के नमुआ में बा तो तीनों के आदमिया के नमुआ में रही तो को मजे मुश्किल होई बे ई पताजे करे के बस कि एगो जमीन कब से बुझो तीन है तीन अपन बा एक एक अपन बा के सकल लाई पताजे करे के मैं उ जमीन में छोटा रही मजे कम रही तीन आदमी से नहीं सकल लाई पताजे करे तो हिया चाहे ना लिसिटेशन करे के बेचे के मैं हिया ए गोवा के मन बा कीने के जैसे माता जी बोलक उकर बिटिया के वो बिटिया के एतिगे से बा लेके हां मैं करते हिया भी प्रोसीजर नहीं होल बा कि कीने के कैसे करी सके वो एगो बोली के ओकर यहां पैसा न हुई त लाबंक से लेके एगो दे लाबंक से मैं नई सिर है दे उ बस कि काहे ला बैंक के चाहे ला जमीनवा जो ओकर नाम में रहत ओगे वो लोन देत ना हिया काले को बोली के गोली पुते के लेवता एगो जमीन में जो नमी जमीन हुए नहीं बा ओकर नाम में तो देवे कोनो ला बैंक दे कोनो नहीं दे मैं तीन कार नहीं दे मैं हिया के मुश्किल होई मैं ओके मन होई जे उकमा जे कंडीशन करे सके जा के गोनो तीर यहां को पापिए करे के उ जे भरी देतवा तो ओकर बेटिया के और दुगो जोन बा जेगी चेवा ओकर कुमा जे बेचियो कर से दे सके
0: तो जरूर जे कोनो और श्रोता हवन भाग लेवे खोजत हवन तो 4028085 पर तू हमने के टेलीफोने करे सकबा। कार्यक्रम जारी बाते और जैसे लौं थे फ्रीज के बात करत रही और आज कार्यक्रम में पोताज के विषय पर बात करत हैं तो आगे बढ़ब स। हाँ रघुनंदन जी,
1: हाँ तो जैसे बोली सने

एंटरप्राइज हुई तब अब के मन हुई कुमार जे जे ओकर माँ बाप दिले हुई ओके कैसे कुछ तो वहाँ देखते हैं सर गाड़ी तो वो ओकरे रही भाई के ओकर पति के से बोझो हुई कुछ नहीं मिली एक मिसलमा आ दुनाशों के बोले लिसा एगो इरिताज के हुई और माँ बाप कभी तो मर जाला तो ऑटोमेटिक एगो सक्सेशन वो खुल जाला तो सक्सेशन हमें ओके मिली तो वो ओकरे रही पति नहीं सकी कुछ करी हाँ मैं यहाँ देख ला

0: से ही अपने किन ले कोई तो वो कर रही नहीं सकबा कुछ कर
1: चलाएगो। और श्रोता हवन सुनी ला जाओ उनका। हेलो
2: हेलो रत्ना जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी स्वागत बा
2: कपिल भाई के बोले। नमस्ते
0: नमस्ते
2: बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में देवी लाने के लिए।
0: नमस्ते भैया।
2: हाँ अभी हम काम में है सब समाचार हमने थोड़ा सुना था।
0: हाँ
2: मैं एगो समाचार बगर बड़ा प्रॉब्लम बगर बेटा संगे
0: बोले
2: ओकर शादी हो दू बरी शादी हो गल तब दू बरी शादी हो तब जो किनलन से अपन घर किनलन से लोन लेके।
0: हाँ सदिया में है सदिया में।
2: हाँ दू बरी शादी में जब लोन लेके घर किनलन से तब जीवोस प्रॉब्लम हो जीवोस हो गल। अब जीवोस हो गल था अब पचा लोनवा भरे के अब अकेले ओकर बेटा अकेले नोनवा भरा था थी तीन बरिस हो गल। अब जीवोस खोता तब अब मदमा को सोम दिखलाया गया था पैसा दी तब सिंह करी कुछ बोले
0: हाँ कैसे नहीं है मेरसी बहुत। एगो चीज है रत्ना जी से भैया बोलन इस सच जाने ला एगो जमीन खिलने रलन सन सुपोजो दोनों में दोनों के नाम में हुई जब कुमार जय एगो जीवोस हो चाहे ला दोनों के भरे के कब जीवोस के बाद अब एगो बोली के वो बोला था वो जमीनवा में ओके हई मांग करता नहीं कैसे ओके मदमुआ के मिली कुछ यहाँ शादी में तो किन ले दोनों तो रिस्पॉन्सिब है वो लोनवा भरे के तो नहीं कि कुमार जो अब मिशे हुए भर ले जाए और यहाँ कुमार जो
1: मदमुआ
0: नहीं मैं एगो चीज सकी करे एगो चीज से करी मिशुआ के बोलती से हम सब ओके मन हुई भरे के तो सब पापिए जुन बा ओके चाहेला करे मजे रमासे के देंगे से बुझू 10,000 धारेला ऊ है मैं घरवा में या बनाई के है तो ओकर 10,000 की जे घर पापिए रही काल मदमो के कुछ नहीं मिली मैम की को के ओकर दुआ बा बस बोली हाँ है का जमीन डूबत रहल हम निकल ले हई है का हम न पैसवा पे ये कर ली ला बंकवा से लेके पपीवा से बताए तो मदमुआ सोचले रह लरी नहीं उभरी हम केक मजे मिली नहीं कुछ नहीं मिली ओके।
1: ये आज के कार्यक्रम बिल्कुल लगभग लगभग समाप्ति तक चल हाल हई है। अंतिम एगो सवाल पूछब रघुनंदन जी से। मान ला रघुनंदन जी जीवोस जीवोसवा हुआ था और पति पत्नी अपन को सौतमो से मान ला लाकूर में जाके नहीं पर अपन को सौतमो से अपन आप में म्यूचुअल करके एगो पोताज करे खोजियन सा तक खोजे वो करे सकी सब, मतलब जी, है जितना जी भी बा अपन अपन म्यूचुअल कंसेंट से
0: सबसे जोली चीज बोल रहा है। हाँ। ही हम बोली ला
1: हाँ।
0: पति पत्नी शादी कर ले बा पति पत्नी इतना बरिसन से रहल बा वो जोन प्यार रहला वो पति पत्निया में दुनिया में कोई ही से नहीं है। मैं अब एगो बोली के ओके मन बाकुमा जे अगर ये जाए के लाकूर में लड़ाई करे के हे ने वकील के लेके हो लेके अरे जा कुमा जे नोतेर में बोले रही तेलो न सब एगो कुमा जब एगो शादी करब बस वहाँ जाके नोतेर के आगा कुमार सब एगो पापिए बोले बो एक नाम एगो आवाज में अमिकाल दोनों डाको हो सन हाँ यहाँ डाल दे बोले तू हम ले घरवा हो घरवा जैसे बोले ले सब चीज डाको में कितना जुली है सब अपन अपन चीज हुआ। अब हुआ जाए जीवोसवा के कुमा हो तो फाइले करी कि तेल तो ओके उमलोक करी जीजुआ कि देखा जोन जोन देसी दे कर ले सन ये बोलता ऊ घरवा रही होकर ई घरवा ओकर हो तो कोरे ऐसने करके पोताज हुई एगो पोताज आमियाब है सबसे जुली चीज है बस पोताज में तो हमेशा प्रॉब्लम होते रहे।
1: हाँ तो चला आज की चर्चा कार्यक्रम के समाप्त करे के समय हो गल बा। हाइजा पर हमनी के साथ दिलन दीपशिका हमर प्रोडक्शन असिस्टेंट तकनीक पर हमनी के साथ दिलन कादे भाई और साथ रहल रितेश मोहाबिया हमनी के प्रोड्यूसर। और बिल्कुल एक बार फिर चलते चलते आपको याद दिला देते हैं कि यही कार्यक्रम दोबारा से आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। और हमारे साथ जुड़े बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद बुलब जा। जितना कोई श्रोतालोगन है कार्यक्रम में भाग लेलन उनका धन्यवाद बुलब जा। जितना कोई हमने के ऐसे रेडियो पर हमने के सुनलन और तोहरा मन बा कपिल देव जी से संपर्क करे के त जरूर तू संपर्क करे सकब और कोनो समस्या रही त जरूर कानून के विषय में तू उनका भेंट करे सकब। और चला इसी के साथ फिरो से एगो और कार्यक्रम के संगे भेंट आपसा। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार शुभ दिन आप सभी को।

0: भेजते हैं गीता जी से जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को हमारा नमस्कार। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर आई नई अमेरिकी रिपोर्ट जेको गौशा की अमेरिकी सैन्य अभियानों में बढ़ती रणनीतिक भूमिका की पुष्टि करती हैं। मध्य पूर्व में कई सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सैन्य सामान और लॉजिस्टिक्स का एक हिस्सा जेगो गौशा की ओर भेजा गया। भारतीय हिंदुजा ग्रुप ने मॉरिशस में रिन्यूएबल इनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में मॉरिशस के साथ अपना सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने कल दोपहर बाद प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। राष्ट्रपिता सचिव सागर रामगुलाम की आज 126वीं जयंती है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कई समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। एसएसओ बोटानिकल बाग में उनकी समाधि पर और पोर्टलिस वाटर फ्रंट में उनकी प्रतिमा और उनके जन्मस्थल केवल नगर बेलगेव में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। और विदेशी खबरों में अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना है कि उसने अंतरिक्ष में ऐसे ऑन ऑर्बिट स्पेस कंट्रोल हथियार तैनात किए हैं जो ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की अंतरिक्ष क्षमताओं को बाधित, कमज़ोर या नष्ट करने में सक्षम हैं। अमेरिकी वायुसेना के सचिव ने पिछले दिनों ये जानकारी साझा करके अंतरिक्ष में हथियारों की होर की आशंकाओं को बढ़ावा दिया है। साथ ही करीब 60 साल पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संधि की सीमाओं को लेकर भी बहस तेज हो गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

चलिए श्रोताओं, आप सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भक्ति धारा। 10:03 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, तो चलिए समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम के अंतर्गत आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन सकेंगे शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम और चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में दिन के 11 बजे आपके लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

0: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।
1: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है संध्योपासना, एक वैदिक चिंतन। मनु महाराज ने दो संध्याओं का विधान किया है। पूर्वा संध्या जपस्तिष्ठेत सावित्रीम अर्क दर्शनात् पश्चिमां तु समासीन सम्यक ऋक्ष्वभि भावनात्। प्रातः काल की संध्या में गायत्री को जपता हुआ सूर्य दर्शन होने तक स्थित रहें और सायंकाल की संध्या में तारों के चमकने तक बैठा हुआ ठीक ठीक जप करें। सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या और स्वाध्याय करने का विधान प्राचीन काल से लेकर अब तक विद्यमान है। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ का पहला स्थान है। ब्रह्म यज्ञ में परमात्मा की स्तुति और उपासना करने का विधान है। इसी को संध्योपासना कहते हैं। संध्यायति इति संध्या। संध्यायति इति संध्या, परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना संध्या कहलाती है। संध्या संधि वेला में करना चाहिए, रात और दिन अथवा दिन और रात के मिलने का नाम संधि है। यह प्रकाश और अंधकार का संयोग है। न दिन हो न रात का जो समय हो, इसी समय को सुबह और शाम कहते हैं। उसी समय जो ईश्वर की उपासना की जाए वही संध्या उपासना कहलाती है। पंच महायज्ञ विधि के प्रकरण में महर्षि दयानंद का कथन है, रात और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। संध्या वंदना करने से पहले महर्षि दयानंद ने शुद्धि की ओर ध्यान दिलाया है। शुद्धि का अर्थ है पवित्र होना। उन्होंने दो प्रकार की शुद्धि का उल्लेख किया है, पहले बाह्य शुद्धि और दूसरा अंतः शुद्धि अर्थात अंदर की शुद्धि। जलादि से शरीर की शुद्धि और राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुणों के त्याग से भीतर की शुद्धि करनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही सर्वोत्तम और परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन है। संध्या मन को ईश्वर की ओर प्रेरित करने का समय है। दिन शुरू होने से पहले तथा दिन समाप्त होने से पहले परमात्मा का ध्यान करना हर मनुष्य का धर्म है। मनु महाराज ने लिखा है, ऋषयो दीर्घ संध्यात्वाद दीर्घम आयुर आपनुयुः प्रजाम यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसम एव च। अर्थात सब स्त्री पुरुष को शांत भाव से एकाग्रचित हो प्रातः

और सायं की संध्या को करते रहें, क्योंकि प्राचीन वैदिक ऋषियों ने निरंतर लंबे समय तक संध्योपासना के द्वारा ही दीर्घायु, यश, कीर्ति और ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। भक्ति में लीन होने के लिए संध्योपासना करना आवश्यक है। नित्य स्वाध्याय तथा संध्योपासना द्वारा ज्ञान प्राप्ति से आत्मा की उन्नति होती है। ब्रह्मोपासक मनुष्य ही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। संध्योपासना भक्ति रूपी बीज है। इस भक्ति रूपी बीज को बोने से अध्यात्म रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। अध्यात्म रूपी वृक्ष का अमृत फल मोक्ष है। संध्योपासना करने से पहले शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। अद्भिर गात्रानि शुद्ध्यन्ति, शरीर की शुद्धि जल से होती है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धि सत्य के पालन करने से होती है। महर्षि मनु ने पवित्रता को सर्वोपरि स्थान दिया है। सर्वेषाम् एव शौचानाम् अर्थशौचम् परम स्मृतम्। पवित्रता के अभाव में हमारी संध्या वंदना, धारणा, ध्यान ठीक से नहीं हो पाते। मन चंचल हो जाता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान एक नित्य कर्म है। जब शरीर स्वच्छ हो जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है और मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। संध्योपासना करते रहने से मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है। ध्यान और मंत्रोच्चारण से मन शांत हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हम अधिक से अधिक कार्य पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है, अर्थात संध्योपासना से आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। इससे ओज, बल और तेजस्विता बढ़ती है। और वह मुनि राजा सगर से कहते हैं कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सायंकाल के रहते हुए और प्रातः काल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि क्रिया करके विधिपूर्वक संध्योपासना करें। कोई भी बाधा हो तो भी प्रतिदिन ही संध्योपासना करनी चाहिए। रोग व बीमारी की अवस्था को छोड़कर जो कोई भी व्यक्ति सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोता है, वह दोष और प्रायश्चित का भागी होता है। अतः संध्या के समय निद्रा नहीं लेना चाहिए। अतः और वह मुनि ने कहा कि हे राजन, गृहस्थ स्त्री पुरुष सूर्योदय से पहले उठकर प्रातःकालीन संध्या करें और सायंकाल में भी संध्योपासना करें। उस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं आलस्य प्रमाद करना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ता है, मन तमोगुण से युक्त हो जाता है। संध्योपासना करने से मन और आत्मा में दिव्य गुण और दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। पूर्व की ओर मुख करके संध्या व ध्यान करना चाहिए। विष्णु पुराण के तृतीय अंश में यह उल्लेख है कि संध्योपासना से ओज, बल, आयु, आरोग्य, धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। सत्य सनातन वैदिक धर्म कर्मकांड और नित्य कर्म में संध्योपासना को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि संध्योपासना संधि बेला में अवश्य करते थे और अन्यों को भी करने के लिए प्रेरणा देते थे। प्रभु राम, योगेश्वर, श्री कृष्ण, गुरु विरजानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि सभी महापुरुषों ने संध्योपासना को अपने जीवन के साथ जोड़ा, क्योंकि संध्योपासना मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रथम सोपान है। संध्या कब करना चाहिए, क्यों आवश्यक है संध्या उपासना, क्या मिलता है संध्या करने से? संध्या नित्य प्रति करनी चाहिए, यह शास्त्र सम्मत

0: विधान है। नित्य नियम पूर्वक संध्या करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धीरे धीरे एकाग्रता में वृद्धि होती है। संध्या करते समय मन की एकाग्रता आवश्यक है। संध्या करने से प्रकाश स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति आस्था, श्रद्धा, भक्ति और अपनापन उत्पन्न होता है। संध्या करने से अंतः प्रेरणा जागृत होती है, जो जीव को प्रतिपल सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। संध्या करने से अंतःकरण के जन्म जन्मों के कुसंस्कार जलने लगते हैं और समस्त विकार समाप्त होने लगते हैं। नित्य प्रति संध्या करने से मुख पर अनुपम तेज, आभा और गंभीरता आ जाती है। नित्य प्रति संध्या करने से वाणी में मधुरता, कोमलता और सत्यता का वास हो जाता है। नित्य प्रति संध्या करने से मन में पवित्र भावनाएं, उच्च विचार एवं सबके प्रति सद्भाव, प्रेम आदि सात्विक गुणों की वृद्धि होती है। नित्य प्रति संध्योपासना करने से संकल्प शक्ति सुदृढ़ होकर मन की आंतरिक शक्ति को ईश्वर की ओर केंद्रित कर देती है। संध्योपासना करने से हृदय में अहिंसा, शांति, संतोष, क्षमा, दया, प्रेम आदि सद्गुणों का उदय होता है और हिंसा, लोभ, क्रूरता, अभिमान आदि दुर्गुणों का नाश होता है। संध्योपासना करने से प्राप्त आध्यात्मिक बल के कारण संसार के प्रति दीनता नहीं रहती और परमात्मा की कृपा से बल प्राप्त होने से व्यक्ति का अहंकार भी नष्ट हो जाता है। संध्या करते समय जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हृदय में जो रस की धारा प्रवाहित होती है उसे हृदय तो पान करती ही है, प्रायः सभी इंद्रियां तन्मय होकर शांति लाभ भी प्राप्त करती हैं। संध्या करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संध्या के समय किए गए आचमन, अंग स्पर्श, प्राणायाम, अघमर्षण, मनसा परिक्रमा, गायत्री पाठ, समर्पण और नमस्कार मंत्र महाऔषधि के समान शरीर और मन को स्वस्थ बनाते हैं। संध्योपासना से आत्मा की उन्नति होती है, क्योंकि यह आत्मा का भोजन है। संध्योपासना के पश्चात स्वाध्याय करने का विधान है। स्वाध्याय का अर्थ है पढ़ना, पढ़कर विचार करना, पढ़कर जानना। स्वाध्याय के दो अंग हैं। प्रथम अंग है अध्ययन, अर्थात आत्मनिर्माण की रुचि जगाने वाली उत्तम पुस्तकों का नियमित अध्ययन करना, नियमित रूप से पढ़ना। दूसरा अंग है स्व अध्ययन, अर्थात अपना निरीक्षण करना, अपनी कमियों दोषों को देखना और कमियों व दोषों को दूर करने का संकल्प लेना। तैतीय आरण्यक में उल्लेख है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात हे मनुष्य पढ़ने में प्रमाद न करें, आलस्य से रहित होकर अध्ययन करते रहें। इसलिए अपने अध्ययन, आत्मचिंतन और कर्तव्यों के पालन में कभी लापरवाही या आलस्य न करें। स्वयं पढ़ने और दूसरों को सिखाने या विद्या का प्रसार, प्रचार करने व प्रवचन करने में कभी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। अच्छी पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन करते रहने से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। अतः संध्योपासना और स्वाध्याय से आत्मा का कल्याण और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

पे चलिए, श्रोताओ 10:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रवार का दिन समर्पित है माँ दुर्गा को और आपको पता है कि माँ दुर्गा जो है हमें शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। जब जीवन में अंधेरा महसूस हो तो माँ को हमें याद करना है क्योंकि शक्ति बाहर से पहले हमारे भीतर जागती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और जब मन निराश हो तो आशा जो है माँ ही जगाती है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम कार्यक्रम की अगली भेंट की ओर बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम आपके नाम इस समय हम कर रहे हैं। वैसे जब हम भक्ति की बात करते हैं तो शक्ति भी हमें चाहिए, और शक्ति हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने भीतर हमें हमेशा हमें विश्वास जो है बनाए रखना है। हमें किसी भी स्थिति पर कमज़ोरी जो है महसूस नहीं करना है। जब मन में विश्वास की ज्योति जलती है तो रास्ते अपने

आप दिखाई देने लगती है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं। आज का दिन जो है हम माँ दुर्गा का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र चंचल के स्वर में ये अगला भक्ति गान हम सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, जिस मन में श्रद्धा हो, धैर्य हो और आत्मविश्वास हो, वही सच्ची शक्ति का अनुभव करता है। माँ दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। उनका संदेश है कि अच्छाई, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम को जारी रख रही है।

चलिए श्रोताओं, 10:50 हुए हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। मेबर के रहने वाले निवासों को, जिनमें है रुई टेलिस, रुई नियों, रुई फ्लामा, रुई कंपाइन, रुई शंपाइन, रुई सेंगोलेट, रुई सेंट मार्टिन, रुई बांबू, रुई सुफ्रान, रुई लापास, गणपत लेन और गोपाला लेन के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 से लेकर शाम के 4:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है मेनिला के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है टागो लेन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 18 सितंबर 2026 को दोपहर के 2:00 से लेकर शाम के 5:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो आइए भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं कार्तिक के साथ साथ निभाने के लिए धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप जो है उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ सुन पाएंगे। हमारी ओर से आप सभी को शुभ दिन, मिलेंगे 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर।

0: वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का। स्टूडियो में आगे गीता जी, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को हमारा नमस्कार। राष्ट्रपिता सर शिवसागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। मॉरिशस को आज़ादी दिलाने के साथ साथ उन्होंने नए राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज से गोविंदन पूजा के लिए तमिल समुदाय के लोग 40 दिनों का व्रत शुरू कर रहे हैं। गोविंदन पूजा के दौरान भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर कोविलों में हर शनिवार को विशेष पूजा प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में पानी की निगरानी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया के जल संसाधनों की सुरक्षा के महत्व को समझाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 3 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ये संख्या करीब 2 बिलियन लोगों के बराबर है। असुरक्षित पानी पीने से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। और अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए एक ईरानी प्रतिनिधि मंडल को अनुमति दे दी गई है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद इस प्रतिनिधि मंडल को वीजा जारी कर दिए गए हैं। प्रतिनिधि मंडल यात्रा प्रतिबंधों के अधीन होगा। उसे लग्जरी और अन्य वस्तुओं की खरीद पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ये प्रतिनिधिमंडल पिछले साल की तुलना में छोटा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। लापेरूस ओकुले में 73 साल के 73-year-old के श्री कृष्णदत्त हनुमान जो राज से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर बाद के 3 बजे उनके घर लापेरूस ओकुले से उठाकर बिकाका किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: शम्मे फरोजा

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कुन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की रसाई दे,

मुझे इस जहां से गरज नहीं, मुझे उस जहां की रसाई दे। इसी नेक तमन्ना के साथ शुरुआत करते हैं मौज़े सामीन। उम्मीद है आप फजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ।

0: जी हाँ, जुम्मे का मुबारक दिन है, माहे रबीउस्सानी का पहला जुम्मा। आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए, आमीन। मौज़ सामीन, जैसा कि कई दिनों से हम आपको बताते आ रहे हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर व मारूफ नात ख्वान, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान कराची से तशरीफ लाई हैं। और ये इनका पहला दौरा नहीं है, बल्कि वो कई मरतबा मॉरिशस आ चुकी हैं। और आज हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है कि वो हमारे साथ इस वक्त लाइव बराह रास्त मौजूद हैं। जी हाँ, मोहतरमा इशरत तस्नीम साहिबा, इसके अलावा उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा ज़ायदा पीर महमूद। हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सब की दुआएं हैं।
0: कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ एक बार फिर आकर?
1: आज और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे पहले जो मुलाकातें हुई, लास्ट टाइम हम पहली ही दफ़ा मिले थे, तो उसके बाद हमारी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, तो वो दिल और भी करीब हो गए।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह हमारी ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आइए हस्ब मामूल आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समात फरमाएंगे सूरह अल मुल्क की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: ए रब कायनात तेरी शान क्या कहूँ, हर सिमत है तू जलवा फिकन क्या क्या कहूँ। तूने ही सुबह बख्शी तूने ही शाम दी, हर सांस को अता तेरी रहमत ने जान दी। ये आसमां ये चाँद ये सूरज ये कहकशां, सब तेरी कुदरतों के हैं रोशन से कुछ निशान। फूलों में तेरी हमद है खुशबू में तेरा जिक्र, कदरों में तेरी रहमत हवाओं में तेरा जिक्र। या रब ये जुम्मा फिर तेरी रहमत का दिन बना, बंदों के वास्ते इसे बरकत का दिन बना। दिल से गुबार गम को मिटा दे करीम तू, सोई हुई उम्मीद जगा दे रहीम तू। जो हाथ आज तेरे हुजूरे दुआ उठें, रहमत से तेरी भर के वो दामन लिए उठें। जो आँख अश्कबार हो तेरे ही खौफ से, उसी आँख को मुनव्वर कर अपने ही नूर से। मौज़ सामीन, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आज हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा इशरत तस्नीम साहिबा, जो कि तशरीफ़ लाई हैं पाकिस्तान से। अब हम उनसे गुजारिश करेंगे एक के बारगाह इलाही में हम्द का नजराना पेश करें।
1: जी ज़रूर। तेरे सदके

तुझसे है बस एक दुआ, वक्त नज़ा जब आए मेरा लब पर जारी हो ये दुआ, हक ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी।

सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी खुशगुन आवाज़ दिल चाहता है आपको सुनते रहें और वक्त यहीं थम जाए। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलाम आपने हमारे सामने पेश किया। बेशक हमारा रब ही हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारा खालिक, मालिक, राज़िक और मददगार है।

0: दिल का सुकून भी उसी के ज़िक्र में है और ज़िंदगी की असल रोशनी भी उसी की मोहब्बत में है। अल्लाह ताला हमें अपने ज़िक्र से ज़बान को तर, अपनी मोहब्बत से दिल को रोशन और अपने शुक्र से ज़िंदगी को खूबसूरत रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलें शरत मोहतरमा शरत साहिबा, आपसे कुछ चंद बातें करते हैं। इस दफ़ा आपका मॉरिशस का दौरा कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगी?
1: अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा की तरह दौरा इस दफ़ा भी बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, हमारे जो ऑर्गेनाइज़र थे, वरना यूएसओ के प्लेटफॉर्म से हम करते थे और शहज़ाद अहमद अब्दुल्ला साहब हमें इनवाइट किया करते थे, अब भी वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यूएसओ के प्लेटफॉर्म से दोबारा भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस दफ़ा हमारे ऑर्गेनाइज़र और जो जिन्होंने हमें बुलाया, कुछ थोड़े से मामलात बदले, लेकिन लोग वही हैं और मोहब्बतें भी वही हैं, और इस दफ़ा हमें आप भी मिल गईं तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छी दोस्त का इजाफा हो गया, माशाल्लाह।
0: अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप मॉरिशस आती हैं तो आपको पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ याद आती है?
1: अम्मी और कौन
0: और जब आप वहाँ जाती हैं तो मॉरिशस की आपको क्या चीज़ याद आती है?
1: महफिलें,
0: महफिल।
1: यहाँ जो लोग साथ देते हैं ना हमारा, जैसे कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पाकिस्तान में भी होती हैं ऐसी महफ़िलें, लेकिन थोड़ी कम। आप ख़ुद भी पाकिस्तान से हैं तो आपको अंदाज़ा है कि कई मर्तबा हमें कहना पड़ता है कि जी दुरूद व सलाम के नजरानों में शामिल हों। इसकी वजह यही है, शायद लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, कि वहाँ बिन मांगे सब कुछ मिला हुआ है ना, पांच वक्त की अजानें कानों में सुनाई देती हैं और महफ़िलें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो शायद हम उस तरह कदर नहीं कर पाते। यहाँ लोगों को कदर बहुत है इस चीज़ की,
0: बेशक,
1: तो वो महफिलें याद आती हैं, लोगों की मोहब्बत याद आती है, एक तड़प याद आती है।
0: और आप आई भी माह रबीउल अव्वल में और आप वापस जा रही हैं माह रबीउस सानी में, यानी
1: जी
0: ये जो माह हैं, ये जो माह मुबारक हैं दोनों, तो मतलब इनमें कुछ ज़्यादा ही महफिलें होती हैं और आपको इसका मौका मिला।
1: अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे दोनों ही महीने मिल गए, कुछ इस तरह से इन लोगों ने डेट्स ऑर्गेनाइज़ की कि मुझे दोनों ही महीने मिल गए, और इन दोनों की बरकतें आप सबको भी मिलें, मुझे भी मिलें इंशाल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब फैज़याब हुए,
1: आमीन,
0: अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप एक और कलाम पेश करें।
1: जी, आप सबके का पसंदीदा कलाम, कि जैसे कि आपने कहा मुझसे, फरमाया कि इसकी फरमाइश भी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अल्लाह हम सब की दुआएँ कबूल मंजूर फरमाएँ। आप सबकी ही फरमाइश पर पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाइए।

0: आमीन। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत इल्तिजा और क्या प्यारा कलाम। सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर आते ही दिल मदीनाए मुनव्वरा की तरफ खींचा चला जाता है, वो मदीना जहां हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ज़िंदा रखे, हमें कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक दे और अपने फजल व करम से बार बार मदीना पाक की बादब हाजरी नसीब फरमाए। आमीन। दिल में हो याद मुस्तफ़ा, लब पर दुरूद हो। दिल में हो याद मुस्तफ़ा, लब पर दुरूद हो। या रब हमारी ज़िंदगी ऐसी ज़रूर हो।
1: आमीन।
0: इशा साहिबा, चंद आपसे चंद और बातें करते हैं। आप हमें ये बताइए कि स्टेज से हटकर और इन महफिलों से हटकर आपकी शख्सियत कैसी है? आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं।
1: मेरी शख्सियत ऐसी ही है जैसी मैं नज़र आ रही हूँ, और मुझे शौक़ है बस ये शौक़ से जो महफ़िलें हैं। इससे अगर हट के बात करूँ तो मैं एक माँ भी हूँ, और मेरी एक बेटी स्पेशल है, स्पेशल मल्टीपल हैंडीकैप कह लीजिए, तो उनके साथ ही ज़्यादा टाइम मेरा गुजरता है। अल्लाह का शुक्र है अटेंडेंट हैं तो एक हेल्प मिली हुई है मुझे, लेकिन एक्चुअली काम करना आसान है, काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हर चीज़ पर उनको गाइड भी करना पड़ता है। बहरहाल बहुत ही क्यूट हैं वो, और उनके साथ जब मैं बैठती हूँ आप यकीन कीजिए मुझे लगता है दुनिया में कोई गम ही नहीं, और अल्लाह इतना करीब महसूस होता है ना। और मज़े की एक बात बताऊँ कि मैं उन्हीं के कमरे में नमाज अदा करती हूँ ना, तो वैसे वो शोर करती रहती हैं, मतलब स्पीच एरिया उनका इन्वॉल्व हो गया था, 5 साल की उम्र में उनको काफ़ी सीवियर अटैक हुआ था, तो उसकी वजह से स्पीच उनकी ख़त्म ही हो गई तकरीबन ना, ज़ीरो पर आ गई थी वो, बिल्कुल ही ज़ीरो पर 5 साल की उम्र में। तो वो अब बस ही ऐसे ही आवाज़ें निकाल रही होती हैं, एक्सप्रेस कर रही होती हैं जैसे अपने आप को ना, हूँ हाँ ऐसे आवाज़ें। लेकिन जिस वक्त मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि खामोशी हो गई है ना बिल्कुल। अच्छा, मैं सलाम फेर कर जब उनकी तरफ़ देखूँ तो इतने प्यार से मुस्कुरा के देख रही होती हैं कि मैं कहती हूँ इनके क्या समझ में आ रहा है। तब मुझे ये बात समझ में आती है कि हम जो अक़ल रखते हैं, फ़हम रखते हैं, समझ बूझ सब कुछ, तो मुझे लगता है शायद हमें वो बातें समझ नहीं आती हैं जो इन स्पेशल पर्सन को समझ में आती हैं।
0: वो कुछ ज़्यादा ही हसास होते हैं,
1: हसास होते हैं, और पता नहीं क्या उनको नज़र आता है, क्या समझ आता है।
0: अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे
0: हम
1: ही है।
0: दुआ गो हैं उनके लिए, उनका नाम तो नहीं पता लेकिन हम दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको मुकम्मल सेहत सेहत कामल अता फरमाए।
1: आमीन। उनका नाम अनीका पटेल है,
0: अनीका पटेल को सेहत कामल अता फरमाए।
1: आमीन। बहुत शुक्रिया। जुमे का दिन वैसे ही कबूलियत का होता है, और जुमे की एक साथ है, कहते हैं कि इसमें ज़रूर दुआ कबूल होती है, तो उलमाए कराम का बहुत सों का कहना है कि असर से मगरिब का टाइम होता है वो, लेकिन पूरा ही दिन दुआ मांगते रहें तो क्या ही बात है। और अभी आप कह भी रही थी कि दुआओं का हिसार होता है हमारे इर्द गिर्द, तो ये हकीकत है कि जब हम दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह हमसे करीब होता है, और वो जो दुआएं हम चुपके चुपके मांगते रहते हैं ना खामोशी के साथ, वाकई वो हमारे साथ होती हैं, और किस तरह हमारे मामलात सुधरते चले जाते हैं, संवरते चले जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता ये मिरेकल हो कैसे गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मौज़ सामीन, हम आपको बताते चलें कि मोहतरमा इशरत तस्नीम के दौरे के दरमियान आपने बहुत सी महाफिल कीं, लेकिन चंद महाफिल जो अभी बाकी हैं, क्योंकि जल्द ही आपकी वापसी है, तो चंद महाफिल जो अभी बाकी हैं उनकी तफसीलात आपको बता दें कि सनीचर 19 सितंबर, जी हाँ सनीचर 19 सितंबर सुन्नी सेंटर हॉल कास्तेल में बाद नमाज ज़ोहर यानी दिन के 1:30 बजे एक महफिल का एहतमाम हो रहा है मोहतरमा इशरत तस्नीम साहिबा की सरपरस्ती में। इसके अलावा सबसे आखिरी महफिल, जी हाँ सबसे आखिरी महफिल इतवार 20 सितंबर मुस्लिम म्यूचुअल एड एसोसिएशन हॉल ग्लैन पार्क वाकवा में बाद नमाज ज़ोहर यानी दिन के 1:30 बजे इशरत

0: नीम साहिबा महफिल पेश करेंगी। इशरत, हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि आप कुछ पेश करें।
1: जी ज़रूर, जैसे कि हमने अभी बात की कि जुमे का दिन दुआओं का होता है,
0: बेशक,
1: तो दुआ ही पेश करना चाहूंगी। इसकी फरमाइश आपने फरमाया
0: जी बिल्कुल,
1: कि फरमाइश भी है, तो चलें फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और दुआ भी हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल, हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हम फरमाइशें भी लेते हैं, तो मुझसे सबसे ज़्यादा जिस कलाम की फरमाइश होती है उसी की फरमाइश मैंने आपसे की।
1: बहुत शुक्रिया। और दुआ से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आपका बहुत खूबसूरत अंदाज़ है, हमारे यहाँ भी FM है

0: जिस कलाम की फरमाइश होती है उसी की फरमाइश मैंने आपसे की।
1: बहुत शुक्रिया। और दुआ से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आपका बहुत खूबसूरत अंदाज़ है, हमारे यहाँ भी FM है।

0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा इरशाद साहिबा। ऐ मेरे मौला, हम तेरे दर के सवाली हैं, तेरे करम के मोहताज हैं, हमारे दामन खाली हैं, मगर तेरी रहमत के ख़जाने बेहिसाब हैं। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा और हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन फरमा। या रब करीम, हमारे दिलों में अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमें आपकी सुन्नत पर चलने वाला बना। हमारी ज़ुबानों को दुरूद सलाम से तरक। मौज़े सामीन, ये कलाम जो अभी आपने सुना, उसे महज हमारी ज़ुबानों और कानों तक महदूद ना रखिए, बल्कि अल्लाह इसकी मोहब्बत और तासीर हमारे दिलों में उतार दे। आमीन। इशरत साहिबा, आपसे चंद और बातें करते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वैसे तो आप बहुत ही मसरूफ़ रहती हैं, बहुत ही मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन फिर भी आपके मतलब क्या शौक़ हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे बहुत मसरूफियत के बावजूद भी हम करना चाहते हैं, जैसे कुछ कभी कुछ शायरी होती है, कभी कुछ भी, आपकी कोई भी एक्टिविटी जो आप मतलब जितनी भी मसरूफ़ हों लेकिन आपको पसंद हो।
1: मेरा शौक़ तो यही है जो मेरा काम है। मैं तफसीर कुरान का शौक़ रखती हूँ और मैं क्लासेस ले भी रही हूँ, और यकीन कीजिए कि जब क्लास से वापस आती हूँ ना, तो लगता है कि रूह और दिल बिल्कुल साफ हो चुका। जो देखें, हर एक के साथ ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी इससे खाली है नहीं, क्योंकि दुनिया एक टेस्ट ही तो है,
0: आजमाइश है।
1: तो इस वजह से तो खैर, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ, इतना दिल को सुकून मिल जाता है और अल्लाह से लगता है बातें कर आई हूँ, अल्लाह ने मुझसे बातें की हैं। तो तफसीर कुरान की क्लास, ये मेरा शौक़ है। मैं चाहूँ तो ना भी लूँ, भाई क्या है दुनिया में इतने

0: नहीं काम होते हैं, लेकिन ये मेरा शौक है. और दूसरे रियाज करना, रियाज करती हूँ मैं.
1: माशाल्लाह.
0: पहले तो ऐसे ही बस आए, पढ़ लिया, बैठ गए बस. तो कोई ना कोई कलाम होता है कि जिस पर मैं काम कर रही होती हूँ, वो नया कलाम हो, नया काम हो, कुछ इस तरह से.
1: बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, आपने यहाँ पे भी रुझान देखा होगा ख्वातीन का, बच्चों का महाफिल में, कि भले इनकी ज़बान उर्दू नहीं है लेकिन इनमें एक दिलचस्पी है, शौक़ है, और जो वाकई में मतलब एक जज्बा है जो कि देखकर बहुत ही खुशी होती है.
0: जी, इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, नातख़्वां यहाँ आते रहते हैं और चले
1: बेशक
0: भी जाते हैं.
1: बेशक.
0: मैं भी आई, मैंने महफ़िलें की हैं, मेरा जाने का टाइम है. अल्लाह चाहेगा तो जब अल्लाह चाहेगा तभी आएंगे. हमें नहीं पता कि हमारा दाना पानी कब है यहाँ. लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको सुना, आप इतनी अच्छी आपने नात पढ़ी. मैं तो ये मुझे नहीं पता कि क्या फॉर्मेट है प्रोग्राम का, लेकिन भाई कभी आप भी पेश किया करें. तो माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी नात पढ़ी, मैं तो हैरान हो गई कि बोलती भी इतना अच्छा है माशाल्लाह. एक्चुअली अल्लाह अपने बंदों को नवाजता है, तो
1: बेशक
0: खूबियों से नवाजता है, हुनर से
1: बेशक.
0: नवाजता है. तो आप भी माशाल्लाह इस हुनर से माला माल हैं. दूसरे जो अकीदत के पूल के हवाले से जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं,
1: जी
0: तो वो यहाँ का सरमाया है मॉरिशस का ना,
1: बेशक
0: मॉरिशस का टैलेंट है. तो उनको भी प्रमोट करना चाहिए.
1: बिल्कुल.
0: बहुत से बच्चे हैं, शहजाद अहमद अब्दुल्ला का इस हवाले से बहुत काम है उनका, कि वो अकीदत के फूल करवाते भी थे, फिर पाकिस्तान भेजते थे. तो मेरे जो उस्ताद हैं, फिर मैं उनके पास ले जाती थी और वो फिर उनको करवाते थे काम, जैसे कि टेक्निक्स बताते थे. फिर घर में मैं उनको प्रैक्टिस करवाया करती थी, डेली मेरा ये काम होता था.
1: माशाल्लाह.
0: तो जब बच्चे आते थे तो बड़ा मज़ा आता था बच्चों के साथ बैठना और ये सब करना ना. तो वो सब आपका टैलेंट है मॉरिशस का, तो
1: बिल्कुल
0: आप उनको भी बुलाया करें. मुझे नहीं पता, यकीनन होते होंगे यहाँ
1: जी
0: आपके
1: जी
0: गेस्ट,
1: बिल्कुल
0: होते
1: बिल्कुल
0: होंगे.
1: जी बिल्कुल. बहुत कम होता है लेकिन होता है कि बच्चे जब छुट्टियां होती हैं तो हम उन्हें स्टूडियो में बुलाएं और उनसे बाज दफा
0: हाँ, फ्राइडे ज़ाहिर उनके क्लासेस भी होती होंगी ना,
1: जी स्कूल
0: ये
1: का
0: भी एक
1: टाइम.
0: बात है.
1: जी बिल्कुल.
0: जी, तो वो भी मॉरिशस का टैलेंट है और आप भी मॉरिशस का टैलेंट है माशाल्लाह. आपने बहुत अच्छी नात पेश की थी, मैं तो हैरान
1: जज़ाकअल्लाह.
0: हो गई.
1: अच्छा, दूसरी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मॉरिशस तो माशाल्लाह शायद आपका 5वां दौरा है,
0: छठा,
1: छठा दौरा है माशाल्लाह, ये तो आप आती जाती रहेंगी अभी.
0: ये मेरा दूसरा घर है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो इसके अलावा हम आपसे पूछेंगे कि मॉरिशस के अलावा आप कहाँ कहाँ दुनिया में और भी कहीं गई हैं या सिर्फ मॉरिशस ही आने का आपको मौका मिला है?
0: नहीं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका,
1: माशाल्लाह.
0: उसके 5 सिटीज़ में हमने प्रोग्राम किए. और दुबई, दुबई भी आना जाना रहता है. दुबई में किए हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए दुबई के भी माशाल्लाह. और शहजाद भाई ने ही वहाँ पर किया था सारा
1: माशाल्लाह
0: अरेंजमेंट.
1: माशाल्लाह.
0: शहजाद भाई भी इस हवाले से मैं कहूँगी कि बहुत फ़ाल रहे हैं, एक्टिव रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और अल्लाह ने उनसे काम लिया है. और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनसे काम लेता रहे. इसके
1: इंशाल्लाह.
0: अलावा हमने इंडिया में किए हैं, इंडिया
1: इंडिया
0: के भी
1: में भी
0: काफ़ी
1: माशाल्लाह.
0: सिटीज़ में किए प्रोग्राम. जी
1: बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह
0: जी
1: माशाल्लाह. मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगी कि आप कोई नात पेश करें.
0: जी ज़रूर इंशाल्लाह. और ये कलाम भी उस दर की हाज़िरी के हवाले से है. तो जुमे का दिन है, हम दुआओं का दिन है, हम बार बार दुआ करते रहेंगे, सब कुछ मांगेंगे अल्लाह से. अल्लाह के पास तो बड़े ख़जाने हैं, और हम अल्लाह से मांगेंगे उसकी रहमत और उसकी शान के मुताबिक.
1: माशाल्लाह.

0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा इशरत साहिबा, काबे का तसव्वुर ही दिल को एक अजीब सी कैफियत से भर देता है। वो लम्हा कितना हसीन होता है जब बंदे की निगाह पहली मर्तबा खाने काबा पर पड़ती है। आंखें बेख्तियार नम हो जाती हैं, लब खामोश होते हैं, मगर दिल अपने रब से बहुत कुछ कह रहा होता है। ऐ अल्लाह, जो तेरे घर को देखने की हसरत दिल में लिए बैठे हैं उनकी हसरत पूरी फरमा, और
1: आमीन।
0: जिन्हें हाजिरी नसीब हो चुकी है उन्हें बार बार अपने घर बुला।
1: आमीन
0: चलें आपसे कुछ और बातें करते हैं
1: जी जी
0: इशरत। मैंने आपको एक महफिल में सुना था कि आप बच्चों से बात कर रही थी और बड़े प्यारे अंदाज में बात कर रही थी, नमाज की बात कर रही थी। तो आज मैं चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त घर पर हैं, और क्योंकि यहाँ पर इम्तिहानात होने वाले हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो रिविज़न कर रहे हैं घरों पर। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि नमाज के हवाले से आप बच्चों के, जैसे आप बच्चों से बात कर रही हैं, इस तरीके से आप कोई अगर उन्हें पैगाम देना चाहती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बातों में असर है और आपकी बातें जाकर डायरेक्ट दिल में उतरती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को नमाज के हवाले से कोई पैगाम दें।
1: इंशाल्लाह। और मैंने कहा ना कि हमारे और आपके दिल के तार मिल चुके हैं, तो आपको कैसे पता चला कि मैंने बच्चों के लिए काम किया है? और मैं बहुत काम करना चाहती हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि वो मौका नहीं मिलता हमारे यहाँ चैनल्स पर। और मेरे पास बहुत कुछ मवाद था, बहुत कुछ मैटर था। अरमिश तैयबा यहाँ माशाल्लाह शादी होकर आई है पाकिस्तान से मॉरिशस,
0: जी
1: तो वो भी 5 साल की उम्र में हम से ही हमारे साथ थी। और इस्लामिक मिशन यूनिवर्सिटी में हम लोग क्लासेस लेते थे। और फिर मैंने कहा कि मैं कैसेट बनाऊंगी बच्चों के लिए, तो शायरों से मैंने लिखवाना चाहा, तो किसी ने मतलब बच्चों के लिए कोई काम ही नहीं करना चाहता। मुश्किल है ना शायद थोड़ा सा।
0: हाँ बिल्कुल, लेकिन वही मतलब आगे जो नस्ल चलनी है वो उन्हीं से चलनी है, तो हमें उन्हें सिखाना है और कुछ
1: जी
0: ऐसे पैगाम देना है कि मतलब वो समझें, प्यार से पैगाम देना है।
1: बिल्कुल। मैंने चैनल्स पे पेश किया प्रोग्राम के, भाई ये फॉर्मेट है और इस तरह बच्चों के लिए काम करना है, तो वो कहने लगे बच्चों के लिए करेंगे। मतलब उन्होंने समझा मेरा लेवल बहुत लो है,
0: नहीं,
1: जबकि बच्चों के लिए काम करना नॉट ईजी,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना? उनके लेवल पे जाके फिर उनको समझाना और उनको बताना, तो ये आसान नहीं है। अच्छा, नमाज के हवाले से जो हमारी मेंटोर हैं डॉक्टर फरीदा अहमद साहिबा,
0: जी
1: जो कि मुझे मॉरिशस में लाने का सबब बनी, और वही सिलसिला चल रहा है कि वो मुझे लेकर आईं। फिर अरमिश तैयबा का भी ताल्लुक़ इस्लामिक मिशन यूनिवर्सिटी से ही
0: जी
1: है, फिर अब वो आई हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो उसी यूनिवर्सिटी से कोई और इनके बाद एक नई जनरेशन भी आएगी, अल्लाह ने चाहा
0: इंशाल्लाह
1: तो इंशाल्लाह,
0: इंशाल्लाह।
1: और वो काम चलता ही रहेगा। तो बच्चों के लिए ये कहना है कि हाँ, फरीदा आपा ये कहा करती थी कि अपने बच्चों को जायनमाज़ पे ले आइए, बाकी अल्लाह संभाल लेगा। तो मैं माओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके सामने रोल मॉडल बन जाएं। अगर हम बच्चों से कहें कि बेटा नमाज़ पढ़ लें नमाज़ पढ़ लें, और अगर हमने खुद ही ना अदा की, तो हमारी बात में कोई असर नहीं रहेगा। अगर
0: बेशक
1: हम खुद 5 वक्त खड़े होंगे ना, बच्चा हमें देख के खुद आएगा। और नमाज के लिए एक बात मैं आपको बताती चलूँ, ये भी हमारी मेंटोर हैं, उन्होंने ही बताई थी। एक चैनल पे प्रोग्राम हो रहा था और मैं होस्ट कर रही थी उस प्रोग्राम को, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहबा ये बताइए कि नमाज में खुशू व खुजू कैसे लाएं, क्योंकि वो तवज्जो वो यकसोई नहीं हासिल हो पाती, क्योंकि हम दुनिया में लगे होते हैं, मोबाइल की बेल बज रही है, डोर बेल है, ये
0: बिल्कुल
1: है वो है, तो तवज्जो भटकती रहती है। फिर
0: बिल्कुल
1: कुछ ऐसा है कि जब हम नमाज अदा करने खड़े होते हैं तो शैतान का वार तो होता है ना,
0: बेशक
1: तो फिर ये है कि बहुत से ख्यालात जहन में आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, तवज्जो कैसे हासिल की जाए। तो फरीदा अपने बहुत अच्छी जो टेक्निक बताई, आप यकीन कीजिए मेरे जो सुनने वाले हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, मैं ज़रूर

0: आऊँगी कि इस बात को गौर से सुने और इसको अप्लाई करके देखिएगा। छोटी सी बात है कि जब आप जानमाज पर खड़े हों और आप अकामत में हों और आपकी नज़र सजदागाह पर हो, तो आपके जो कॉर्निया है ना आँखों का, वो सजदागाह पर टिका होना चाहिए और आप इतना बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हों कि आपके कान उसको सुन रहे हों, तो इससे तवज्जो रहेगी। ठीक है, जैसे ही आपने हिलना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करके हिलना शुरू कर दिया, तो समझ लें आपकी तवज्जो भटक चुकी है, आपकी आंखों का जो कॉर्निया है वो भी घूमना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को ये बावर करवा रहे होंगे कि जी हम तो नमाज़ अदा कर रहे हैं, पर वो नमाज़ आपकी वहाँ से हट चुकी। नमाज़ कायम करने का हुक्म है ना कि नमाज़ कायम करें, तो नमाज़ कायम ऐसे ही होगी कि तवज्जो के साथ हो। जब लेबर एक दीवार बनाता है तो वो ऐसा नहीं कि इधर एक ईंट रख दी उधर, वो बाकायदा उसको एक तसलसल के साथ बनाता है। ठीक है ना, और फिर नमाज़ कायम करने का ये भी मकसद है कि फजर से लेके जोहर तक आप कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह का पसंदीदा नहीं है, ख़ास तौर से गीबत। हम ख़वातीन का बड़ा एक, मर्द हज़रात भी कम नहीं है खैर, तो इधर की बात उधर उधर की, अल्लाह हमें इससे बचाए। तो हर उस काम से हमें रुकना है फजर से जोहर तक, तो समझ लीजिए आपकी नमाज़ कायम हुई। फिर जोहर से असर तक तो नमाज़ कायम हुई। तो अल्लाह ने ये जो कंपल्सरी कर दी है ना नमाज़, ये हमारी रूह के लिए, हमारे जिस्म के लिए, रोज़े महशर के लिए, हर हर चीज़ पर आप देखते चले जाएंगे कि वज़ू से ले के जब तक आपने नमाज अदा की, तो हर हर रुकन में, यहाँ तक कि आप तशहुद के लिए जो शहादत की उंगली उठाते हैं तो उससे हमारा दिल मजबूत होता है। तो हर रुकन में, हर स्टेप में हमारे लिए ही फ़ायदा है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको खुशु खुशू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वक्त जो है बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:46 हो चुके हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है, जी हाँ, माह रबीउस्सानी का पहला जुम्मा। पिछली दफ़ा जब मोहतरमा शोहरत तस्नीम साहिबा से मुलाकात हुई थी तो माह रबीउल अव्वल का आखिरी जुम्मा था और आज माह रबीउस्सानी का पहला जुम्मा। हम एक दफ़ा फिर इशरत तस्नीम साहिबा से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे सामने एक और कलाम पेश करें।
0: जी, जो आपने बात की थी उज़्र की हाज़िरी के हवाले से कलाम पेश करने की, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें बाअदब और मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए, और जब हम वहाँ पर हाज़िरी हमें नसीब हो तो हम ये कहें

0: सरकार तवज्जो फरमाए।
1: सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, लब्बैक की सदा हो निगाहों में, खाना खुदा हो अश्कों से भीगी आँखें, दिल महवे दुआ हो। ऐ रब हमें भी अपने घर का मेहमान बना, ज़िंदगी में एक बार वो मुबारक हाज़री अता हो। हम दुआगो हैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए कि अल्लाह पाक हमारे तमाम सुनने वालों को हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए।
0: आमीन।
1: मौज़ समईन, वैसे तो आज हमारा इरादा नहीं था फरमाइशों का, लेकिन फिर भी हमें बहुत से पैगामात मौसूल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत मोहब्बत से हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इशरत तस्नीम साहिबा, तो बहुत प्यार भरे मैसेजेस भेज रहे हैं, जिनमें से एक हैं हाईलैंड से लैला, जो जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और बहुत खुश हैं मोहतरमा इशरत तस्नीम को सुनकर। इसके अलावा वो दुआ गो हैं कि जितने भी लोग, जितने भी बच्चे इस वक्त इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाबियां अता फरमाए। इसके अलावा वाकवा से नसरीन भी आपके लिए सलाम पेश कर रही हैं और आपको सुनना बहुत पसंद कर रही हैं, और उन्होंने भी दुआओं की गुजारिश भेजी है। इसके अलावा बंधु, जी हाँ बंधु थ्रियोले से बंधु फैमिली, वो भी आपको बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं और आप दुआ की गुजारिश भी कर रहे हैं। जी हाँ, इसी तरह पैगाम चंद और भी हमें मौसूल हुए हैं। हम तमाम पैगाम तो पेश नहीं कर पाएंगे वक्त की कमी की वजह से, लेकिन फिर भी आपके पैगामात के लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। इशरत, वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, शायद अब 9 ही मिनट रह गए हैं हमारे पास। मैं आपसे गुजारिश करूँगी, क्योंकि माह रबीउस्सानी है, तो अब आप एक मनकबत हम सब की फरमाइश पर, जिसकी फरमाइश मैंने आपसे की है, तो वो पेश करें।
0: जी बहुत शुक्रिया, और आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए और नहीं ले सकी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह सब की दुआएं कबूल करे जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया और नहीं भी किया। अल्लाह सब की दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी मनकबत पेश कर रही हूँ, समाप्त कीजिए।

0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। मोहतरमा इशरत साहिबा, हम आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे अगर इजाज़त हो तो।
1: प्लीज़ ज़रूर।
0: मोहब्बत मुस्तफ़ा का पयाम लेके आईं, वो शहर कराची से सलाम लेके आईं, लबों पर दुरूद और दिल में अकीदत, नेमतों में समो कर एहतराम लेके आईं। जहाँ भी सजी महफिले ज़िक्र अहमद, जहाँ भी सजे महफिले ज़िक्र अहमद, वो आवाज़ में इश्क का अंजाम लेके आईं। कभी हम्द की खुशबू, कभी नातों की सूरत, दिलों के लिए राहत व आराम लेके आईं। मॉरिशस की महफिल हो या रेडियो की नशिस्त, हर एक बज़्म को आपने पुरनूर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिथहत सुना सुना कर कितने ही दिलों को मसरूर कर दिया। ये चंद दिनों का सफ़र था बज़ाहिर, मगर याद उसकी रहेगी बहुत देर तक। वो नेमतों की खुशबू, वो लहजे की मिठास, वो दिलों में रहेगी बहुत देर तक। इशरत तस्लीम साहिबा, ये अलविदा नहीं, ये फिर से मुलाकात की एक दुआ है। आप कराची लौटें सलामत मुस्कुराते। मॉरिशस के रहने वालों की यही इल्तिजा है।
1: सुभान अल्लाह।
0: मोहतरमा इशरत तस्लीम साहिबा, आपने मॉरिशस में अपने क़याम के दौरान जिन महफिलों को अपनी खूबसूरत नात ख्वानी से सजाया और जिस मोहब्बत व खलूस के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुआम की, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। आप कराची वापस जा रही हैं, मगर आपकी आवाज़, आपकी मोहब्बत और आपके साथ गुजारे हुए ये खूबसूरत लम्हात हमारी यादों में हमेशा महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान फरमाए, आपको सलामत रखे और बार बार ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप सलाम का नजराना पेश करें, और अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो उससे पहले प्लीज़।
1: बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना कि दिल के तार मिल चुके हैं, और मैं वाकई कहना चाह रही थी, आपने मौका फराहम कर दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि उन्होंने मौका दिया, और मैं अल्लाह ताला ने मेरा दाना पानी यहाँ मतलब लिखा और मैं यहाँ पर आ गई। और इसी के साथ साथ मैं जाहिदा और शहजाद भाई, अरमिश और नरीमान और जितनी भी इनकी टीम है जिन्होंने दामे दरमे सुखने जिस काविश में भी हिस्सा लिया है, उन सब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और भी हिम्मत अता फरमाए, और अल्लाह इनसे अच्छे अच्छे काम लेता रहे, आपसे भी अच्छे अच्छे काम लेता रहे, और आप जैसी प्यारी प्यारी जितनी मेरी दोस्तें हैं, अल्लाह सब की दुआएँ कबूल मंजूर फरमाए। और मैं हमेशा एक मैसेज मैंने दिया है, आज भी मैं ये मैसेज दूँगी कि नातें सब ने सुनी माशाल्लाह, सबका एक मोहब्बत का रंग लेकर मैं भी जा रही हूँ, और यहाँ भी हो सकता है कि कुछ सब में रंग चढ़ा हो अल्लाह की मोहब्बत का, उसके हबीब के इश्क का रंग। तो इस रंग को इसी तरह से कायम दायम रखें कि हर महफिल में मैंने ये बात की है कि अपने आप को फ़िरका वारियत में बिल्कुल मत बांटें, कोई जमात ना बनाएं, जो भी अच्छा काम कर रहा है अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चल रहा है, सब मिलकर उसके साथ आ जाएं। तो सब मिलकर जब हम काम करेंगे ना, तो क्या ही बात होगी।
0: इंशाल्लाह
1: यही मैसेज देना था।
0: बिल्कुल। तो बस अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक सलाम पेश करें
1: जी,
0: क्योंकि इस वक्त बस वक्त जो है बहुत तेज़ी से गुजर रहा
1: जी,
0: है।
1: जी जी जी जी
0: जी बिल्कुल। और मौज़े सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने साथ दिया, सबसे ख़ास तौर पर हम शुक्रिया एक बार फिर अदा करेंगे मोहतरमा इशरत तस्नीम साहिबा और उनके साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं ज़ायदा पीर महमूद, उनके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।

奉上作庆，令人太羡慕。一生一个多美好，而常担保百不错。三十几已怎算好？尽量让我

0: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, 2:30 बज रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे। जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है आप ही के अनुरोध पे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम करने वाले हैं।
1: अरे भाई जल्दी चलो, बस निकल जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, बस निकल जाए।

जी हाँ, आप हैं हमारे साथ, काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है पुरानी फिल्म से लिया गया, ये प्यारा सा गीत जाने वाला है समस्त श्रोताओं के नाम। पोपाले के रहने वाली आप है अमीना जी, और ये गीत जो है जाने वाला है समस्त परिवारों के लिए, आपके समस्त दोस्तों के लिए। और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। सुनीता जी है गाँव गोप की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए, ये अगला गीत उनके नाम हम करेंगे, और फिल्म का नाम है हतिम ताई, पुराना गीत है। तो ये गीत जो है इन समस्त

चलिए श्रोताओं, गीतों का एक खूबसूरत सफर से हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे पुराना गीत अभी आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम हतीम टाई, और अब फिल्म सौतन से लिया गया गीत जिंदगी है प्यार का गीत। बहुत ही पॉपुलर गीत है और ये गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ जो है वक्वा की रहने वाली सुदेवी जी है जुड़ी हुई है, और ये गीत जाने वाला है समस्त, जी हाँ ये गीत जाने वाला है त्रियोले की रहने वाली दीदी ललिता है, कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, शोभा, देविना, बिंदु, लालोगा की रहने वाली दीदी माला है, जयश्री, अंबिका, जालू परिवार, बिकारी परिवार, काम रतन परिवार, काम गुलाम परिवार, कागुबा परिवार, तो इन सभी परिवारों के लिए ये प्यारा सा गीत हम चला रही है।

चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत इस समय आप सुन रहे थे, और ये फिल्म जो है फिल्म कुदरत से लिया गया। तो चलिए, ये प्यारा सा गीत जो है, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अवनील लक्ष्मण है और साथ में है निशमा, अरविंद, ऋषि, पुपुआशा है, साथ में है दीपा, निशाल, श्रयन, शनया और शरव है, सिरतन, प्रेमिला सिरतन है, सिरतन परिवार है, लक्ष्मण परिवार है, बेलगौज के रहने वाले। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चला रही है। साथ में हमारे साथ इस समय व्हाट्सएप मैसेज हमें जो है भेजी है सरिता जी। सरिता जी है कथोबोन की रहने वाली। तो चलिए, उनके नाम भी ये प्यारा सा गीत हम चला रही हैं।

0: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज सुबह बोटानिकल गार्डन में कई लोगों ने राष्ट्र के पिता कहलाने वाले सस्यसागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बेटे डॉक्टर नवीन राम गुलाम, बेटी सुनीता राम गुलाम जयपुर और लेबर पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति में उनकी समाधि के पास प्रार्थनाएं की गई। एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वाले को फूलों के साथ नमन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्यसागर राम गुलाम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गुणों और उसूलों को अपनी ताकत बनाकर मॉर्शन समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। हिंद महासागरीय इलाके में सहयोग मजबूत करने की दिशा में IOC और सिहाद के बीच कायम फ्रेमवर्क समझौते को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एबेन में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से लागू हैं, जिसके तहत इलाकाई स्तर पर कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को काफ़ी बढ़ावा मिला। इस साझेदारी का मकसद है हिंद महासागरीय इलाके में जलवायु, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच कृषि को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान मजबूत करना। ऑडियो विजुअल की दुनिया अपने आप में कई यादें समेटी हुई है। एक घर, एक दृश्य, एक कहानी सुनाती है, एक लम्हे को कैद करती है और उन लम्हों को संजो कर रखना ज़रूरी होता है। आर्काइव्स में जमा दृश्यों का प्रयोग बार बार होता है और ऐसे में इनका आसानी से उपलब्ध होना भी अनिवार्य है। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के आर्काइव्स में देश का इतिहास छिपा है, हर त्यौहार का रंग घुला है। इन्हीं आर्काइव्स को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इसमें मदद देने के वास्ते फ्रांस से इंस्टीट्यूट नेशनल डू ऑडियोविजुअल की एक टीम मॉरिशस आई हुई है। 1 हफ्ते तक वे आर्काइव्स की पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। विदेश में नाइजीरिया में अवैध खुदाई करने के आरोप पर गिरफ्तार 37 लोगों की हिरासत में ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक जांच शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि इनकी मौत बीमारी के फैलने के कारण हुई। एक दूसरा कारण सेल के अंदर हवा की कमी और भीड़ भी बताई जा रही है। मामले की तहकीकात के लिए एक कमांडर को हिरासत में लिया गया है। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: kHz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: तो स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:03 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले पोर्टविस के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है, जिनमें है गुतवायाल और सें जोसेफ रिविया के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है मेबर्ग के रहने वाले निवासों को, जिनमें है रू डेलिस, रू नियो, रू फ्लामा, रू शांपाइन, रू सेंगोलेट, रू सेंटमार्टिन, रू बांबू, रू सुफ्रान, रू लापास, गणपत लेन और गोपाला लेन के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी शनिवार 19 सितंबर 2026 को। साथ में है मौसलमान नोलन पेरेबेर के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ में है और इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर है अवेन्यू लोरिए पॉइंट कानूनी के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2024 को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है प्लेबुआ और मलाकोफ के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन

0: सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों की प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो छोटा हुआ अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से अभी चंद विज्ञापन सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो आइए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे इसी चैनल पे।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
0: तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखने वाले हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और ये प्यारा संगीत जो है इस समय हमारे साथ विद्या जी है, आप जुड़ी हुई है यूनियन पार्क से। ये अगला गीत आपके लिए, आप ये गीत जो है सुरेखा के लिए, वेदना, विमला, प्रीति, बबीता और चाची कुमारी है, इन सभी लोगों के नाम जो है चलाना चाहती है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ने वाली है और बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है ताजमहल। फिल्म ताजमहल का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इन सभी श्रोताओं की मान की फरमाइश पे हम चलाना चाहते हैं। तो चलिए ये गीत जो है हम सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। वैसे बहुत ही प्यारा संगीत जो है हम चलाने वाले हैं, और उषा जी है वाक्वा की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत जो है उनकी पसंद पे हम चलाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है उनके नाम जो है हम करेंगे उनके समस्त परिवारों के लिए। तो चलिए, प्यारा सा गीत फिल्म सीमा से लिया गया उनकी तीन बहनों के लिए, मेधा, शोभा, सात मह कामिनी, और उनके पांच भाइयों के लिए, समस्त शिवदागी परिवार है। तो इन सभी परिवारों के नाम जो है ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओ, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद इस समय हम चला रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे।

फिर चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगला गीत जो है फिल्म गाइड से लिया गया। शोभा जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये अगला गीत जो है जाने वाला है उनके सभी परिवारों के लिए, साथ में ये गीत जाने वाला है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, अगला गीत हम चलाने वाले हैं हमारे साथ इस समय भाई हरी जी हैं, वाकवा के रहने वाले, वैसे वाकवा के नहीं, वैसे बोबासा के रहने वाले हैं भाई हरीश जी, और उनका ये मन पसंद गीत जो है फिल्म फना से लिया गया है। तो चलिए हम गीत की ओर बढ़ेंगे। तो श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखने वाले हैं शाम के 4 बजे तक। तो चलिए प्यारा सा गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: तो चलिए श्रोताओं, एक सालगिरह गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय मोन जी है ख्वाहियों की रहने वाली और ये गीत जाएगा उन की बहन इंदिरा है। इंदिरा जी के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं सभी परिवारों की तरह, सभी बहनों की तरफ से। शीला है, सारला है, जासू, सुकवंती साथ में है, मोन जी उनके भाभी है, उनके नेफ्यू है, समस्त फोकियाचंद परिवार है, उन समस्त पोकन परिवार है, गंगाराम परिवार है और बिकू परिवार है साथ में है, उनका भाई जो है पम्पम। तो इन सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जो है इंदिरा जी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे। तो चलिए ये प्यारा सा गीत है जो है सालगिरह गीत हम चलाने वाले हैं। वैसे जितने भी लोग जो है आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो MBC की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ।

चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और ये अगला गीत जो है बदलती रिश्ते फिल्म से लिया गया। हम चलाने वाले हैं समस्त बंधु परिवार जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रियोले से, तो उनके नाम जो है इन सभी परिवारों के लिए जो है ये प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं। साथ में माला सुमारू जी जो है हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, उनके पति है सूर्य देव दे, तो इन सभी श्रोताओं के लिए ये प्यारा सा गीत जो है टाइटल ट्रैक किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो चलिए श्रोताओं, 3:40 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं और ये अगला गीत, वैसे एक अंतिम गीत जो है इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं और हमारे साथ सरिता जो है कथोबोन की रहने वाली, उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं उनके सभी परिवारों की तरफ से। ये गीत हम जो है चलाने वाले हैं, तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत जो है उनके नाम हम करेंगे ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। वो हमेशा सेहतमंद बनी रहे और ये प्यारा सा गीत उनके नाम हम करने वाले हैं। तो और इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो चला। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे, हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार।

0: चलिए श्रोताओं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। जी हाँ, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। ब्रह्मस्थान विराज देव ब्रह्मस्थान मौसलमा वीओएस ब्रह्मस्थान बालकिसुन रोड और कांचे के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को 8:15 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना लिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। आइए, आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। उर्दू कार्यक्रम गुलदस्ता उर्दू आप सुन सकेंगे निसार के साथ।
1: This is Radio Mauritius.
2: Assalamu alaikum.
3: Came to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandariki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.

0: मोहतरम सामईन, तमाम मुहिब्बान उर्दू का निसार अख्तर की तरफ से आदाब व तस्लीमात। आपकी समागतों की नज़र है गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम वो बज़्म सुखन जो उर्दू स्पीकिंग यूनियन की पेशकश है। मकसद उर्दू ज़बान व तहजीब को आप तक पहुँचाना है।
1: पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं।
0: मोहतरम सामईन, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तारीख के सिफात पर नहीं जबान व अदब के दिल पर रकम होते हैं। आज का गुलदस्ते उर्दू अजीम दर्दाशना शायर मीर तकी मीर के नाम। एक ऐसा शायर जो खुदाए सुखन कहलाया, एक ऐसा शायर जिसकी शायरी 200 साल के बाद भी पुरानी नहीं हुई, एक ऐसा शायर जिसके मिसरे ज़र्बुल मिसल बन गए, एक ऐसा शायर जिसने ज़िंदगी के साज़ पर हर किस्म के नगमे गाए, जिसकी शायरी में इश्क खून बनकर दौड़ता है। सामईन, मीर तकी मीर के यौम वफात पर आज हम उन्हें खैराज अकीदत खैराज तहसीन पेश करेंगे। तो आइए मीर की दुनिया में कदम रखते हैं जहां दर्द भी शेर बन जाता है और आंसू भी अदब की आबरू। किसी शायर के कलाम को समझने के लिए सिर्फ उसके अशार पढ़ लेना काफी नहीं, बल्कि उसके जिंदगी के हालात, उसके अहद की कैफियत और उसके तजुर्बात से वाकिफ होना भी बेहद ज़रूरी है। आइए सामईन, सबसे पहले मीर तकी मीर के सफर हयात से गुजरते हैं।
2: मीर तकी मीर 28 मई 1723 को आगरा में पैदा हुए। उनका असल नाम मीर मोहम्मद तकी था। वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन अली तकी के नाम से मशहूर थे। वो एक दरवेश सिख इंसान थे। मीर का कुंबा मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं था। आबो इजदाद हिजाज मुकद्दस से हिजरत करके हिंदुस्तान पहुँचे थे, इसलिए उनमें अरबों की रिवायात खसूसियात नुमायाँ थी। मीर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्ला से हासिल की, लेकिन जब 9 बरस के हुए तो उनके उस्ताद इस जहां से रुखसत हो गए। मीर साहब के वालिद ने अपने बेटे को खुद तालीम देना शुरू की, मगर वो भी इंतकाल कर गए। यूं मीर तकी मीर को बचपन से ही बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। माली हालत पतली थी, ऊपर से रिश्तेदार भी उनसे अच्छा बर्ताव ना कर सके। सुतेले भाई को मीर तकी मीर से बिला वजह का इख्तिलाफ था, वो उनसे अच्छा सलूक नहीं करता था। इन हालात में मीर तकी मीर को नौउम्री में ही पेट भरने के लिए जगह जगह खाक छानना पड़ी, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद शायरी भी जारी रही। मीर तकी मीर जवानी में किसी माजबी को दिल दे बैठे, लेकिन ये इश्क परवान ना चढ़ा। रिश्तेदारों के सताए हुए मीर के लिए ये दर्द किसी क्यामत से कम ना था। यहाँ से मीर की जिंदगी में रंजो अलम के तवील बाप की इब्तिदा हुई, जिसकी झलक उनकी शायरी में जा बजा नजर आती है। मीर तकी मीर फिक्रे माश के लिए दिल्ली गए, लेकिन नाकाम रहे। दोबारा आगरा आ गए, मगर किस्मत ना बदली। एक बार फिर आजमे दिल्ली हुए और अपने खालू सिराजुद्दीन आरजू की खिदमत में रहे, लेकिन इन दिनों शहर की सूरत हाल नाजुक थी। मुगल सल्तनत जवाल का शिकार थी। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और ईंटों से इसे गिरा दिया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपनी पूरी कोशिश की और दिल्ली को बर्खास्त कर दिया। दिल्ली लूट ली गई और सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। दिल्ली के हालात से दो चार मीर ने लखनऊ जाने का इरादा किया। लखनऊ पहुंचे तो एक सिराय में क्याम किया, जहां उसी शब एक मुशायरे का एहतमाम किया गया था। मीर साहब रह ना सके, फौरन एक गजल लिखी और महफिल में शामिल हो गए। लखनऊ शहर के नौजवान उनकी तरफ

0: देखकर हंस पड़े। मीर साहब जो पहले ही समाज के सताए हुए थे, दिल शिकस्ता होकर एक जाने बैठ गए। जब उनकी बारी आई तो शम्मा सामने आने पर फिर सबकी नजर पड़ी। किसी ने पूछा, हुजूर का वतन कहाँ है? मीर साहब ने फिलबदी ये किता कहा, क्या बूदोबाश पूछो हो पौरब के साकनों, हमको गरीब जान के हंस हंस के पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी अजड़े दियार के। सबको हाल मालूम हुआ तो शर्मिंदा हुए, माजरत तलब की। अगले दिन शहर में मशहूर हो गया कि मीर साहब तशरीफ लाए हुए हैं। वहां के नवाब आसिफुद्दौला ने 300 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया। मीर आराम से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन नवाब साहब ने गजल की फरमाइश की, लेकिन मीर तकी मीर ने ना सुनाई। एक दो रोज बाद फिर गए तो नवाब ने पूछा, मीर साहब हमारी गजल लाए? मीर साहब ने तेवर बदल कर कहा, जनाबे आली, मजमून गुलाम की जेब में तो भरे ही नहीं कि कल आपने फरमाइश की, आज गजल हाजिर कर दे। इस पर नवाब साहब बोले, तबीयत हाजिर होगी तो कह दीजिएगा। एक दिन नवाब ने बुला भेजा, जब पहुंचे तो देखा कि नवाब होश के किनारे खड़े हैं, हाथ में छड़ी है, पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। मीर साहब को देखकर बहुत खुश हुए और कहा, मीर साहब कुछ फरमाइए। मीर जी ने गजल सुनाना शुरू की। नवाब साहब सुनते जाते और छड़ी के साथ मछलियों से भी खेलते जाते। आखिर 4 शेर पढ़कर मीर साहब ठहर गए। नवाब ने कहा, पढ़िए। तो बोले कि पढ़ूं क्या, आप मछलियों से खेलते हैं, मुतवज्जा हों तो पढ़ूं। नवाब ने कहा, जो शेर होगा खुद ही मुतवज्जे कर लेगा। मीर साहब को ये बात ज्यादा नागवार गुजरी। गजल जेब में डालकर घर को चले आए और फिर जाना छोड़ दिया। चंद रोज बाद बाजार में नवाब से आमना सामना हो गया। नवाब साहब ने देखते ही कहा, मीर साहब आपने तो बिल्कुल ही हमें छोड़ दिया, कभी तशरीफ भी नहीं लाते। मीर साहब ने कहा, बाजार में बातें करना आदाबे शुरफा नहीं, ये क्या गुफ्तगू का मौका है? मीर तकी मीर ने दरबार छोड़ दिया था, लेकिन लिखने का काम रुका नहीं था।
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: मुअज़्ज़ज़ सामईन, मीर तकी मीर का शुमार दबिस्तान दिल्ली की मुमताज़ गज़ल को शोरा में होता है। उनका शुमार उन कलमकारों में होता है जिन्होंने उर्दू ज़बान को इल्मी शक्ल दी। वो पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी में माँ बादल तबियात का इस्तेमाल और सूफियाना ख़यालात पेश किए। दरअसल उनके वालिद मोहतरम और चचा सूफियाना मिजाज के मालिक थे। मीर उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते गए। तसव्वुफ़ के अहम फ़लसफ़े वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद उनकी शायरी की अहम खसूसियात हैं। मीर तकी मीर इश्क के आदाब सिखाते हैं, महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर का दर्स देते हैं। मीर की शायरी का एक मखसूस रंग है और मुख्तलिफ शोरा ने इस रंग में शेर कहने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। उनके हमसर और बाद में आने वाले शोरा उन्हें खैराज अकीदत पेश करते आए हैं। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। सामईन, उर्दू शायरी के बेताज बादशाह मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने मीर तकी मीर के लिए ये शेर कहा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गज़ल की दुनिया में कोई भी मीर के मकाम तक नहीं पहुंच सका, ना ही किसी ने मीर की हमसरी का दावा किया। हसरत मोहानी ने अपनी हसरत का यूं इजहार किया, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द वलेकिन हसरत, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द वलेकिन हसरत, मीर का शेवाए गुफ्तार कहां से लाऊं। रासिख अजीम आबादी फरमाते हैं, शागिर्द है हम मीर से उस्ताद के रासिख, शागिर्द है हम मीर से उस्ताद के रासिख, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद।

0: उस्ताद हमारा।
1: हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की

0: उसके दर पे जाता हूँ। हालत अब इस्तेराब की सी है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। देखिए अब्र की तरह अब के मेरी चश्मे पुर आब की सी है। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है।
1: सामईन कराम, मीर तकी मीर की जिंदगी के आखिरी चंद सालों में जवान बेटी और बीवी के इंतकाल ने उनके सदमात में और इजाफा किया। सारी जिंदगी रंजो अलम से गुजरते हुए मीर अपनी दुखों का बोझ उठाए 87 साल की उम्र में 20 सितंबर सन 1810 को लखनऊ की आगोश में हमेशा के लिए सो गए। मगर आज भी दुनिया के नामी शायर उन्हें अपना उस्ताद तस्लीम करते हैं। उनको हर दौर में गजल का शहंशाह कहा गया। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सामईन ज़ी-ए-इहतिशाम, मीर तकी मीर की दास्तान मुख्तसर कहां कि एक नशिश्त में तमाम हो जाए। अभी उनके फन के कई दरीचे खुलने बाकी हैं। अगले हफ्ते मीर के चंद और फूल चुनेंगे। तब तक के लिए निसार अख्तर आपसे इजाजत तलब करता है। फिलहाल इस अदबी शाम को मीर की एक खूबसूरत और मकबूल गजल के नाम करते हैं। खुदा हाफिज़।

चार बज रहे हैं और यहाँ पर आगाज़ हो रहा है बज़्म नूर प्रोग्राम का, जिसमें हम आपका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। आप तमाम लोगों को यौम जुम्मा कबूलियत वाला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज 18 सितंबर 2026 और 6 रबीउस्सानी 1448 है। आप तमाम लोगों को यौम कबूलियत मुबारक हो।

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان

sudden, الشمس والقمر بحسبان.

وأقيموا الوزن بالقسط ولا

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبي

أحدك الأعلام. فبأي

हसीन यादें, उनकी हसीन यादें पूरी दुनिया में जा बजा। स्पेशली माह रबीउल सानी में हो रही है। अल्लाह जल्ला मजलहू ने आपको इल्म जाहिर और इल्म बातिन में जो मुकाम दिया, उससे अपने वक्त के बड़े बड़े उलमाए जाहिर, उलमाए बातिन, सूफिया, जुहदा, अहलुल्लाह वाकिफ है। इल्म लदुन्नी जो एक ऐसा समंदर है, डिवाइन नॉलेज या गॉड गिफ्टेड नॉलेज, इल्म वहबी जिसकी कोई हद लिमिट नहीं है। ये एक ऐसा सी है जिसका कोई सी साइड नहीं, कोई किनारा नहीं। अल्लाह पाक ने आपको कुरान के वुलूम व मारिफ अता किए जो बड़े बड़े अपने वक्त के मुतबहिर उलमा के लिए काबिल रश। आपने सूरह अल-कौसर की बड़ी आरिफाना तफसीर, बड़ी आलिमाना, बहुत मुश्किल जाहिर है कि उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए उस लेवल के उलमा और साहिबाने इल्म होने चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपने जो अल-कौसर को एक्सप्लेन किया वो आपको तबर्रुकन बता रहा हूं। उससे पहले तीन चीजें आप जहन नशीन करिए। नंबर एक, तहक्कुक बिवहदत ज़ात, वहदत ज़ात से तहक्कुक। और नंबर दो, अल इंकिशाफ बिवहदत ज़ात, वहदत ज़ात का इंकिशाफ। और नंबर थ्री, अल वकूफ अला वहदत ज़ात, वहदत ज़ात का वकूफ। सो आपने फरमाया कि अल कौसरु अत्तहक्कुक बिवहदत ज़ात वल इंकिशाफ बिहा वल वकूफ।

बहुत जबरदस्त पावरफुल सूरा, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो हर नमाज बाद एक दफा, हर नमाज बाद एक दफा सूरह अल कौसर पढ़ना। वंस आफ्टर ईच नमाज फॉर गुड रिजल्ट फॉर एजुकेशन। और अल्लाह जल्ल मजलहू के नामों में से एक बहुत प्यारा नाम, अल्लाह के सारे नाम ही प्यारे हैं, या हसीबो या अल्लाह, बोलिए या हसीबो या अल्लाह। ये भी गुल रिजल्ट के लिए, अच्छे नतीजे के लिए बड़ा मुअस्सर है अल्लाह के नामों में से। पढ़े या हसीबो या अल्लाह, या हसीबु या अल्लाह, या हसीबु या अल्लाह। इसके अलावा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दुरूद है जो आपने तहरीर फरमाया। आपके दुरूद शरीफ पे लिखी गई बुक्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, बहुत आसानी से आपके औराद मिल जाएंगे, आपके वज़ाइफ मिल जाएंगे, औराद कादरिया के नाम से। अगर हो सके तो ये दुरूद याद किया, आप के अकायद जहां आपके किताबों से वाज़े वहां आपके अकायद, आपने हुजूर सलाम पे जो सलातो सलाम लिखा और भेजा उनसे जो अकायद आला हजरत ने, मुबल्लिग आज़म ने, कायद अल सुन्नत हमारे जमहूर उलमा ने हमें दिए, वही गौसे पाक के अकायद। दुरूद लंबा है, मैं सिर्फ अपने मुद्दा की हद तक पढ़ता हूँ। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला मन खलक्तल वजूदा लिअजली, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला मन खलक्तल वजूदा लिअजली, अल्लाहुम्मा صلي وسلم على من خلقت الوجود لأجلي। इसका माना यह है कि ए अल्लाह तू सलात व सलाम भेज उस ज़ात पर जिनकी खातिर, जिनकी वजह से तूने वजूद बनाया। हदीस लौलाक बड़ी मशहूर है, जिसके बारे में मुहक्किकीन की राय यह है कि ये मानन सही है, और गौसे पाक की भी यही तहकीक कि हदीस मानन सही है। आपने हदीस से लौलाक का मजमून इस सलातो सलाम में पेश किया, और फिर हुजूर ताजो शरिया ने उसको यूं एक्सप्लेन किया, उसकी तर्जमानी की, फरमाया आपके खातिर बनाए दो जहां, आपके खातिर बनाए दो जहां, आपके खातिर बनाए दो जहां। फिर फरमाते हैं अगला मिसरा मुझे नहीं आता, लेकिन मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने अपनी खातिर जो बनाया आप है, फिर बोलिए अपनी खातिर जो बनाया आप, यही गौसे पाक ने फरमाया। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला मन खलक्तल वजूदा लिअजली, फरमाए मौला उस पर सलात भेज, उस पे सलाम भेज, उस पे इफादाए खैर कसीर फरमा, जिसकी वजह से, जिसकी खातिर तूने वजूद बनाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मुकाम।

इसलिए उनके तस्करे खूब करें, उनके अकायद एक एक करके लोगों को बयान, ताकि हक और बातिल के दरमियान फर्क और इम्तियाज। फिर एक खास बात, आजकल एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। तो जब सुबह निकलें या फिर गाड़ी चढ़ी जाए किसी भी वक्त, तो ये दुआ बतौर खास पढ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और ये दुआ पढ़ा, ताकि अल्लाह पाक आपको तमाम आफात से बचाए, तमाम मसाइब से बचाए, तमाम तकालीफ से बचाए। इसमें बिल्कुल नौजवान गाड़ी बहुत केयरफुल होके चला, स्पीड की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जल्दी है तो आप टाइम से कुछ पहले निकलेंगे। जब आप गाड़ी चलाएं तो आपको मालूम है उसूल ये है कि सिर्फ आप ये ख्याल करें कि आप देखने वाले हैं, सिर्फ आप बीना है, कोई और नहीं देखता। तो अल्लाह पाक आपकी और स्पेशली नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमाए, उनके अकायद की, उनके मालो जान की हिफाजत फरमाए। पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फी हाज़ल यौम रहमतन रहमतन व बरकतन व मग़फ़िरतन व रिदवान व सलामतन। O Allah, we ask you on this day for blessing, for mercy, for forgiveness, for security and your pleasure. Ey Allah, hum is din aap se rehmat ke, barkat ke, aapki bakhshish aur maghfirat ke, aapki khushnoodi aur hifazat ke saaye mein। अल्लाह का ये नाम बड़ा मुबारक नाम है, अल्लाह का हर नाम मुबारक है। या हफीज़ो या अल्लाह, क्या ड्राइविंग करते वक्त इसका विर्द करें, या हफीज़ो या अल्लाह। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्ला।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427. Or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
0: Radio Mauritius
1: 819 kilohertz par ye hai Radio Mauritius.
0: Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
3: आप तमाम सामीन को ये शाम मुबारक। आप साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हसीन प्रोग्राम। जी हाँ मज़े सामीन, गीत और गज़ल का ये हसीन प्रोग्राम, जहां से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुशामदीद है। तो चलिए ये पहला तराना आपके नाम करते हैं।

जिंदगी एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंसान इस दुनिया में आता है, अपने हिस्से की खुशियां और गम समेटता है, कुछ ख्वाब पूरे करता है और कुछ अधूरे छोड़कर रुखसत हो जाता है। हर किसी को मुकद्दर में कहां मंजिल नसीब। जिंदगी खुद एक सफ़र है, रास्ता ही रास्ता है। ये रेडियो मॉरिशस है, गीतों और गज़लों की दुनिया में हम आपको ले चलते हैं, जहां हर एक जीवन है एक कहानी। समाप्त फरमाइए।

बाज़ औक़ात मुस्कुराहें सिर्फ खुशी की अलामतें नहीं होती, बल्कि दिल के बेशुमार गमों को छुपाने का हुनर भी होती है। चेहरे पर सजी मुस्कुराहट के पीछे न जाने कितनी उदासियाँ और कितने अनकहे किस्से पोशीदा होते हैं, है ना? चेहरे पे तबस्सुम है तो आँखों में नमी क्यों है? ऐ दोस्त, ज़रा बतला ये जादूगरी क्या है?

बेशक आंखें दिल की तर्जुमान होती हैं, कभी झुकी हुई नजरें मोहब्बत का पैगाम देती हैं, तो कभी खामोशी से दिल का हाल सुना जाती है। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है। महफिल गीतों और गज़लों में साज व आवाज़ किससे दिलकश महफिल को मज़ीद सजाते हैं। मज़ीद सामीन, ज़िंदगी के सफ़र में इंसान न जाने कितनी राहों से गुजरता है। हम उम्र भर किसी एक सदा, किसी एक चेहरे या किसी एक लम्हे के मुंतज़िर रहते हैं, मगर वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है।

वज़ीर सामीन, ज़िंदगी की राहें चाहे कितनी ही तवील और पेचीदा क्यों ना हो, असल हुस्न उन लम्हों में पोशीदा हैं जो हम मोहब्बत और खलूस के साथ गुजारते हैं। ज़िंदगी नाम है चंद खुशियाँ चंद गमों का, जो मिल गया उसे संभाल लीजिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। हर शख्स के दामन में कुछ खुशियां हैं कुछ अधूरे ख्वाब हैं, शायद इसीलिए ये लाजवाल गज़ल आज भी दिलों को छू लेती है। सुनिए गुनगुनाइए, खुश रहें आबाद रहें और ज़िंदगी के हर रंग से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। परवीज़ को इजाज़त, खुदा हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्वतंत्र मॉरिशन राज्य की नींव रखने वाले सस्यु सागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। पॉपलोमिस में उनकी समाधि पर और पोर्टवी वाटर फ्रंट पर स्थापित उनकी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाए गए। ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने इस हफ्ते एमबीसी का दौरा किया। एल नीनो की वजह से सूखे मौसम का असर और बढ़ा और इंडोनेशिया जंगलों की भीषण आग से जूझ रहा है। 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख। और सऊदी अरब तथा यमन के हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज। कल सीमा वाले इलाकों में हुए हमलों में 24 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। 18 सितंबर 1900 को केवल नगर में सस्यु सागर राम गुलाम का जन्म हुआ था। आज उसी स्थल पर मॉरिशस के सबसे

0: पहले प्रधानमंत्री की 126वीं सालगिरह पर कई महानुभाव उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए। सचिव सागर रामगुलाम मेमोरियल पार्क में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की मौजूदगी में फूल चढ़ाने की विधि संपन्न की गई। मंत्री राजेश भगवान, अविनाश राम तोहल, महेंद्र गुंदिया, सांसद रेजा समताली, फ्लाग जिला परिषद के अध्यक्ष धनराज किशुन, बैलगीफ के ग्राम परिषद की अध्यक्ष माही काहुल पुस्तों ने भी इसमें भाग लिया। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले दिवंगत सर शिवसागर राम गुलाम को नमन किया गया। निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सुधार, आवासीय परियोजनाएं, श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, ये उनकी मात्र कुछ ही उपलब्धियाँ हैं। इसकी सूची इससे बहुत ज़्यादा लंबी है। स्वतंत्र मोशन राष्ट्र की नींव रखने वाले सचिव सागर रामगुलाम की आज 126वीं जयंती। पॉम्पलेमसस बोटानिकल गार्डन में आज सुबह राष्ट्रपति की समाधि, राष्ट्रपिता की समाधि पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि सचिव सागर रामगुलाम एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन मोशन निर्माण में समर्पित किया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह बड़ी संख्या में लोग पॉम्पलेमसस में एकत्र हुए। जरा विस्तार सुमेहरा अकबर अली के साथ।
1: कम संसाधनों के बावजूद एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ते आजाद राष्ट्र का उन्होंने ख्वाब देखा था। मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिव सागर रामगुलाम की 126वीं सालगिरह के मौके पर पॉम्पलेमस के बोटानिकल बाग में अनेक लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: Tout le temps mon vieux, moi j'ai 86 ans. Depuis mes enfants me connaissent, mais c'est qu'il ne fait pour nous pays qui aujourd'hui même nos enfants, nos petits enfants peuvent récolter.
3: Ce qu'il donnait, l'éducation gratis, 23e âge, pension, tout à fait. Les paquets grands. Petit, c'est pas qu'ils ont fait. Égalité.
4: Tcha-tcha, là, nous venons dans mon mariage. Un tcha-tcha comme ça, on dit que la lampe pour gagner. Ce garçon peut suivre, il dit ça aussi, il peut faire ce qui est bon.
5: Si nous suivons la vie de tcha-tcha, souffrance qui nous passait depuis son enfance, son maman, son papa, il nous sacrifier beaucoup que tcha-tcha est arrivé.
1: उनकी समाधि पर हिंदू रीति रिवाज अनुसार विशेष प्रार्थनाएं की गईं। उनका बेटा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम, उनकी बेटी सुनीता रामगुलाम जयपाल, सरकारी सदस्य, लिबरल पार्टी के समर्थक और चचा को निजी तौर पर जानने वाले लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने सर शिव सागर रामगुलाम के सफर को एक बार फिर मिसालिया करार दिया है।
6: Incroyable ça.
7: Malheureusement, dans l'histoire pas dire qu'au sein de Pétalier, dans Kowalnagar, mais une histoire impensable même quand va arriver ça. Sur la vie, sur le parcours. Personne n'a pas faire de tout ça sur ça, pas même moi.
0: मॉरिशस के इतिहास की एक प्रभावशाली शख्सियत सचिव सागर रामगुलाम ने न केवल अपने सरकारी कार्यों से बल्कि अपनी गहरी बौद्धिक और सामाजिक सोच से भी अपने युग पर अमित छाप छोड़ी थी। उनकी 126वीं जयंती के अवसर पर आइए एक ऐसे राजनेता का चित्रण देखें जिसकी कलम उनके लोगों की सेवा में पहला हथियार बनी थी। एक लेखक के रूप हैं। ये पेश है ये खास रिपोर्ट विधिमा सिबरन के साथ।
8: 1935 में लंदन में चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉरिशस लौटने पर सर शिव सागर रामगुलाम धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करते हैं। ब्रिटिश समाजवाद और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने गरीब मजदूरों और गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की रक्षा करने का संकल्प लिया। 1927 से ही उन्होंने द टाइम्स अखबार में मॉरिशस शीर्षक से अपना पहला लेख प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने मॉरिशस के संविधान पर चर्चा की थी।
9: Un

0: titled Mauritius, nous peut reproduire ça l'article là. Et il y a ça qui est dans ce journal Mauritius Aria Patrica, aussi fin reproduire ça l'article là. Dans ça l'article là, jusqu'en 1927, toute bonne constitution qui nous a hérité, faire commenter à sa constitution là.
1: लेखक प्रहलाद रामशरण के अनुसार सर शिव सागर रामगुलाम एक विनम्र सरल दूरदर्शी और मददगार व्यक्ति थे। मॉरिशस में प्रवासियों के वंशजों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति चिंतित उन्होंने अन्य प्रमुख हस्तियों जैसे वकील आर के बुधन और निरंजन तथा डॉक्टर हजारी सिंह के साथ मिलकर इंडियन कल्चरल एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने बाद में इंडियन सेंटिनरी बुक प्रकाशित की जिसमें इस महान नेता का सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स शीर्षक से एक लेख शामिल था। यही वो लेख था जो उनका वास्तविक राजनीतिक घोषणा पत्र यानी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बना।
0: मार्च महीने में उनकी पुस्तक उस उत्सव पर एक पुस्तक छपी इंडियन सेंटिनरी बुक और उसमें डॉक्टर राम गुलाम ने सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स आप्रवासियों की संतानें बहुत सुंदर लेख है और वो उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बना है। उसमें उन्होंने भारतवंशियों की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की है और क्या उसको करना चाहिए ये भी उसमें बताया गया है। जन आंदोलन की बात सबसे पहले डॉक्टर राम गुलाम ने सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स अपने आर्टिकल्स में किया है और जिंदगी भर उन्होंने उसको उस पर चल करके देश को आजाद किया है।
1: अपनी कलम और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्रपिता ने इस प्रकार एक संयुक्त स्वतंत्र और भविष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर मॉरिशस की नैतिक और राजनीतिक नींव रखी।
2: बिना कोई अस्त्र उठाए जिस महान व्यक्ति ने मॉरिशस को उनकी पहचान दिलाई आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सर शिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अवसर पर पुतली वाटर फ्रंट पर स्थापित उनकी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाए गए। प्रधानमंत्री सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे। मॉरिशस में नेशनल क्राइम एजेंसी कायम करने के सिलसिले में अभी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज पोम्पलेमस में राष्ट्रपिता की समाधि पर फूल चढ़ाए जाने के समारोह के बाद प्रेस से बात करते हुए ये बात कही। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने इस हफ्ते एमबीसी का दौरा किया ताकि मौजूदा आर्काइव्स प्रक्रिया का जायजा लिया जा सके। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: सोलह मिलीमीटर फिल्म ऐसी दिखती हैं। ये हमारे सबसे पुराने आर्काइव्स हैं जिनमें से कुछ 1960 के दशक के आखिर के हैं। इनमें ऐसी तस्वीरें आवाज़ें और प्रथाएं हैं जो मॉरिशस की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की गवाही देती हैं। आज भी एमबीसी आर्काइव्स में लगभग 600 रील के बक्स अलग अलग स्थिति में सुरक्षित रखे गए हैं। टोमा मोटाई एक टेक्निकल विशेषज्ञ हैं और उनके साथी मैडलेन ओवात एक मल्टीमीडिया आर्काइविस्ट दोनों फ्रांस में नेशनल ऑडियोविजुअल इंस्टीट्यूट से हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने नेशनल रेडियो और टेलीविजन स्टेशन के आर्काइव्स की एक इन्वेंट्री बनाई ताकि बनाए गए कंटेंट को बेहतर ढंग से बचाकर रखा जा सके। टोमास मोटाई ने कहा
4: On est ici vraiment dans un cas classique d'archives télévisuelles.
3: ये टीवी और रेडियो के आर्काइव्स हैं। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। समय के साथ इनकी जगह डिजिटल ने ली है और आज डिजिटल ही आर्काइव का मात्र जरिया है, यानी कि इन आर्काइव्स को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। टेलीविजन और रेडियो के ये ऑडियो विजुअल आर्काइव्स देश की सच्ची स्मृति हैं। इस आर्काइव को बेहतर ढंग से बचा कर रखने के लिए सुझाए गए तरीकों में से एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कायम करना है। मैडलेन ओवाद कहती हैं, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी

0: एक खासियत है रिपोर्ट के अपने अपने तरह के किसी विषय पर रेडियो और टीवी दोनों का डेटाबेस बनाया जा सकता है, लेकिन इन फाइलों को प्रबंधित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आर्काइव सेक्शन के हेड रशीदा जहांगीर ने कहा, बहुत सी कंपनियां, स्कूल और यूनिवर्सिटी भी हमसे चित्रों की मांग करती हैं। चित्रों को ऑनलाइन डालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर पब्लिक की पहुंच और एमबीसी के कर्मचारियों के लिए इसके लिए समय भी लगेगा। एमबीसी हर साल हजारों घंटे का कंटेंट बनाता है जिसका आरक्षण आवश्यक है। दो प्रोडक्ट नजरिए से फायदा हुआ, एक प्रोडक्शन को डॉक्यूमेंट करने और प्रचार करने पर आधारित और दूसरा उन्हें बचाने और पुरानी रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करने लायक बनाने के तकनीकी तरीकों पर आधारित है।
1: पिछले कुछ दिनों से आगालेगा में समस्याएं फिर बढ़ रही हैं। बिजली की कटौती, खराब ओवन के कारण रोटी की आपूर्ति में दिक्कत, इंटरनेट कनेक्शन बाधित होना और मरीजों को मॉरिशस लाने में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। द्वीप समूह के अलग थलग होने के कारण रोजमर्रा की ये समस्याएं जल्द ही गंभीर रूप ले सकती हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान खोजे जाएं ताकि उन्हें बार बार इन्हीं परेशानियों का सामना न करना पड़े। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: घोषबुआ में लेजामी दागालेगा संगठन की ओर से उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जो किसी तरह के इलाज के लिए, शिशु को जन्म देने के लिए या फिर प्रशासनिक कार्य संपन्न करने के लिए मॉरिशस आए हुए हैं। साथ में वे लोग भी जिनके पास आवास संबंधी पैसा चुकाने के लिए जरिया नहीं। लावाल सुब्रमण्य करीब एक चौथाई सदी से इसके अध्यक्ष है। द्वीप समूह जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन्हें अक्सर इसके बारे में सुनना पड़ता है। कुछ दिनों से वहाँ बिजली की आपूर्ति कट गई है, रोटी नहीं और साथ में इंटरनेट संबंधी परेशानियां भी हैं। आगालेगा वासियों की तरफ से संबंधित परेशानियों के बारे में बताया गया। सुब्रमण्य लावाल ने कहा, कुछ समय से ये पाया गया है कि जनरेटर ठप है। काफी समय से इसके बारे में कहा जा रहा था। बेहतरीन समाधान फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाना है। ये देखा गया है कि जब जनरेटर खराब पड़ जाता है तो कई क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं। हाल में एमटेल संबंधी परेशानी थी। ऐसी समस्याएं होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये अहम चीज़ें हैं। आउटर आइलैंड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आगालेगा के विकास एवं संचालन के लिए जिम्मेदार है। उसके अनुसार बिजली, इंटरनेट और ओवन की खराबी की समस्याएं निपटनी ही वाली हैं। सेबास्टियन लामी ने कहा, ओआईडीसी की तरफ से 3 जनरेटर भेजे गए हैं। 50 केवीए जहाज से इन्हें ले जाया जा रहा है। साथ में इंजीनियर और टेक्नीशियन भी हैं राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय की ओर से। इस बात की भी पुष्टि हुई है कि ओवन फिर से चालू है और रोटी भी पक रही है। आगालेगा के निवासियों की ओर से यही इच्छा व्यक्त की जा रही है कि उनकी अक्सर पेश होने वाली समस्याओं के लिए टिकाऊ समाधान ढूंढे जाए। यही मांग कर रहे हैं कि जनवरी महीने से ही एक प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, दिसंबर महीने तक लागू हो ताकि पूरे साल तक कठिनाई ना हो। कुछ छोटे मोटे समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन बड़ी समस्याएं ना हो। सांसद ईशान जुम्मन ने जल्द ही लावाल सुब्रमण्य की मांगें सुनी और अगले मंगलवार को एक बैठक निर्धारित है। पिछले साल के अप्रैल महीने में चीदो तूफान के गुजरने के बाद से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा आगालेगा का दौरा किए जाने के बाद से आखिरकार क्या बदला है? ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज करवाने के लिए मॉरिशस लाना पड़ता है। 18 और 30 वर्ष के बीच की उम्र के लोगों में बेरोजगारी की भी समस्याएं हैं। सांसद ईशान जुम्मन ने कहा, आफकोन की ओर से एक अस्पताल बनाया गया, आधुनिक अस्पताल है जहां बहुत से उपकरण हैं। आफकोन आगालेगा से रवाना हो रहा है, उन्होंने वहां पर अपने सभी कार्य पूरे कर दिए हैं। एक समय ऐसे था जब आगालेगा में करीब 3,000 कर्मचारी थे, अब वे सभी चले गए। ये अस्पताल उनके लिए था, उन्होंने हमारे लिए ये प्रस्ताव पेश किया है ताकि हम फिर से अस्पताल ले लें। स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएमओ की ओर से इस प्रस्ताव पर अध्ययन किया जा रहा है। केवल जब कुछ गंभीर मामले होंगे तब वही प्रक्रियाएं चलाई जाएंगी। दोनों को लेकर लोगों की भर्ती करने के बारे में भी काम किया जा रहा है, दफ्तर, प्रशासनिक कार्य आदि। इसके लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी, आगालेगा वासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि पढ़े लिखे आगालेगा वासी वहां पर काम कर सकेंगे,

0: अन्य पद भी होंगे। आगालिका में दो टापू उत्तर और दक्षिण, 360 निवासी और उनकी शिकायतें, यही उम्मीद बंधी हुई है कि ये केवल कुछ धुंधली यादें बनकर रह जाएं।
1: और हम आपको बता रहे थे आज सर शिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अवसर पर कई जगहों पर उनकी प्रतिमाओं के सामने फूल चढ़ाए गए। हमारी कई टीमों ने उन स्थलों का दौरा किया। सरला विस्तार रिपोर्ट में।
2: एक जाना पहचाना पता, एक ऐतिहासिक घर जो सर शिव सागर राम गुलाम का है, पोटली में नंबर 87 दिफोज गली स्थित। इस घर में उन्होंने 1936 में अपना मेडिकल क्लिनिक शुरू किया था। बाद में वे यहीं रहने लगे और 1965 तक इसी स्थान पर अपने चिकित्सीय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य करते रहे। आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपनी बहन सुनीता जयपुल के साथ मिलकर शशि सागर राम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर को फिर से जनता के लिए खोल दिया। लकड़ी से बने इस ऐतिहासिक घर के 8 कमरे, राष्ट्रपिता के रूप में पहचाने जाने वाले शशि सागर राम गुलाम के जीवन के एक हिस्से की कहानी बयां करते हैं। यहां उनकी तस्वीरें, पुराने अखबारों में प्रकाशित लेख और उनके निजी जीवन से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इस पुनः उद्घाटन के अवसर पर सबसे पहले शशि सागर राम गुलाम की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये परिसर उनके पारिवारिक जीवन की यादों को फिर से जीवंत करता है, उनके चिकित्सीय सफर को सामने लाता है और देश की सेवा के लिए उनके समर्पण की कहानी भी बयां करता है।
1: और हमारी एक टीम प्लैनवेयर के मेमोरियल सेंटर में भी गई हुई थी, जहां पर कई महानुभाव एकत्र हुए, जहां पर सर शिव सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: एक जाना पहचाना पता, एक ऐतिहासिक घर जो सर शिव सागर राम गुलाम का है, पोटली में नंबर 87 दिफोज गली स्थित। इस घर में उन्होंने 1936 में अपना मेडिकल क्लिनिक शुरू किया था। बाद में वे यहीं रहने लगे और 1965 तक इसी स्थान पर अपने चिकित्सीय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य करते रहे।
1: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां पर एल नीनो की वजह से सूखे मौसम का असर और बढ़ गया है। इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग से जूझ रहा है। नुसंतारा अटलास के अनुमान के अनुसार साल की शुरुआत से अब तक 9 लाख हेक्टर से ज़्यादा जंगल राख हो चुके हैं और इसके और बढ़ने की आशंका है। इस बीच जहरीला धुआं स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है।

0: अब चले जानते हैं मौसम का हाल।
1: पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वो रह रहकर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में कुछ बादल घिरे रहेंगे और बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटो पर। बाद में मौसम अच्छा रहेगा। कल दिन के दौरान धीरे धीरे बादल घिरने लगेंगे और कहीं कहीं पर बारिश होगी। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। रात के दौरान इसमें सुधार आने लगेगा। आज रात दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 एवं 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 26 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6:05 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:04 पर सूर्योदय।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। बाल्मीक रोड सेंट मिशेल बेलारिविया सेश में तैंतीस साल के सचिव रियाजोल्ड के श्री महादेश सौदागर जो परमुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके भाई मंदेश सौदागर के मकान बाल्मीक रोड सेंट मिशेल बेलारिविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। रुतबा सैकाथोबोन में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री मोतीलाल गैरप जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके मकान गुडबा सैकाथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल मां की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। डी फो एबेन में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वहादम्बा कुपन पैदाशी नाम तिरुवेंगादम और जो विनोदा वारादम्ब के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 10:15 बजे उनके मकान डीफो एबेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल माका थोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10:15 AM। स्कूल रोड दागतिया में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मानंद ज्योति की मृत्यु हो गई है। वे पूर्व पुलिस अफसर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान स्कूल रोड दागोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंट पिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

रेडियो मर्शस पर लाइव प्रसारण जारी है। आइए अभी के लिए सुनते हैं चंद विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। प्लेबॉ और मलाकोफ के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए दूसरी कम्युनिके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही। सीवा बापू स्टेट सेकेंडरी स्कूल के आसपास वॉरियर्स रेस्ट, मोबाइल विंग्स, एडमिरल्टी रेजिडेंस और वहां के आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शनिवार यानी कि कल 19 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। अगली विज्ञप्ति सुनिए। पोर्ट लुइस के रहने वालों को, खासकर रुई रॉयल के कुछ हिस्से

जोसेफ रिवियर के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए अगली विज्ञप्ति। लामारी के रहने वालों को खासकर रॉयल रोड लामारी के कुछ हिस्से, मलाकोफ और मिरन लेन के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी और लामारी में ही रॉयल रोड लामारी के रहने वालों को और नाथू लेन के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को दिन के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। अगली विज्ञप्ति। ग्लेनपॉक के रहने वालों को खासकर वाया रोड ग्लेनपॉक के कुछ हिस्से, मुंबई रोड नंबर 1, 2 और 3 और वहां आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी और ग्लेनपॉक में ही जो है रॉम्पा रोड ग्लेनपॉक, उन सभी रहने वालों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। कुछ और विज्ञप्तियां। एवेन्यू लॉरिए पोएटो कानोनिये के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से एवेन्यू लॉरिए पोएटो कानोनिये के रहने वालों को यह सूचित किया जाता है कि वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। और एक कम्युनिकी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही, मोसेलमा नोलैंड पेरेबिया, वहां के सभी रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। सेबास्टोपोल के रहने वालों को और उन गलियों के आसपास जो है मोसेलमा सिकडो, कॉटिये रोट पेलग्रिन सेबास्टोपोल, कॉन्सोनो रू क्रेमासियों, रू रागुबा और वहां आसपास के गलियों के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 20 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए अगली विज्ञप्ति। तेरोज के रहने वालों को खासकर मोसेलमा ग्रीन पार्क के रहने वालों को, मोसेलमा ग्रीन पार्क के कुछ हिस्से और सेंट जोसेफ रोड के कुछ हिस्से और मेबल मेनिये के कुछ हिस्से, उन सभी रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को दिन के 12:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। थोबिश के रहने वालों को जो है मोसेलमा अस्तित्व, मोसेलमा रामदानी और उन सभी रहने वालों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 19 सितंबर को ही सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए अंतिम विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही। तेहोश के रहने वालों को खासकर स्कूल लेन के आसपास और मोसेलमा जिराज, उन सभी रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर आफ्टरनून के 1 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। तो उन सभी जगहों पर मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली में कटौती लाई जाएगी और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। ये थी चंद विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
3: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए लाए हैं भजले प्रभु का नाम। शुक्रवार का पावन दिन है और आज का दिन जो है समर्पित है शक्ति की देवी माँ दुर्गा को। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेंगे। जी हाँ, भगवान गणेश जी का नाम हम लेने वाले हैं।

शक्ति की देवी माँ दुर्गा को साहस, करुणा, ममता और नारी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। माँ का आशीर्वाद भक्तों के मन में विश्वास जगाता है और जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, शुक्रवार का ये पावन दिन बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, आज का दिन माँ दुर्गा को पूजने के लिए व्रत धारण किया जाता है। उनके नाम पे जय जयकार जो है हर मंदिरों में हम करते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये अगला भक्तिगान समस्त भक्तों के

माँ दुर्गा हमें सिखाती है श्रोताओं की शक्ति केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं बल्कि मन का धैर्य, आत्मविश्वास और अच्छे कर्मों में भी होती है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो श्रद्धा और हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। माँ के नौ रूप जीवन के विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतीक

श्रोताओं, माँ दुर्गा का नाम लेते ही मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ की भक्ति हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, विश्वास बनाए रखिए और प्रेम व सत्य के मार्ग पर चलते रहना होता है। तो चलिए श्रोताओं, रात के हम सफर कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: MBC Radio, 24 hours a day.
1: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पर ये रेडियो मॉरिशस है, परवेज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए महशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्र के आप तमाम सामीन खैर आफियत से हैं, जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मुझे सामीन उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

बरसती बारिश तेरी निशानी, ए रब्बे रहीम ओ रब्बे मेहरबानी। प्यासी धरती को तूने सैराब किया, तू ही ने रिज़्क़ का दर खोला, हिसाब किया। हर वक्त बांधते हैं सदका वो पंजतन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो दो सखा का बहता दरिया है, गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह, क्या लाएगी ये दुनिया उनकी मिसाल कोई। मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा तोहफ़ा है गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह। ए आशिकान गौसे आज़म, माह फ़ाखिर रबुल आखिर में यू तो दिगर बुज़ुर्गों के उर्स भी हैं, मगर ये महीना हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह से ख़ास नस्बत रखता है। और इस महीने की 11वीं तारीख को हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स शरीफ मनाया जाता है। हमारे प्यारे प्यारे पीर व मुर्शिद सैयदी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह, बल्कि वलियों के भी सरदार थे।

हौस का शामियाना सलामत रहे, कादरे आस्ताना सलामत रहे। आ गया जश्न गौसुलवरा, मौसम आशिकाना सलामत रहे। शहरे बगदाद में औलिया आ गए, अरसे गौस से ज़माना सलामत रहे। गौस की महफिलें फिर से सजने लगी, सुन्नियों का घराना सलामत रहे। लंगरे गौसिया यूं ही चलता रहे, गौस का ये खिलाना सलामत रहे। नीला गुम्बद उजागर मेरे गौस का, हश्र तक जगमगाना सलामत रहे। मज़ीसामीन, हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में गौसे आज़म रहमतुल्लाही अलैह की तालीमात को अपनाएं, जैसा कि सच्चाई, आजजी, अल्लाह पर तवक्कुल और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे, हमारे घरों में सुकून, हमारे दिलों में मोहब्बत और हमारे मुआशरे में इत्तेहाद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: ज़माना आता रहे, ज़माना जाता रहे, पर जो इतिहास में अपना नाम गढ़ा जाते हैं उन्हें हर ज़माने में याद किया जाता है। सर शिव सागर राम गुलाम जी, आज़ादी देकर, शिक्षा निःशुल्क देकर और स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क देकर इस देश की उन्नति में नींव बना गए हैं। इस देश की उन्नति के आधार हैं सर शिव सागर राम गुलाम। उनको हम अवश्य उनकी जयंती पर नमन करते हैं।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
0: भोजपुरी तड़का में तो है स्वागत करते हैं जान। नमस्ते सब श्रोतालों के, जहाँ हो बजा खुशी खुशी रहिया जा, खुश हंसते मुस्कुराते रहिया जा। और ये ऐसे में तो हर स्वागत करते हैं जहाँ अपनी रेडियो मॉरिशस पर तो हर प्रोग्राम में भोजपुरी तड़का में। भोजपुरी तड़का में तो हर पसंद के गाना तो हमने चले बेकर अब जा, बस हम

0: के टेलीफोनिंग करिए जा 4028085 पर, या फिर अपन मैसेज ही भेज दिया जा 5251700005 पर। तो हर पसंद के गाना तो हर तक पहुंचाओ। अब जाओ री भोजपुरी तड़का तो हर प्रोग्राम है कर में जोन गाना खुश बजा सुने के हमने की बताई बजाता ई गनोए से हमने की कार्यक्रम के शोभा बढ़ाओ। अब जा हम है सुरेखा तो हर साथ देवा थी चल तोहरा नमस्ते सलाम वालेकुम तोहरा मणक्कम
1: सलाम वालेकुम
0: विष्णु हरि जी के गावरी गाना है।

0: भोजपुरी तड़का।
1: चल तड़का हमने दबात बाबू वाला गाना संगे लगाएला जा दबात बाबू वाला गाना हमने बजावत है जा विश्वानी दुबन जी खातिर अभी कहाँ अपन घरे हो हन विश्वानी जी तो अभी रुद्रिक में हवन वकेशन मनावत हवन अपन संगतिया लोग संगे अपन सब सखी लोग के नाम करत हवन गाना और संगे संगे अपन बहन शारदा के नाम सहेली नीला प्रतिभा के नाम शोभा जी और गीता गजाधर जी के नाम चला खूब मस्ती करा विश्वानी जी और खूब अच्छा अच्छा पल बिता के आई हमारे समय कुणाल बाबूलाल के गावाली गाना मंगले हवा तो चला तो हर खातिर बजवाएला जा

0: भोजपुरी तड़का।
1: अभी कुछ जलसा करब जा, जलसा लाल बा। अभी तक किशोर खिमिया जी के गाँव वाली गाना हो और जलसा में हुई बजाता ही तक गाना मस्त रही तो हर खातिर। और याद तो सुखे रात बाद जे तनी सन्ना आराम आराम करे खोज बताई गाना से बड़ा अच्छा आराम लगेला। सजादा फैमिली खातिर मांग ये गाना बजवावत हैं जहाँ सूरज शर्मा सजादा जी के तरफ से। चला सुनी जा।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में गमटवा हुई बेकरी कहे कि जन्मदिन के भी तो माहौल पाना जन्मदिन के शुभकामना गिरी शरलोल जी देवत हवन अपन संगतिया किरण कौशिक के और किरण कौशिक के नेफ्यू के भी जन्मदिन रहल 13 सितंबर के दोनों जना के गिरीश जी बोलत हवन वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और बसंत सुपौल जी के गावाली गाना मंगले हवन चला जन्मदिन के बधाई देवे के ई गाना बड़ा जबरदस्त गाना बा किरण जी के और उनकर नेफ्यू के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई।

अब चल बड़े बढ़ते बढ़ते चली जा हमनी अगवा के लेके, मामा के लेके, पापा के लेके, बहल गौरी जी के गीत में संगे संगे। बहल गौरी जी के एक गाना मंगले हवन हमने से विजय बेनी प्रसाद जी, विजय बेनी प्रसाद जी रहे लंड शामुनी, और गाना मंगले हवन अपन संगतिया गणेश जगनारायण जी खातिर, और मोताबा के शास्त्री बनुमारी जी खातिर, और शामुनी के अपन पूरा बनुमारी परिवार खातिर। और ऐसे में हम तो लोग के बता देला जा ई गाना जो हमने तो लोग के सुनावत हैं जा ई बहल गौरी जी गैले हवन अपन संगतिया लोग संगे मिल के, यानी कि सुग्रीव गौरी जी भी संगे हवन। ई गाना सुन जा, गुनगुनाए ना जा, कहाँ गुनगुनाए के गाना तक गमर।

चली जा हमने सुना नयन जी के गावल गाना प्रस्तुत करी ला जा शांति जी खाती तेहूस के शांति जी बगल से ही गाना चला हम बजवाए ला जा दागुचे के उनकर मराठी परिवार खातिर अप्पा दागुचे के उनकर भगिना ओम खातिर और उनकर भाई बलराम खातिर सुना नयन की आवाज़।

करके और कितना जिम्मेदारी निभाए के और साथ साथ अपन अपन परिवार दोस्त लोग के बीच में हंसी मजाक भी करे के। तो चला अभी हमने माँ के सेवा के बारे में सुनी जा। विजय राव जी गए थे हवनी गाना और ये गाना मंगले हवन आत्माराम जी बिले से और आत्माराम जी गाना पर बहन लोग खातिर मंगले हवन छोटी जी खातिर प्रभावती जी सुदेवी जी और ललिता जी खातिर और बिले के अपन पूरा स्नू परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का में चला हमने जन्मदिन मनाई ला जा जन्मदिन मनाओ थे जा आज निर्वेश जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकर पापा कृष्ण उनकरा बहुत आशीर्वाद दिले हवन उनकर मामा निशा उनकरा बहुत प्यार और आशीर्वाद दिले हवन और उनकर बहन कृष्णी उनकर पूरा परिवार उनकरा जन्मदिन के मंगल कामना दिले हवन और ललिता जी उनकरा जन्मदिन के बहुत शुभकामना देवत हवन। संगे संगे ललिता जी शुक्लाल मौसी उषा लुकाना छोटी जी प्रभावती जी के नाम करत हवन ई गाना जन्मदिन के ई गाना लीलो माथुर जी के आवाज़ में सरस सुनी जा।

हर दिन शुभ रही, हर पखट शुभ रही, तो हर खाती रही, उम्मीद करत है। और ये अभी चल दादा दादी के कहानी सुनब जा। दादा दादी लोग आल रलन जा बिहार से, आल रलन जा हमने के भोजपुरी बेल्ट से, भोजपुर इलाका से, और आल रलन जा हमने के देश में एगो अच्छा सन जीवन बिताए खातिर। बकर जब ऐलन जाए तो कितना दुख कितना पीड़ा उन लोग के झेले के पड़ल। चल यही बतिया यही जन पीड़ा के बात बा, पीड़ा के जमाना बा, पीड़ा के जन स्थिति बा, यही सुनब जा हमने गासन सिंगारों जी से। और ये गाना हमने बजाओ तें जा गायत्री जी खातिर, नोबेल फाउंस से गायत्री जी अपन बेटा अजय खातिर ये गाना बजवावत हवन। मायबू से मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, फिर लॉन्ग माउंटेन से भाभी शकुंतला जी खातिर, नोबेल फॉन्स से अपन संगतिया गीता बाई खातिर मंगले हवन गायत्री जी गीत। और यही गीत हमने श्रीमती जी खातिर बजवा थे जाए। श्रीमती जी मंगले हवन गाना पूरा चंद्रमुनि परिवार खातिर और मोहिस परिवार।

अब चला हमने सुनी जा संतोष महादेव जी के गावाली को गाना, और संतोष महादेव जी गैले हवन ये गाना हमने के श्रोता लोग पसंद करेला निकरा, और यह वाकवा के सुदेवी जी के फरमाइश। ये गाना मंगलवान सुदेवी जी दीदी ललिता खातिर, कुशल परिवार खातिर, दीदी सुनीता, दीदी शोभा खातिर, देवीना और मालेगा के राम रतन परिवार खातिर, हृदय और कुवारू परिवार खातिर। असल में हमने सुदेवी जी के पसंद के गाना पजवाओ अब जा विनोद सिरदर्ज जी के गावल, विनोद सिरदर्ज जी के गावली गाना चला सुनी जा। पीते पीते पीमा और पीते पीते पीमा के बारे में चला सुनी जा। हमने कहाँ प्लांट ले हवन पीते पीते पीमा अपन खितवा में।

अर्जुन संतोष महादेव जी के गावल गाना बरमिट में चढ़ल बा गरम गरम पानी ई गाना के हमने चर्चा कर ली जा गाना अब तहला कैसे न आवा जा और ई गाना मंगले हवन हमने से अनीता लाल जी जी और ई गाना पर सैपिया के पूरा महादेव परिवार खातिर मदलबे के पूरा इतू और लाल जी परिवार खातिर मंगले हवन अनीता लाल जी। अब यही गाना सुनीता जी सुने खोजत हवन घोंगुप से और अपन बहन विमाला खातिर मांगत हवन कुंगुमा की।

श्वेता बाबूलाल के गावल किशोर किमिया के संगे संगे गावली गाना चला सने जो हमने अमृता जी के पसंद पर पीतों के अमृता जी गाना मंगले हवन अपन बेटी पूनम खातिर बेटा विशान और पतो मीनाक्षी खातिर और अपन नातिन सोनिया और परी खातिर।

0: Listen to this message for all the workers from Kamal.
1: बेशक यह कबल चिंतामणि और विभा चिंतामणि के गावल काम करवा और काम करवा गाना हमने बजावा था जय सोनम जी खातिर सोनम जी गाना पिछक भी ऐसे मंगले हवन अपन सब संगतिया लोग खातिर सब कोई काम करता था जब भी

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का है संगीत के तड़का और ई भोजपुरी गीत के तड़का, भोजपुरी भाषा के तड़का। जहाँ हो बजा ई गीतवन सुन के तोहरा दिल खुश होवत हो, यही उम्मीद करत हैं जा। और ई अभी सुनब जौन गाना हमने किशोर कुमार रमेशर जी के गावल, ई गाना चला हमने उनकर छुपी छुपी रानी के बारे में सुनब जा चला। ई है दीवानगी से भरल भरल एको गाना और ई गाना चला हमने सुनी जा वीना जी के पास। इन पर वीना जी गाना मंगले हवन खिफिया जगह पर से।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी के बाद जब छड़ेला तो सोना नयन और बसंत सुपौल जी के बीच में जो नाखुश हो रहा एक बारे में चर्चा तो होते रहला। ये चर्चा के बिना तो भोजपुरी संगीत तनी तनी सन फीका फीका सन लगेला। चल ये जन चर्चा हर जगह हर कोना में चलेला। ये चर्चा के बारे में तो हम जानी ला जा और ये हमेशा बात करी ला जा कि सुना नयन और बसंत सुपाल जी के बीच के जन लाखोस है ये चौचक है। चलो सुनी जा ये लाखोस सुना नयन और बसंत सुपाल जी के गावल और ये लाखोस हमसे मंगले हवन विजय जी रहे लन गाँव भी और ये गाना अपन दुगो संगतिया खातिर मंगले हवन देव भरत और सुदेश खातिर। तो चलो सुनी जा इलाकोस।

stand up me on. Sonwa, pasa tu hace campo al bajo. Kaito ke bu.

0: रात बाहो, जलसा के रात बाहो,
1: जलसा के रात बाहो, चला जलसा करी जा और प्रस्तुत करी जा हमने कुणाल हिरीलाल के गावल जलसा के रात होला गाना। और ये गाना हमने नितिन खातिर बजावत है जा नितिन जी लाफ लोगा से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार के नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: एक कार्यक्रम के शोभा बढ़ाए खातिर आकाश जी मंगले हवन गाना अभिमन्यु हरपाल जी के गावल अयोध्या के राज सीता मांगे अयोध्या के राज आकाश जी बजवाए खोजत हवन मीला वंदना रेखा और रागिनी खातिर।

बचत करे के हमके जीवन के सबसे अच्छा अनुशासन है और ये अनुशासन के हमेशा अपन जीवन में बरकरार रखे के चाहेला रखी ला जा। ये अनुशासन अपन जीवन में तो हमें बहुत प्रगति करी ला जा। युधिष्ठिर धुलवा के गावल गाना चलस।

0: भी सुना जा, ढेर त्राका नहीं लिया जा, तोशियों बढ़ जाए, जाबेद बढ़ जाए, ढेर सोचिया नहीं।
1: यह धर्मदेव रंगू जी के गावल गाना सोच नहीं तनी सन सोचल कमती करा अपन दिमाग के काफ़ी आराम दिया के सोचा। अभी गाना जो चलाओ थे जब धर्मदेव रंगू जी के गावली अंतिम गाना रही हमने के भोजपुरी तड़का के ये कार्यक्रम के बाद 11 बजे सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम गिनेशाले के आई हन। तोहर साथ मिला लेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कितना टेलीफोनिंग कर ला जा हमने के कार्यक्रम में भाग ले ला जा हमें के कार्यक्रम में अपन पसंद के गाना सुनवाई ला जाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आवत ला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: A very good evening to all of you. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से।

इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर लेकर आई है वो नगमे जो सिर्फ कानों को नहीं दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए मिलकर गुजारते हैं उन हसीन यादों के सफर से। जी हाँ दोस्तों, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हर शाम एक नई कहानी लिखी है और हर पुराना गीत उस कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है। तो चलिए आज की शाम, आज की रात को यादों के नाम करते हैं और उन्हीं खूबसूरत यादों को दोबारा फिर से जीने के लिए आप तैयार हो जाइए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चल रही हो, पुराने गीत हमें वो दो पल रुक कर जीना सिखा देते हैं। इसी सुकून के साथ बने रहे, हमारा साथ यूं ही देते रहे। ये गीत सिर्फ रेडियो पर नहीं बज रहे हैं, ये हर उस दिल में गूंज रहे हैं जहां प्यार, यादें और एहसास आज भी जिंदा है। और ये है आपका सुनहरे पल।

वैसे हर लफ्ज, हर धुन और हर आवाज में एक जादू है मेरी जान, जो सिर्फ पुराने बॉलीवुड के गीतों में ही मिलता है। आज उसी जादू का आनंद लीजिए और आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर चाय पीने का इरादा है तो हम तो कहेंगे कि एक कप चाय, ठंडी हवा और रेडियो मॉरिशस पर बजते पुराने गीत, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का असली मजा इसी में है। बिल्कुल जी, अगला नगमा हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से शिद्दत से बैठे हुए हैं और जो हमारा साथ गुनगुना रहे हैं।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और आज हम उन्हीं गीतों का खजाना लेकर आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और बस हर इन खूबसूरत इमोशंस को फिर से जी रहे हो। बस यूं ही साथ देते रहे गिनिशा का ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पर।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है। अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।